0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो, वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो।
2: रवि गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए
1: टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो उसे? राधा राधा सोचवाओ जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा राधा राधा राधा, वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो। राधा राधा राधा राधा, तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा राधा राधा, अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हैं? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा राधा राधा राधा राधा। अब क्या होगा आगे? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, राधा राधा, कदम आगे बढ़ाओ। नहीं पीछे हुआ था उसका वो सब भस्म हो जाएगा। अगर आगे कोई गड़बड़ हुआ, वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा? राधा राधा राधा राधा। अगर इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में पहुंचा देगा। बहुत खतरनाक खेल है सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय। वो धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगा। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है। निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू ना पाए। हर क्रिया का, जो भी कर्तव्य कर्म का, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, हमें सोच का उस पर कदम रखना है। मनमानी आचरण नहीं करने, क्रिया विधिज्ञम, और जो व्यापार जो नौकरी उस पर ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ की बात, कर्तव्य आप ठीक से करो तो आप नाम जप करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हर समय आनंदित है, उत्साहित है। जितना जीवन जिएंगे मंगलमय रहेगा, शरीर छूटेगा प्रभु के पास जाएंगे। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। राधा राधा चल रहा है तो कभी नहीं कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अब नाम जप नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ विनाशी चिंतन होगा, समय विनाश हो रहा, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, किन्हेस रामचंद्र कर काजा। क्योंकि धर्म से चल रहे हो, वासना से प्रेरित होकर शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट, जीवन नष्ट। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला, तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। आगे बढ़ो भलाई की तरफ। ये थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंश होगा, थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है, हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा छड़े, तो थोड़ी चीज मिली फूल गए, थोड़ी गई दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, बचपन से सब देख रहे हैं। फल दे दिया तुमने, मान लो अभी एक सेब फल दिया, तुम खुशी हो जाओगे। बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी, हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं, बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है, और विश्व पर विजय प्राप्त के अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं, क्यों हारा हुआ है तो कुछ नहीं है। इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के कष्ट सह करके दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हम सोच में बहते चले जाए, उसको ब्रेक लगाओ, तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो, आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो, थोड़ा सा तो सावधान हो, धर्म से चलो। हमारी बात समझ में आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र, मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। इसीलिए तो आए हो यहां बात सुनने के लिए, और काहे के लिए आया? और ये बात वो बात है जो स्वीकार कर ले तो कोई बातें नहीं रह जाएगी, स्वीकार तो कर लो। अभी तो मैं रिपोर्ट दे दीजिए कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब है, तो बिना किडनी खराब के तो तुम अपनी हालत ये बता रहे हो। अगर किडनी खराब की रिपोर्ट मिल जाए तो क्या करोगे? है तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है, तुम वो आत्मबल वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई तो हम यही भूल है कि ये कर सकते हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, तो पहले हाई रेस में नहीं डालते, एकदम खुल गई अब दौड़ लगाओ, तो ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा एक घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक। फिर 1 घंटा जप किया, अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो, क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। हमारे जो नौजवान भाई हैं बहुत भूल में जा रहे हैं, मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये एक मनोरंजन बन गया है, और ये सबसे बड़ा जीवन का घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता गुरु धर्म शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं, बहुत विवेकवान आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाए, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाए। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त है क्या, कहें सारथी बने बैठे हैं।
3: सच्ची
1: आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेजमय स्वस्थ, आप हमारे भारत देश के भविष्य हैं। आप ऐसे आचरण न करें जिससे देखकर आपको जलन पैदा हो कि ये तो खुद गिर रहा है, ये क्या हमारे भारत के काम आएगा। एक जवान पूरे भारत को बचा सकता है, एक जवान, एक आदमी काफी भारत के प्रजा को ठीक कर सकता है। आप सच्चे आचरण वाले, धर्म से चलने वाले, तो आपकी बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। आप अपने को, अपने जीवन को, अपने संबंधियों को सुख नहीं दे पा रहे तो भारत को क्या सुख दे पाएंगे। हमारा लक्ष्य है पूरे भारत को सुख देना। हम अगर एक गांव के, एक घर से, एक शरीर को सुधारना शुरू कर दिया तो हम भारत का हित करना शुरू कर दिया। आप सब जवान हैं, कोई पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बनेगा, कोई प्रवक्ता बनेगा, कोई नेता बनेगा, तो हमारी प्रजा को सुख देगा। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। मतलब 15 से लेकर 25 30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया, अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे, धर्मवान रहेंगे, आपकी बात का दम रहेगा। हमें लगता है हमारे नौजवान भाइयों को, नई पीढ़ी को, ये जो नया कलयुग का चाल चला है इससे बचना चाहिए। जो फ्रेंड वाली बातें चली ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये दुनिया जहर, इससे बचना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, भाई बहन एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ऐसे हम क्यों नहीं जा सकते। जब निर्णय होगा पति पत्नी वाला तो बात अलग है, नहीं तब तक हमारा संबंध सबसे, किसी से घृणा नहीं करनी। एक ही स्कूल में जा रहे तो भाई बहन नहीं जाते पढ़ने, एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उसमें दोष होता है? क्या हम ऐसे फ्रेंड नहीं बना सकते? जरूरी हम गंदे बनकर फ्रेंड बने? जरूरी हम गंदा कार्य करें? एक उसकी सीमा रखी गई है, पाणी ग्रहण हो जाने के बाद फिर जो गृहस्थी धर्म उसको स्वीकार, तब तक तो आप एक सीमा में चलिए। और आपकी सीमा को नष्ट करा वो फ्रेंड कैसे हो सकता है? आपको जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसी जगह पहुंचा रहा है कि आप जीना मुश्किल हो जाए, वो फ्रेंड है हमारा? नहीं नहीं, वो नहीं। इसलिए आप सब सावधान रहिए और अपने मित्रों को सावधान कीजिए। जो सावधानी से चलेगा जीवन, आप खुद देख लेना, खुद देख लेना। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे केवल ऐसे नहीं कि हम प्रवचन करें, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर लेना देना ये कि जैसे अपने घर वाले होते हैं ना, उनको समझाया जाता है, हम ऐसे आपको समझाते हैं, आप हमारे घर वाले हो, हमारे प्रभु के जन हो, इसलिए समझाते हैं। आप मान जाओ आपका मंगल हो जाएगा, ये देखकर हमें सुख मिलेगा। जैसे आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो, आप धर्म से चलते हो, आप पवित्र रहते हो, आप संयमी हो, आपको देख करके अच्छा लगता है, स्वास्थ्य ठीक है, बुद्धि ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा, ये अच्छा लगता है। चलो धर्म से चलो, अच्छे बनो।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल सिरी में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: नमस्कार, सुप्रभात। इहा कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल जेकर करेली रउआ सभी सबरी से इंतजार। अरे इंतजार कहे न रही, राउर रेडियो दोस्त दीपाली जी रोज लेके आवेली रउआ स्वास्थ्य और सौंदर्य के चमकावे खातिर कुछ हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। चली आज के कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल के शुरुआत कई जाओ, जिमे आज हम बताएं चिरचिटा यानी अपमार्ग के बारे में। दोस्त लोग, अपमार्ग के पौधा खेत में घास के साथ प्राय पावल जाला, ई शुष्क स्थान पर पैदा होला। ई पौधा लगभग 2 से 4 फुट ऊंचा होला। कर 2 किस्म पावल जाला, लाल और सफेद। लाल रंग के अपमार्ग के डंठल लाल और ओई पर लाल रंग के दाग होला। जबकि सफेद अपमार्ग के डंठल और पत्ता हरा रंग के होला, जे पर सफेद भूरा रंग के दाग होला। एकर बीज कांटा के समान नुकीला होला। तो दोस्तों, चले जानल जाओ अपमार्ग यानी चिरचिटा के गुण के बारे में। अपमार्ग के प्रकृति गर्म होला, जौन पीड़ा के दूर करेला। ई रुचिकारक दस्त लागे वाला, विपाक में कड़वा तीखा, अग्नि के दीपन करे वाला, विष दूर करे वाला, ज्वर हरे वाला। और कृमि नाशक भूख के नियंत्रण में रखे वाला, रक्त के शोधन करे वाला, गर्भधारण में सहायक और आसानी से प्रसव करावे वाला होला। यूनानी तिब्ब में एकर कामोदीपक, धातु परिवर्धक, मूत्र लागे वाला और प्रथम श्रेणी के ठंडा मानल गइल बा। जड़ की राख में पोटाश अधिक मात्रा में पाए जाए के कारण ई क्षार युक्त दवा के महत्वपूर्ण घटक है, जेकर प्रयोग अम्ल नाश खातिर कई जाला। एकर बीज और सुखल बूटी पंसारी के दुकान पर आसानी से मिल जाला। एकर जड़ की राख और पत्ता में अनेक तत्व पावल जाला, परंतु जड़ की राख में अपेक्षाकृत तत्व अधिक होला। जैसे इमें 30% पोटाश के क्षार, 7% सोरा क्षार, 13% चूना, 2% गंधक और नमक तथा 4% लोहा पावल जाला। चली दोस्त लोग जानल जाओ चिरचिटा यानी अपमार्ग की रोग उपचार के बारे में। गर्भाधान और और संतान प्राप्ति खातिर। यदि अपमार्ग के जड़ के साफ करके ओकर रस 5 ग्राम की मात्रा में मासिक धर्म समाप्त होके के बाद 21 दिन तक लगातार सेवन कर जाए तो गर्भ ठहर जाए। विकल्प के रूप में अपमार्ग के ताजा पत्ता के रस 10 ग्राम यानी 2 चम्मच के 200 ग्राम दूध के साथ मासिक धर्म समाप्त होके के बाद सेवन कर जाए तो गर्भ ठहरे की संभावना बलवती हो जाए। आसान दर्द विहीन और निरापद प्रसव खातिर यदि गर्भवती महिला के प्रसव के पहले बहुत अधिक दर्द होके और प्रसव होके में देर हो रहा होके तो ओके कटी प्रदेश में अपमार्ग के जड़ समेत उखाड़ के बांधे से प्रसव आसानी से जल्दी और बिना दर्द हो जाए। परंतु बच्चा पैदा करे के तुरंत बाद जड़ के वही समय हटा दी वरना गर्भाशय भी बाहर निकल पड़ी। दूसर विधि है एकर कि पुष्य नक्षत्र या रविवार के दिन जड़ समेत उखाड़ल गयी अपमार्ग के जड़ काला कपड़ा में लपेट के गर्भवती महिला के गला में बांधे से भी प्रसव शीघ्र और आसानी से हो जाला। पतन रोके और स्तंभन बढ़ावे खातिर अपमार्ग के जड़ के उखाड़ के धोली फिर एकर चूर्ण बना ली आ ई चूर्ण ठंडा दूध के साथ रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में कुछ समय तक लगातार सेवन करते रहे से लाभ हुई। अधिक और शीघ्र प्रभाव खातिर दूध में 1 से 2 चम्मच शहद भी मिला ली। स्वप्न दोष रोके खातिर अपमार्ग के जड़ के चूर्ण और मिश्री बराबर मात्रा में मिला के रोजाना 1 चम्मच के मात्रा में दिन में 2 से 4 बार सेवन करे से स्वप्न दोष समाप्त हो जाए। तिली के बढ़ल यानी अपमार्ग के जड़ के चूर्ण 15 से 25 ग्राम दिन में 2 बार लस्सी या दही के साथ 3 से 4 सप्ताह तक नियमित रूप से सेवन करे से तिल्ली के आकार सामान्य हो जाए और सूजन कम हो जाए। खांसी दूर करे खातिर अपमार्ग बूटी के भस्म तैयार करके ओके 4 गुना पानी में भिंगा के रात के रख दी आ ई पानी के भाव पैदा होके तक उबाली। उबाले के बाद एके छान ली। एकर मात्रा 1/4 से 1/2 चम्मच रोजाना 2 से 3 बार सेवन करी तो प्राय सब प्रकार की खांसी में लाभ हो सकेला। चर्म रोग होके पे अपमार्ग के पत्ता के बांधे से तीखा औजार यानी चक्कू ब्लेड शीशा आदि द्वारा होखे वाला घाव भी ठीक हो जाए। यदि अपमार्ग के पत्ता घाव पर बांधल जाए तो घाव सूख जाए। अल्सर और मस्सा खातिर एकर जड़ के राख के हड़ताल में मिला के मरहम तैयार करी और प्रभावित जगह पर लगाई। के कारण होखे वाला सूजन में जब गुर्दा सामान्य रूप से काम ना करे तो कई बार हाथ पाँव मुंह आदि पर सूजन आ जाला तो ई रोग से निवृत्ति खातिर 60 ग्राम अपमार्ग के पत्ता के 150 ग्राम पानी में 20 से 30 मिनट उबाल के काढ़ा तैयार करी। ई काढ़ा के ठंडा करके छलनी से छान ली। दिन में 2 से 3 बार ई काढ़ा की 30 से 60 ग्राम मात्रा लेवे से सूजन मिट जाए। विष दंत में अपमार्ग के पत्ता के पानी में पीस के लेप तैयार करें। लेप तैयार करके वो स्थान पर लगाएं जहां कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, मकड़ी या कोनो अन्य जहरीला जानवर कटले होके, तो ऐसे विष दंत खत्म हो जाए। दस्त, पेचिश, पेट दर्द, बवासीर और पेट के अन्य रोग में अपमार्ग के पत्ता के चूर्ण बना के ओकर काढ़ा तैयार करके 1 से 3 चम्मच के मात्रा में दिन में 2 से 4 बार उसके मिश्री या शहद मिला के सेवन करें। शरीर के पुष्टि खातिर अपमार्ग के बीज के तवा पर धीमा आंच पर भून के ओकर चूर्ण बना ली। आए में बराबर मात्रा में मिश्री मिला के 10 ग्राम रोजाना प्राय सांगे दूध के साथ यदि नियमित रूप से सेवन कर जाए तो शरीर पुष्टि हो जाए। भूख, मोटापा और वजन कम करे खातिर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक भोजन करे के अभ्यस्त होला, जौना कारण उ लोग के शरीर के वजन बढ़े लगेला, परिणाम स्वरूप उ मोटा होके लगेला। ये सब लक्षण पर काबू पावे खातिर अपमार्ग के खीर बना के रोजाना सेवन करे के चाहिए। ऐसे शरीर में जमा होकर अतिरिक्त चर्बी घटे लगी। कमजोर दांत और दांत में दर्द, मुंह से दुर्गंध आवल के शिकायत दूर करे खातिर अपमार्ग के फूल के मंजरी के पीस के ऐसे दांत के मालिश करें। पीड़ा हो के तो अपमार्ग के पत्ता के रस वेदना में दांत पर लगाएं। दांत के बदबू दूर करे और दांत के मजबूत करे खातिर रोजाना अपमार्ग के जड़ या तना के दातुन करें। इसे अन्य दांत रोग भी दूर हो जाए। मलेरिया ज्वर से बचाव खातिर जी दिन मलेरिया ज्वर फैले के आशंका होके उ दिन मलेरिया से बचाव खातिर अपमार्ग के पत्ता और काली मिर्च के समान मात्रा में लेके पीस ली। और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के मटर के आकार की गोली बना ली। यदि मलेरिया फैले के आशंका होके या मलेरिया फैल रहल होके तो नियमित रूप से 2 से 4 दिन तक एक एक गोली भोजन के बाद ली। गंजापन में अपमार्ग के पत्ता के जलावे के बाद सरसों के तेल में मसल ली तो ये प्रकार मरहम तैयार हो जाए। यदि ई मरहम की गंजा वाला जगह पर रोजाना लगावल जाए तो गंजापन की जगह नया बाल उग सकेला। तो दोस्त लोग अब घड़ी के सुई कर रहल बा इशारा कि हमली रउआ से जाए के विदा। तो रउआ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
14: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
15: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
16: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
17: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
18: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
16: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
15: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
16: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
19: कॉल करें 87 894 18744।
15: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
16: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
18: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
16: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
18: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
16: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
18: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
16: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
18: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
16: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
18: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
7: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्री राम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्णमृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्णमृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62 112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 97665650।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। शिक्षा विभाग के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक, कुचायकोट प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, वकालत खाना में पुस्तकालय के वार्षिक उत्सव पर पहुंचे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ट्रैफिक पुलिस ने फ्री में हेलमेट पहनाकर लोगों को किया जागरूक, और बाबा धाम के लिए अब थावे से चलेगी स्पेशल ट्रेन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं, नामांकन अभियान, आदर्श विद्यालयों की तैयारियां और निजी विद्यालयों की मान्यता तथा RTE फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम और विद्यालय भवन निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिले के 14 चयनित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की बात कही। इन विद्यालयों के उद्घाटन को लेकर भी सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने कुचायकोट प्रखंड कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय के विभिन्न शाखा कार्यालयों का भ्रमण कर संचालित योजनाओं, कार्यालय व्यवस्था तथा आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने निर्माणाधीन नए प्रखंड कार्यालय भवन का भी जायजा लिया। उन्होंने भवन निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के संबंध में अधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। गुणवत्ता और मानकों का पूरा ख्याल रखते हुए कार्य को समय से पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया। गोपालगंज शहर के सिविल कोर्ट परिसर में स्थित स्वर्गीय देवधारी गिरी विधि पुस्तकालय के आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश और जिला पदाधिकारी तथा सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी सभी गणमान्य अधिवक्ता गणों ने स्वर्गीय देवधारी गिरी के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर अतिथियों ने स्वर्गीय देवधारी गिरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा समाज में न्याय नैतिकता एवं विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनके आदर्श और विचारों को आज भी अधिवक्ताओं एवं नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। गोपालगंज ट्रैफिक पुलिस ने आज नो हेलमेट नो राइड का संदेश देते हुए वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट पहनाकर उन्हें जागरूक किया। सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया। शहर के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक डीएसपी ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को निःशुल्क हेलमेट पहनाकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। यातायात डीएसपी ने कहा कि हेलमेट नहीं पहनने से सड़क हादसों में जान जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोगों को हर हाल में हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की गई। अभियान में ट्रैफिक पुलिस के सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। जिला कृषि कार्यालय गोपालगंज के प्रशिक्षण हॉल में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के सौजन्य से शारदीय यानी खरीफ मौसम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कृषकों को फसल मौसम के बारे में जानकारी एवं तकनीकी ज्ञान वर्धन के लिए कृषक वैज्ञानिक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया के वैज्ञानिकों एवं कृषि संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों ने किसानों के समस्याओं का निराकरण किया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अरहर फसल प्रत्यक्षण तथा मेड़ पर अरहर लगाने हेतु कृषकों को बताया गया। पशुपालन पदाधिकारी और अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा पशु टीकाकरण, गला घोटू बीमारी और अन्य पशुओं से संबंधित होने वाली बीमारियों के संदर्भ में भी किसानों को जानकारी दी गई और उससे बचने के उपाय सुझाए गए। श्रावण महीने में गोपालगंज यात्रियों को बाबा धाम जाने के लिए अब काफी सुविधा होगी। रेलवे प्रशासन ने थामे गोपालगंज होकर देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को इसका काफी लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान बढ़नी देवघर बढ़नी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 29 जुलाई से 30 अगस्त तक थावे और गोपालगंज होकर प्रतिदिन चलेगी। इसके गोपालगंज के श्रद्धालुओं को देवघर जाने के लिए काफी सुविधा मिलेगी और सीधी रेल सेवा के माध्यम से लोग देवघर बाबा के दरबार में जाकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार अलग अलग थाना की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पेट्रोलिंग करती है और इन पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग का निरीक्षण करने के लिए सुपर पेट्रोलिंग के तहत वरिष्ठ पदाधिकारी भी इलाकों का दौरा करते हैं। इसी कड़ी में जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मियों का जांच पड़ताल किया और सुपर पेट्रोलिंग के तहत उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुचका गांव थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी बबलू शाह को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मुचका गांव थाना क्षेत्र के पीड़रा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही इसी कांड में एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हथुआ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 360 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक बोलेरो गाड़ी को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बोलेरो गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही है। इसी बीच पुलिस ने सूचना के अनुसार शराब तस्करों का पीछा किया। शराब तस्कर गाड़ी लेकर भागने लगा और भागते हुए बताया जा रहा है कि पुलिस से पकड़े जाने के डर से शराब तस्कर ने अपने गाड़ी को सुलौनी पुल के पास खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बोलेरो गाड़ी को जब्त किया गया और उसके अंदर से 360 लीटर शराब मिली है। अब इसमें वाहन चालक और वाहन के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे उत्तर प्रदेश के सोनू कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहा था, तभी पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने इस आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपक कुमार पांडे को भोरे थाना की पुलिस ने बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 2021 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, तभी से यह फरार चल रहा था। पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने सिवान से ही इसे गिरफ्तार कर लिया और आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिधौलिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो सगे भाइयों को आज गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी दीपक कुमार और अमित शाह है, ये दोनों सगे भाई हैं और कृष्णा शाह के पुत्र बताए जा रहे हैं। ये दोनों बियरुआ गांव के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था, पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हथुआ थाना की पुलिस ने माधवा लाल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक कार से 216 लीटर देशी शराब जब्त किया। साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया आरोपी सिवान जिला का रहने वाला नाजिर हुसैन बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके कार और शराब को जब्त कर इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जादवपुर थाना की पुलिस ने मंगलपुर गंडक नदी के पास छापेमारी करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर दो नाव से 664 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब जब्त किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तस्कर नाव तथा शराब छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने नाव और शराब को जब्त कर लिया है, तस्करों की पहचान करने में जुटी हुई है। व्यवहार न्यायालय के पुराने भवन के सभागार में एनआई एक्ट 138 वादों के निष्पादन के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। एनआई एक्ट 138 के वादों के निष्पादन को लेकर एक पीठ का गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि पीठ के न्यायिक पदाधिकारी राजा शाह और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा कुल 8 एनआई एक्ट 138 के वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल समझौता राशि 28,57,630 रुपए बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, शिक्षा विभाग के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक, कुचायकोट प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, वकालत खाना में पुस्तकालय के वार्षिक उत्सव पर पहुंचे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ट्रैफिक पुलिस ने फ्री में हेलमेट पहनाकर लोगों को किया जागरूक, और बाबा धाम के लिए अब थामे से चलेगी स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
15: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
16: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली जुलने की गारंटी।
17: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0-97-06-575।
18: दोस्तों, ये है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन विद नीलेश मिश्रा। माइथोलॉजिकल कहानियों का वो सफर जिसमें हम एक साथ चलते हैं उन यात्राओं पर जहां हमें पुराने पात्र, पुरानी कहानियां मिलती हैं। वो कहानियां जो हम बचपन में सुनते थे दादा दादी से, नाना नानी से, लेकिन फिर शायद कहीं पीछे छोड़ आए। तो चलिए टाइम मशीन में एक बार फिर सवार होते हैं और चलते हैं एक और वक्त में, एक और समय काल में। हम इस वक्त चल रहे हैं दक्षिण भारत की ओर और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी तिरुपति बालाजी। अभी भोर हुई नहीं है, सूरज की पहली किरण अब भी अपने रास्ते में है। पूरे वातावरण में वेंकटेश्वर सुप्रभातम गूंज रहा है।

यह आंध्र प्रदेश का तिरुमलाई क्षेत्र है, सात पहाड़ों का क्षेत्र भी कहा जाता है। वो दूर पहाड़ी पर जो चमकता हुआ नजर आ रहा है आपको, वो तिरुपति बालाजी यानी भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। हर सुबह इस मंदिर का रंग और सुनहला हो जाता है और उसकी चमक सातों पहाड़ों पर फैल जाती है, आज से नहीं हजारों सालों से। तब इन पहाड़ों पर यह मंदिर नहीं, रानी पद्मावती का महल हुआ करता था। अपने पति राजा श्रीनिवास के प्यार में डूबी हुई पद्मावती, जो उनसे मिलन का उत्सव मनाने के लिए हर सुबह सैकड़ों दीप जलाकर सूर्य देव का स्वागत करती हुई इन पहाड़ों को स्वर्णिम कर देती थी। आइए मैं आपको उस युग की एक स्वर्णिम भोर में ले चलता हूँ। महल की खिड़की पर खड़े राजा श्रीनिवास बेचैन हैं। रात भर की जागी आंखें अब लाल हो चुकी हैं। श्रीनिवास, क्यों भूल रहे हो तुम तीनों लोक के पालनहार भगवान विष्णु हो? श्रीनिवास अपने चित्त को शांत करने के लिए खुद ही को समझाते हैं, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही है। तभी वो अपनी पत्नी पद्मावती की आवाज सुनकर चौंक पड़े। महाराज, कल रात आप फिर नहीं सोए, ये किस चिंता में खोए रहते हैं आप स्वामी? क्या आप मेरे साथ इस विवाह से खुश नहीं हैं? श्रीनिवास ने पद्मावती का हाथ प्यार से थामते हुए कहा, कुछ राजकाज की बातें दिमाग में थीं, इसलिए नींद नहीं आई। आप परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पद्मावती श्रीनिवास की बात मानकर निश्चिंत होकर सुबह की पूजा की तैयारी करने चली गई। श्रीनिवास फिर उसी चिंता में खो गए। पद्मावती को कैसे बताते कि वो अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को लेकर परेशान थे? कैसे बताते कि वो विष्णु के रूप तो थे, लेकिन पूर्ण रूप से विष्णु नहीं थे? बात यह थी कि उनके वक्ष यानी सीने पर अब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी नहीं रहती थी। सालों पहले लक्ष्मी रूठ कर वैकुंठ धाम छोड़कर यहां पृथ्वी पर आ गई थी। उन्हें मनाने के लिए महाविष्णु मनुष्य का रूप धरकर पृथ्वी पर आए थे। कितना कुछ हो गया उनके पृथ्वी पर आने के बाद। श्रीनिवास ने एक लंबी गहरी सांस ली। मुझे क्यों लग रहा है कि लक्ष्मी आप आस पास हैं? कब खत्म होगी मेरी साधना देवी? काश उस दिन भृगु ऋषि मेरे पास नहीं आए होते, तो न लक्ष्मी रूठती, न मुझे ये रूप लेना पड़ता। उन दिनों संसार त्रेता युग से कलयुग में प्रवेश कर रहा था और पृथ्वीवासियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, पर यज्ञ किसके नाम से हो ये तय नहीं हो पा रहा था। तब भृगु ऋषि गए थे देवलोक ये जानने के लिए कि कौन से देवता सबसे श्रेष्ठ हैं, कौन से देवता इस यज्ञ के अधिपति होंगे। वो पहले ब्रह्मलोक और फिर शिवलोक गए, लेकिन ब्रह्मदेव और भगवान शिव से उन्हें न जवाब मिला न खास सत्कार। कुछ थके कुछ नाराज भृगु जब विष्णुलोक पहुंचे तो दोपहर हो रही थी। विष्णु दोपहर की मीठी नींद में खोए थे। पहले से ही नाराज ऋषि भृगु समझ बैठे कि भगवान उन्हें अनदेखा करने के लिए सोने का नाटक कर रहे हैं। गुस्से में उनकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने दुनिया के पालनहार देवों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले विष्णु के सीने पर लात मार दी। तीनों लोकों में कोहराम मच गया। तीनों लोक विष्णु के दिल में बसते थे। उनके दिल को ठोकर लगी तो पूरा संसार हिल गया। चोट खाकर विष्णु हड़बड़ा के उठे। ऋषिवर, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? विष्णु तैश में आ गए थे, लेकिन जब उन्हें भृगु ऋषि के गुस्से की वजह पता चली तो उनका गुस्सा भी तुरंत उतर गया। चेहरे पर मीठी मुस्कान लाकर उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी के साथ साथ अपने व्यवहार के लिए भी ऋषि से माफी मांग ली। विष्णु की शालीनता से भृगु ऋषि इतने खुश हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि विष्णु ही देवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और ये भी कि महायज्ञ विष्णु को ही समर्पित होना चाहिए। घोषणा करके ऋषि भृगु तो चले गए, लेकिन विष्णु के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर गए, क्योंकि महाविष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी उनसे रूठ गई थी। उस ब्राह्मण की हिम्मत कैसे हुई आपके सीने पर लात मारने की? तीनों लोग जानते हैं कि मैं अपने पति विष्णु के सीने पर बसती हूँ, ये तो अपमान है मेरा। और आप कुछ बोलने के बजाय उनसे माफी मांगते रहे। जितना अपमान उन्होंने मेरा किया उतना ही आपने भी किया है। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, लक्ष्मी बोली।
विष्णु लाख समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी और वो बैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। अब विष्णु के लिए भी बस एक ही उपाय था कि वो अपनी पत्नी को मनाने धरती पर आए। वो श्रीनिवास के नाम से मनुष्य रूप लेकर तिरुमलाई की पहाड़ियों में लक्ष्मी का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार न जाने कितना और लंबा होना था। महाविष्णु पृथ्वी पर आकर साधारण मनुष्य श्रीनिवास के रूप में लक्ष्मी जी को मनाने के लिए तप करने लगे थे। बिना खाए पिए मौसमों की मार झेलते हुए वो सालों ध्यान में बैठे रहे। इतने सालों में उनके शरीर को दीमकों की बांबी ने ढक दिया था। उनको यूं कठोर साधना करते देख ब्रह्मा और शिव उनका हाल बताने लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। अपने पति की यह हालत सुनकर लक्ष्मी परेशान हो गई, लेकिन विष्णु को माफ नहीं कर पाई, क्योंकि ये सिर्फ एक पत्नी के अपने पति पर हक का नहीं बल्कि पूरी नारी जाति के सम्मान का सवाल था। उन्होंने ब्रह्मा और शिव को सलाह दी, हे देव, आप दोनों गाय के रूप में चोल वंश के राजा की गौशाला में शरण ले लीजिए। वहां से रोज सुबह जाकर बांबी में तप कर रहे श्रीनिवास पर आप अपने दूध की धार छोड़ आइएगा। इससे श्रीनिवास की जान बची रहेगी। अगले ही दिन से चोल राजा की गौशाला से दो गायें जब चरने जाती तो वहीं एक बांबी पर अपना दूध छोड़ देती। एक दिन राजा के चरवाहे ने उनको ये करते देख लिया और गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी लेकर उन पर वार किया। कुल्हाड़ी तपस्या करते हुए श्रीनिवास को जा लगी और दर्द और गुस्से से तिलमिलाते हुए उससे विष्णु भगवान बाहर निकल आए। बात जल्दी ही वहां के राजा तक पहुंच गई और राजा अपने चरवाहे की करतूत से शर्मिंदा होकर भगवान के पास पहुंचा। लेकिन महाविष्णु ने उस पर अपना सारा गुस्सा उतारते हुए उसे असुर बनने का श्राप दे दिया। पर जब चोल राजा ने माफी मांगी तो विष्णु ने उन्हें माफ भी कर दिया। कहा, आपको माफ करता हूं राजा, मगर अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। आने वाले समय में जब आप आकाशराज के रूप में जन्म लेंगे तो अपनी बेटी पद्मावती की शादी मुझसे करवाकर अपने राज्य का किरीदम यानी मुकुट मेरे सर पर रख दीजिएगा। तब आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मी को मनाने का तप अधूरा ही रह गया था। तिरुमलाई के पहाड़ों में भटकते हुए एक दिन श्रीनिवास एक साध्वी वकुला देवी के दरवाजे पर पहुंचे। न जाने कौन से जन्म का रिश्ता था दोनों में कि उनको देखते ही श्रीनिवास के मुंह से निकल पड़ा, माँ। कहते हैं वकुला देवी ही द्वापर युग में कृष्ण की यशोदा मैया थी और उस जन्म में कृष्ण का विवाह नहीं देख पाई थी, इसलिए उनका फिर से मिलना तय था और इस जन्म में भी उन्होंने श्रीनिवास को अपना बेटा बना लिया। श्रीनिवास अब उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। लक्ष्मी से यह दूरी विष्णु को खल रही थी। अपने अधूरेपन से वो थकने लगे थे और उनकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए समय वहीं के पहाड़ों में कुछ रच रहा था। कई साल बीत गए। श्रीनिवास के श्राप को ढोते हुए चोल राजा ने तिरुमलाई के एक पहाड़ चंद्रगिरी के राजा आकाशराज के रूप में जन्म ले लिया था। उस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें अपनी बेटी की शादी भगवान विष्णु से करनी थी, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी तो कोई संतान ही नहीं थी। संतान की चाह मन में लिए उन्होंने नदी किनारे यज्ञ किया। यज्ञ करके अपने महल वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में एक संदूक दिखा। उन्होंने वो संदूक खोला तो वात्सल्य से उनका मन भराया। उसमें कमल के फूल में लिपटी हुई एक बच्ची थी। बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती, किलकारियां मारती, उसने अपनी नन्ही उंगलियों को आकाशराज की हथेली पर रख दिया। राजा बेचैन हो उठे। इतनी नन्ही सी जान को कौन छोड़ गया होगा यहाँ? उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई दिखा नहीं। राजा उसे राजमहल ले आए और उन्होंने और उनकी पत्नी ने उस बच्ची को अपनी ही बेटी मानते हुए उसका नाम पद्मावती रखा। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता। पद्मावती वहां के सात पहाड़ों के क्षेत्र में खूबसूरती और हुनर की मिसाल बन गई। आकाशराज इस बात पर गर्व करते रहे, लेकिन उनको डर भी लगता कि पद्मावती का तो विष्णु से विवाह होना है, कहीं और किसी की नजर न पड़ जाए इस पर। इसी डर ने एक दिन उन्हें ये राज पद्मावती को बताने पर मजबूर कर दिया। पद्मावती विष्णु की कामना में सपने बुनने लगी और आकाशराज ने उसे शस्त्र अस्त्र की विद्या में निपुण करवा दिया, ताकि कभी अगर किसी की बुरी

0: पद्मावती उस नौजवान से नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसके दिमाग ने आगाह किया, पद्मावती मत देखो उसे, यूं प्रेम हो जाएगा। याद रखो तुम्हारी शादी मनुष्य नहीं भगवान विष्णु से होनी है। लेकिन उसका मन कहां सुनने वाला था उसकी ये बात। आप इस हाथी से लड़ने वाली थी, नौजवान ने पूछा तो पद्मावती के गाल शर्म से लाल हो गए। नजरें झुकाती हुई बोली, हाँ। नौजवान बोला, बहुत साहसी हैं आप और सुंदर भी, आप किसी राज परिवार से हैं क्या? मैं यहाँ के महाराज आकाशराज की पुत्री पद्मावती हूँ। कहते हुए उसने जब नजरें उठाई तो उस नौजवान ने उसकी आंखों में लिखा प्यार पढ़ लिया। उसकी ओर बढ़कर हाथ थामते हुए बोला, मैं श्रीनिवास हूँ, यही जंगल में रहता हूँ, आपके साहस और खूबसूरती से मुझे प्यार हो गया है। पद्मावती श्रीनिवास की छुअन से घबराकर भाग खड़ी हुई, लेकिन श्रीनिवास के लिए उसके मन में उपजे प्यार से वो भाग नहीं पा रही थी। उस मुलाकात के बाद श्रीनिवास भी बुझा बुझा रहने लगा। वकुला देवी की बूढ़ी आंखें सब देख रही थी। क्या दबाए हो मन में श्रीनिवास, अब कह भी दो। माँ के इस सवाल पर श्रीनिवास ने अपना दिल खोल कर उनके सामने रख दिया। मैया मुझे पद्मावती से शादी करनी ही है, अपने एक अवतार में मैंने उसे ये वचन भी दिया था। वकुला देवी आकाशराज के पास पहुंच गई पद्मावती से श्रीनिवास की शादी का प्रस्ताव लेकर। श्रीनिवास से शादी का प्रस्ताव सुनकर आकाशराज परेशान हो गए। उनकी बेटी पद्मावती की शादी तो विष्णु के साथ होनी थी। उनकी चिंता की वजह जानकर वकुला देवी हंस पड़ी। बस इतनी सी बात थी राजन, और हमारे बच्चे इतने परेशान हुए। अरे श्रीनिवास ही तो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने कहा। बस फिर क्या था, आकाशराज अपनी बेटी पद्मावती की शादी श्रीनिवास से करने के लिए तैयार हो गए। मगर श्रीनिवास के पास इस राजसी विवाह के लिए धन नहीं था, इसलिए कुबेर से ऋण मांगा तो कुबेर ने हंसते हुए कहा, जानता हूँ आप भगवान विष्णु हैं, लेकिन अब आपकी लक्ष्मी आपके साथ नहीं है तो ये ऋण पूरा कैसे करेंगे? श्रीनिवास ने कुबेर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, लक्ष्मी आएंगी, हमारी जोड़ी शाश्वत है, नहीं टूटेगी। कलयुग के अंत तक मेरे भक्त तुम्हारा ऋण सूद समेत वापस कर देंगे। इसीलिए इस युग से ये मान्यता रही है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में उनके भक्त जो भी चढ़ाते हैं वो उनके कुबेर से लिए कर्ज को चुकाने में जाता है। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी बहुत धूमधाम से हुई और श्रीनिवास के सर पर किरीदम यानी मुकुट रख दिया गया और वो तिरुमला के राजा यानी तिरुपति बन गए। श्रीनिवास और पद्मावती के बीच का प्यार समय के साथ गाढ़ा हो रहा था, लेकिन लक्ष्मी की याद एक पल के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही थी उन्हें। अचानक बाहर आहट हुई। श्रीनिवास ने पूछा, कौन? जवाब एक जानी पहचानी आवाज ने दिया, मैं आपकी पत्नी लक्ष्मी। बेचैन श्रीनिवास की आंखों से सुकून की धार बह निकली। लक्ष्मी आप यहां, मेरी साधना सफल हुई देवी, आप वापस आ गई?
1: नहीं देव, मैं वापस नहीं आई हूं।
0: नारद मुनि ने बताया कि आपने किसी राजकुमारी पद्मावती से शादी कर ली है, आप तो मुझे मनाने आए थे ना यहां, फिर ये क्या? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए विष्णु श्रीनिवास से बाहर निकले।
2: प्रिय आप तो जानती हैं हम देवों की परेशानी, एक कार्य के पीछे 100 कारण होते हैं।
0: मेरी जगह किसी और को देने के पीछे क्या कारण है मैं जानना चाहूंगी देव।
2: आपकी जगह आपके लिए ही है और अब भी खाली है, मगर पद्मावती का भी एक अधिकार है मुझ पर।
0: त्रेता युग में राम के रूप में मैंने उससे वादा किया था, विष्णु बोले।
2: कैसा वादा?
0: लक्ष्मी ने हैरान होकर पूछा।
2: विष्णु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। वेदवती याद है आपको देवी, उसके बलिदान को रामायण में याद नहीं रखा गया, मगर मैं नहीं भूल सकता। रावण के विनाश में वेदवती ने मेरी सहायता की थी, जिसे सीता समझकर रावण उठा ले गया था वो माया सीता यानी सीता के रूप में वेदवती थी। इस उपकार के बदले उसने मुझसे विवाह का वरदान मांगा था, तब तो मैं सीता से विवाह कर चुका था। मैंने उसे वचन दिया था कि किसी और जन्म में मैं उससे

0: विवाह करूंगा, वो वेदवती ही पद्मावती है। पद्मावती का सच सुनकर लक्ष्मी शर्मिंदा हो गई कि अपने पति पर वो अविश्वास कैसे कर बैठी। लक्ष्मी विष्णु के गले लग गई और उनके दिल में अपनी जगह ले ली। लक्ष्मी देवी, ये श्रीनिवास हैं, मेरे पति, आपका हक विष्णु पर है, इन पर नहीं। तभी पद्मावती की आवाज सुनकर विष्णु और लक्ष्मी ने चौंक कर देखा। लक्ष्मी ने पद्मावती को समझाने की कोशिश की, लेकिन पद्मावती जिद कर बैठी कि विष्णु को वो बैकुंठ धाम नहीं जाने देंगी। उनकी जिद से लक्ष्मी खींच गई, उनकी नर्म आवाज सख्त हो गई। भगवान विष्णु स्तब्ध थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनकी वजह से दोनों पत्नियों का दिल तो दुखा था। उनका दिल ग्लानि से भर गया। बरसों की साधना का ये नतीजा देखकर वो पत्थर हो गए। विष्णु को पत्थर की मूर्ति में बदलते देखकर लक्ष्मी और पद्मावती जैसे बेहोशी से जागी। जिस पत्नी के दिल और जिंदगी पर अधिकार के लिए वो लड़ रही थी, वो उनके सामने पत्थर की मूर्ति बना हुआ था। अपराध बोध में लक्ष्मी और पद्मावती खुद भी मूर्तियों में बदल गईं। कहते हैं कि विष्णु के वाहन गरुड़ कई सदियों तक अपने पंख फैलाकर पत्थर हुए भगवान विष्णु और उनकी दोनों पत्नियों लक्ष्मी और पद्मावती को धूप, बारिश और ठंड से बचाते रहे। और फिर 8वीं सदी में राजा तोडाईमान ने यहाँ ये भव्य मंदिर बनवाया। तिरुमाली पहाड़ियों की जिस चोटी पर भगवान जड़मत हुए, वो वेंकटाद्रि है, और इसके लिए युगों ने उनको तिरुपति वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी के नाम से जाना। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे देश और हमारी आस्था, हमारे विश्वास के बारे में कुछ नया, कुछ रोचक जानने और सीखने को मिला होगा। हमारी माइथोलॉजी इसी आस्था, इसी धर्म, इसी विश्वास की नींव पर बनी है। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, मैं यहीं मिलूंगा आपको, एक और नई माइथोलॉजिकल कहानी सुनाने को तैयार, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710392 या 9765

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
4: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमरीका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमरीका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते। मैं हूं सारा अली खान।
0: मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।
2: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971660002।

0: दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य की पहली नदी जोड़ परियोजना का आज करेंगे शुभारंभ। 551 आदर्श विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन का भी लोकार्पण करेंगे। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज से श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी रूप से किया गया स्थगित। अब समाचार विस्तार से। राज्य की पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी हो गई है। बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ने के लिए नहर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शिवहर जिले में इस परियोजना समेत 40 अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: जिले के पिपराही प्रखंड के बिलवा घाट से जिले के विकास को नई गति देने वाली कई योजनाओं का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 130 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाली बूढ़ी गंडक बागमती नदी जोड़ो योजना के तहत बिलवा से मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जिले के विकास से जुड़ी 40 महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह।
0: इधर जल संसाधन विभाग के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से 3 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, जबकि शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। विभाग के अनुसार 3 साल पहले इस परियोजना के शुरू होने से चैनल में पानी का भंडारण शुरू हो गया था। इस कारण जिन इलाकों में पानी का भंडारण हुआ वहां भूगर्भ जल स्तर में भी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल इन इलाकों के भूगर्भ जल स्तर बेहतर हुआ है। आने वाले वर्षों में इसमें और सुधार होना तय है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के 551 आदर्श विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन का आज लोकार्पण करेंगे। बेगूसराय के IOCL स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री इन विद्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कल से इन विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव ने कहा कि सभी विद्यालयों में आधारभूत और प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, ई लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं समेत अन्य आधारभूत सुविधाएं छात्रों को मिलेंगी। विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जबकि 22 और 23 जुलाई को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान होगा और सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। NTA के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट नकली पाई गई है, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गयी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। वहीं पटना जोन से 55% छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर जोर पकड़ रहा है। एनडीए, राजद और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी, नेता और समर्थक लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एनडीए की ओर से पटना के साहित्य सम्मेलन परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। श्री नवीन पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष श्री नवीन मंडल अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में पार्टी के कई नेता प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता मिलने के बाद प्रचार अभियान तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों की अप्राकृतिक मौत को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। गृह विभाग ने नई मुआवजा नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस नीति के तहत जेल में कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजनों को 2 से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। कारा और सुधार सेवाएं निरीक्षणालय की ओर से जारी संकल्प के अनुसार मुआवजे की राशि को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत किसी कैदी की कारा कर्मचारियों द्वारा यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। चिकित्सा पदाधिकारी की लापरवाही के कारण मृत्यु, कारा पदाधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण मृत्यु, कैदियों के आपसी झगड़े के दौरान मृत्यु एवं अन्य अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देय होगा। कैदी द्वारा आत्महत्या के मामले में भी निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बीमारी, बुढ़ापा या फरारी के दौरान कैदी की मृत्यु पर किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @EIRNews_पटना पर को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में पटना, अरवल, बक्सर, भोजपुर, किशनगंज, नालंदा, रोहतास और शेखपुरा जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है।
1: राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, नालंदा, पटना, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में देर रात हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने आज से श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को धैर्य रखने और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राज्य में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मधुबनी जिले के खजौली में सहुरवा गांव के पास उग्रनाथ शाखा नहर का पश्चिमी तटबंध टूट जाने के कारण लगभग 500 एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई। साथ ही नहर का पानी कई घरों में प्रवेश कर जाने के कारण लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। सुपौल स्थित वीरपुर बराज पर कोसी नदी का जलस्राव 1,59,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण खगड़िया के बलतारा में कोसी का जलस्तर खतरे के निशान से 68 सेंटीमीटर ऊपर पहुँच चुका है। इधर पश्चिम चंपारण के धर्मपुर और सिकटा गांव के बीच सड़क पर लगभग 1 फीट ऊपर पानी बह रहा है। त्रिवेणी नहर में जल स्तर बढ़ने से धर्मपुर के दक्षिणी हिस्से में लगभग 20 फीट तथा कंगली गांव के पास लगभग 30 फीट तक तटबंध टूट गया है। वहीं खगड़िया में संतोष जल द्वार के पास बागमती के जल स्तर में 6 सेंटीमीटर की मामूली कमी आई है। इसके बावजूद बागमती अभी खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बीते 24 घंटों में इसमें 40 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में 80 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला रात 12:30 से शुरू होगा। अर्जेंटीना चौथी खिताब जीतने का प्रयास करेगा, जबकि स्पेन दूसरी बार विजेता बनने की कोशिश करेगी। इधर कल तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 के अंतर से पराजित किया। इस मुकाबले में कुल 10 गोल हुए, जो विश्व कप के किसी भी तीसरे स्थान के लिए मैच में अब तक के सबसे ज्यादा गोल है। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार 3:30 से शुरू होगा। दूसरे वनडे में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने त्रिशूलिया घाट के पास मोटरसाइकिल सवार 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 4 मोबाइल के साथ 68,800 रुपए बरामद किए हैं। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को 2 देसी पिस्टल, 5 मैगजीन और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शिक्षा विभाग ने अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खजूरबाड़ी की 2 शिक्षिकाओं को बच्चों से बेंच ढुलवाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। पटना जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों की सफलता पर लिखा है, वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। दैनिक जागरण लिखता है, सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ी पहल, बेहतर रोड डिजाइन ऑडिट पर जोर। दैनिक भास्कर ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर लिखा है, हमारे युवा अब जॉब क्रिएटर बने। भागलपुर में एआई और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। प्रभात खबर लिखता है, नीति आयोग की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में खुलासा, बिहार उभरता राज्य। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पर्यटन विभाग के इंजीनियर के घर निगरानी का छापा, आय से 75% अधिक कमाई। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार में साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य की पहली नदी जोड़ परियोजना का आज करेंगे शुभारंभ। 551 आदर्श विद्यालय सरस्वती विद्या निकेतन का भी लोकार्पण करेंगे। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज से श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी रूप से किया गया स्थगित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: इस खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न पर अर्थ से करीब 1.6 अरब किलोमीटर दूर 3 अरब डॉलर का अंतरिक्ष यान तबाही के रास्ते पर बढ़ रहा था, और ये कोई हादसा नहीं है, ये बलिदान है उसे बचाने के लिए जो इस मिशन ने उजागर किया है, जिसमें है एक ऐसा मून जहां जीवन देने वाली अहम चीजें मौजूद हैं।
14: ओशन से गाइजर्स निकल रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरे हुए,
15: उन प्लूम्स में जीवन भी हो सकता है।
13: हम उस दुनिया को कंटामिनेट करने का खतरा नहीं उठा सकते थे जहां इंसानों से अछूता जीवन उभर सकता है। ये हैरतअंगेज मिशन का शानदार अंत था जो हमें सैटर्न के उतना करीब ले गया था जितना पहले कभी कोई नहीं गया था, यानी इसके ऑर्बिट में और इसके रिंग्स के अंदर। पहली बार एक मिशन उतरा था हमारे सोलर सिस्टम की गहराइयों में मौजूद दुनिया पर।
16: ये एक्सप्लोरर्स के सपनों की दुनिया है,
17: ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे लाजवाब जगह है।
13: करीब 20 साल तक अंतरिक्ष यान कसीनी ने बेहतरीन काम करते हुए गजब के वैज्ञानिक नतीजे दिए हैं, लेकिन अब नासा वैज्ञानिकों को इसे डिस्ट्रॉय करना था।
18: हम जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं लौटेंगे।
13: आखिरी पड़ाव पर भी कसीनी इस टीम को वो सब देने वाला था जो ये दे सकता था।
19: साइंटिस्ट के पास एक एक डेटा हासिल करने के लिए ये लास्ट चांस है।
13: इससे पहले कि ये खत्म हो जाता,
18: ये वन वे ट्रिप है
13: हमेशा के लिए।
20: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
13: पासाडीना कैलिफोर्निया, कसीनी मिशन कंट्रोल रूम। उसके चेहरों के कभी खुशी दिखती तो कभी गम। जिस अंतरिक्ष यान की उन्होंने दसियों साल तक परवरिश की थी वो उठाने जा रहा था एक आखिरी और जानलेवा कदम, जो था 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटर्न के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना। कसीनी की कामयाबी के जश्न के साथ ही इसके डिस्ट्रक्शन के आखिरी पलों पर बारीक नजर रखी जा रही थी। वहां ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने पूरा करियर ही इस मिशन के नाम कर दिया था, वो मिशन जिसने अंतरिक्ष की एक से एक खूबसूरत तस्वीरें कैद की थी। लेकिन अब कसीनी का वक्त पूरा हो चुका था।
18: ये एक रोलर कोस्टर राइड है,
15: हम जा तो रहे हैं पर वापस नहीं लौटेंगे,
18: ये वन वे ट्रिप है।
13: 7.9 अरब किलोमीटर के खोज से भरे इस सफर का अंत भाप के एक गुबार में हुआ और कसीनी आसमान की गहराइयों में धूल बनकर बिखर गया।
19: हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया, ना जाने अगली बार कब कोई स्पेस क्राफ्ट सैटर्न पर क्रैश होगा।
15: हमने साइंस के हर पहलू को खोजने में सैकड़ों हजारों घंटे लगा दिए और अब ये आखिरी जश्न था, वो आखिरी बहुत जबरदस्त धमाका। इट्स सुपर एक्साइटिंग।
13: वो कितना भी एक्साइटिंग रहा हो पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर अर्ल मेज ने अपने ही अंतरिक्षयान को तहस नहस कर दिया।
21: ऐसा क्यों किया? आपकी ये डिस्कवरी मशीन तो एकदम बढ़िया काम कर रही थी, आखिर ये क्यों हुआ?
13: एक जवाब ये था कि कसीनी का फ्यूल खत्म हो रहा था जो इसे दिशा बदलने के लिए चाहिए था। किसी दिशा दिखाने वाले के बिना अर्थ के सबसे तेज हवाई जहाज से 10 गुना तेजी से उड़ान भरते हुए उसके सैटर्न के मून्स में से किसी एक से टकराने का खतरा बढ़ गया था, और ऐसा होता तो एनवायरमेंट में तबाही मच सकती थी, जबकि उनमें से एक पर जीवन होने के आसार हैं, जिसका नाम है इंसेलेडस।
22: वहाँ लिक्विड वाटर है, एनर्जी है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो अगर सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़कर किसी और जगह लाइफ मौजूद हो सकती है तो वो बहुत हद तक इंसेलेडस ही हो सकता है।
13: वहाँ पर जीवन के उभरने का इशारा देने वाली कसीनी की खोज बर्फीले इंसेलेडस को बेशकीमती नगीना बनाती है।
21: हम उस प्रिस्टीन बॉडी के साथ किसी अनजाने कॉन्टेक्ट का खतरा नहीं उठा सकते थे। कसीनी की खुद की डिस्कवरीज ही उसके खत्म होने की वजह थी, उसे किसी कंट्रोल्ड तरीके से ही खत्म कर सकते थे।
13: नासा जिसे कंट्रोल्ड फैशन कहती है वो असल में मौत की तरफ एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी डाइव थी। हालांकि कसीनी अपने अंत तक चाहते हुए भी जूझ रहा था।
21: ये स्पेसक्राफ्ट जल्दी ही मुसीबत में गिर सकता है,
19: ये थ्रस्टर्स एटमॉस्फेयर की सारी फोर्सेस से फाइट कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो एंटीना अर्थ की तरफ पॉइंट करता रहे, क्योंकि वो हमारा लास्ट लिंक है। एटमॉस्फेयर के थिक होने और उस फोर्सेस के ज्यादा स्ट्रांग होने पर थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को संभाल नहीं पाएंगे।
22: कसीनी अपना फॉल प्रोटेक्शन इनिशिएट करेगा। ये पूरी कोशिश करेगा कि एंटीनास को अदल बदल कर कम्युनिकेशन को जहां तक हो बनाए रखे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर के दबाव से टूटकर वेपोराइज हो जाएगा।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
23: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
23: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
24: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
25: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
26: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
27: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
26: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: ये कहानी है कसीनी के मिशन की। नासा से मिले साइंटिफिक डेटा पर आधारित कसीनी से मिली इन रियल फोटोग्राफ्स के साथ, जो इतनी साफ हैं कि रिंग प्लैनेट सैटर्न की हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाती हैं।
28: ये ना सिर्फ खूबसूरत, आकर्षक और मिस्टीरियस दिखता है, बल्कि ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल है। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट हैं और उन तमाम तरीकों से पर्दा हटाना चाहते हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम को तराश कर इसे वैसा दिखाया है जैसा ये आज है, तो सैटर्न ही वो सिस्टम है जिस पे नजर डाली जा सकती है।
13: सूरज से ये छठा प्लैनेट है और जिसे हम इसकी सतह के तौर पर देखते हैं वो असल में हीलियम और हाइड्रोजन का एक विशाल गोला है। ये एक गैस जायंट है। 1,20,000 किलोमीटर तक फैला ये गोला अर्थ के डायमीटर से तकरीबन 10 गुना बड़ा है।
2: अगर आप सैटर्न पर जाकर देखें तो पहले आपको बहुत सी गैसेस और बादलों की लेयर्स दिखेंगी। टेम्परेचर बढ़ जाता है और हाइड्रोजन तब तक कंप्रेस होती जाती है जब तक ये फ्लूइड नहीं होने लगती, और फिर ये जिसे हम मॉलिक्यूलर स्टेट कहते हैं वहाँ से मेटालिक स्टेट में जाती है, जिसमें हाइड्रोजन इतनी टाइटली स्क्वीज हो जाती है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होते हैं।
4: 1600 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवाएं इसके एटमॉस्फेयर को चीरती हुई निकलती हैं।
5: हम जानते हैं कि सैटर्न में जबरदस्त इरप्शंस होते रहते हैं। सैटर्न के एटमॉस्फेयर में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो कोई चीज एक बार शुरू होने के बाद काफी वक्त तक चलती रहती है।
4: लेकिन ऐसे तूफानों के थपेड़ों के बीच भी हैरानी की बात है कि एक खास चीज में ज्यादा बदलाव नहीं होता, हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स हैरतअंगेज तरीके से एकदम सीधी रहती हैं।
5: ये एक बहुत ही सरियल फीचर है। ऐसा दिखने की उम्मीद नहीं होती जिसकी साइड स्ट्रेट हो, उस एटमॉस्फेयर को जो क्लाउड्स और गुबार जैसी चीजें पैदा कर सकता है।
4: अब कसीनी की तस्वीरें बताती हैं कि हेक्सागन महज एक तूफान है, करीब 32,000 किलोमीटर चौड़ा, और इसके बीचों बीच है तूफान का एक शांत केंद्र। 540 किलोमीटर पर आर की रफ्तार छूती हवाओं से घिरा, तेजी से घूमते झोंके हैरतअंगेज तरीके से इसके किनारे सीधे रखते हैं। अजीबोगरीब है ये प्लैनेट, लेकिन जहां ये प्लैनेट अपने आप में कुछ अलग सा है, वहीं बाकी चीजों के मुकाबले एक चीज इसे खास बनाती है, रिंग्स जो इसे चारों तरफ से घेरे हैं।
6: सैटर्न की रिंग्स इंसान की नॉलेज में सबसे फ्लैट स्ट्रक्चर है। उनकी वर्टिकल हाइट करीब 33 फीट है, लेकिन उसके एक एंड से दूसरे एंड का डिस्टेंस अर्थ से मून जितना है।
4: रिंग्स बर्फ और पत्थरों की घूमती धारियां हैं, जो प्लैनेट की जबरदस्त ग्रेविटी से अंदर को खींची और उन्हीं थिन डिस्क के दायरे में रहती है। दूर से ये ठोस लगती हैं, पर ये ऐसी है नहीं।
6: आप सैटर्न की रिंग्स पर खड़े नहीं हो सकते, ये कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके बजाय इसमें बहुत बड़ी तादाद में पार्टिकल्स होते हैं, और हर रिंग प्लैनेट के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में होती है, और इन पार्टिकल्स का साइज हो सकता है एक छोटे कंकड़ से लेकर एक घर के बराबर तक।
4: सिर्फ रिंग्स ही अकेली हेवनली बॉडीज नहीं है जो इस प्लैनेट का चक्कर काटती है, यहाँ तो जहाँ नजर डालो वहाँ मून्स भी दिखते हैं।
5: इसके बहुत सारे तरह तरह के डाइवर्स मून्स हैं, सब मिलाकर ये 60 से ज्यादा होंगे।
4: आधा किलोमीटर चौड़ी चट्टानों से लेकर एक तो तकरीबन मार्स जितने आकार का है।
5: हर एक की अपनी एक कहानी है, इनमें वो सब है जो आप डिस्कवर करना चाहते हैं एक प्लानिटरी एक्सप्लोरर के नाते।
4: क्या है जो सैटर्न की तरफ हमें लुभाता है? वो है ये रिंग्स, वो मून्स, जबरदस्त तूफान।
7: इसमें एक नई प्लैनेटरी सिस्टम है, इसमें न जाने कितने रहस्य छुपे हैं।
4: नासा को सैटर्न पर जाना था।
5: इस बात का जानना ही कि इसे सैटर्न तक जाना था, इसे सोलर सिस्टम क्रॉस, ये जिंदगी के कुछ बेहतरीन पलों में से एक था।

0: टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ऐसे प्लैनेट तक जा रही हूँ जो अर्थ के मुकाबले सन से 10 गुना ज्यादा दूर है।
1: इसके लॉन्च से पहले 2 साल से ज्यादा वक्त में स्कूल बस जितने बड़े अंतरिक्ष यान को बनाने में सैकड़ों लोगों ने बहुत मेहनत की थी।
2: ये स्पेस क्राफ्ट गजब का है। प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलमेज, थैंक यू जिम।
1: उम्मीदों भरे इस मिशन पर टीम की अगुवाई की अर्ल मेज ने।
2: हर तरफ से इंस्ट्रूमेंट से लैस है ये।
1: इस पर थे सैटर्न और उसके मून्स को बारीकियों से देखने, सुनने, अंदाजा लगाने और सूंघने के टूल्स। एक यूरोपियन प्रोब जिसे उतरना था दूर अंतरिक्ष में सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर। और इसमें थे 2 इंजन सिस्टम्स रिजर्व में अपने अपने बैकअप्स के साथ। मेन इंजन जो बड़े मनूवर्स के लिए नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करता था, और छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स के लिए छोटे थ्रस्टर्स।
2: इसका वेट है वो 5000 किलो से ज्यादा है, यानी 12000 पाउंड्स। मैं पूरे प्रोपेलेंट की बात कर रहा हूँ।
1: टैंक्स खाली न हो इसकी जिम्मेदारी थी टॉड बार्बर पर।
3: सब चीज ठीक दिखता है, नॉमिनल कसीनी।

0: इस कीमती सोर्स को काम में लेता है।
1: कैसिनी मिशन को नासा की हिस्ट्री में किसी भी दूसरे मिशन के मुकाबले ज्यादा न्यूक्लियर पावर चाहिए थी।
0: 3 बेहद हिफाजत से सहेजे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रेडियो एक्टिव डीके की हीट को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलते हैं। इनके अंदर इरिडियम कोटेड प्लूटोनियम पैलेट्स होती हैं, जो दसियों साल तक चलती हैं, लेकिन जीवन के लिए जानलेवा हो सकती हैं। इसी एनर्जी सोर्स की बदौलत कैसिनी के कैमरास पिक्चर्स लेते थे और अपने रेडियो मैसेजेस को अर्थ पर भेजते थे।
1: इससे स्पेसक्राफ्ट पर लगे सभी डिवाइसेस चलते हैं और साथ ही रेजिडुअल हीट भी पहुंचाई जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स को वार्म रखते हुए उन्हें उनकी प्रॉपर ऑपरेटिंग रेंज में रखती है।
0: लेकिन गर्माहट कैसे बनाए रखी जाए जब बाहर का टेम्परेचर मस 220 डिग्री सेल्सियस हो? उसके लिए ब्लैंकेट लपेटा जाता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के इस रूम में $10 लाख से ज्यादा कीमत के यही रखे हुए हैं।
1: ये वो फैब्रिक है जो कैसिनी को शील्ड करेगा और उसे स्पेस के एनवायरमेंटल फ्लक्सेस से प्रोटेक्ट करेगा।
0: कैसिनी को सुरक्षित रखने वाले स्पेशलाइज्ड फैब्रिक की 20 से ज्यादा लेयर्स असली सोने की नहीं बल्कि रंगीन एल्यूमिनाइज मटेरियल की है। कीमत है $60,000।
1: काम के लिहाज से देखा जाए तो कैसिनी को बनाना बहुत मुश्किल था। ये सोचकर ही दिमाग हिल जाता है कि हमें इस पूरे स्पेसक्राफ्ट के लिए शील्ड डेवलप करना है।
0: सोचने, डिजाइन करने, बनाने और टेस्ट करने के दो साल बाद अब ये मिशन पर रवाना होने को तैयार था।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना? BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए।

0: ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सैटर्न की तरफ बढ़ते हुए कसिनी प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ स्लिंगशॉट होता था। ये वो मनूवर है जिसे कहते हैं फ्लाई बाय।
3: अर्थ के ऑर्बिट से निकलने में ही 2 वीनस फ्लाई बाईस और 1 अर्थ फ्लाई बाय का इस्तेमाल किया गया था।
2: अर्थ फ्लाई बाय जमीन से 1100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ऊंचाई पर होता है। ये खतरनाक है।
3: कसिनी को बड़ी होशियारी से मैनेज करना पड़ा था ताकि कहीं गलती से प्लूटोनियम के वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने का खतरा न रहे।
2: रफ्तार में सुरक्षित तेजी और कैमरास के पहले इम्तिहान के साथ जोखिम उठाना कामयाब रहा।
4: हमने मून की इमेजेस ली, ये एकदम साफ और शानदार थी। लग रहा था जैसे हमारी फर्स्ट ड्रेस रिहर्सल हो, जो अपनी ही रफ्तार से स्पेस में चल रही थी।
2: इसके ठीक सामने थे एस्टेरॉयड बेल्ट में चक्कर काटते लाखों लूज रॉक्स, जिनसे अंतरिक्ष यान पहले भी सही सलामत गुजर चुका था। तब भी अंतरिक्ष में मौजूद डस्ट पार्टिकल से लंबी दूरी के इस मिशन को नुकसान पहुंचने का खतरा उस लिहाज से कुछ ज्यादा ही था।
5: डेटा एनालाइज करके देखा गया था, एस्टेरॉयड बेल्ट का एरिया इतना ज्यादा खतरनाक था कि हमें मेन इंजन्स को कवर करना पड़ा।
2: जूली वेबस्टर अंतरिक्ष यान की लीड पायलट थी। कवर डिजाइन करने के लिए वो कसिनी के थर्मल ब्लैंकेट्स बनाने वाली टीम के भरोसे थी।
6: हमें महीनों लग गए थे मेन इंजन कवर को ही बनाने के लिए उसकी पैटर्निंग और टेस्टिंग की कोशिशों में।
5: इसमें 2 मोटर्स थी, इसमें पायरोटेक्निक डिवाइसेस भी थी ताकि जरूरत पड़ने पर इसे उड़ाया जा सके।
2: कसिनी बिना किसी नुकसान के लाइन में अगले प्लैनेट जुपिटर की तरफ बढ़ गया।
3: कसिनी के फ्लाई करते वक्त भी इसे बनाना और डेवलप करना चलता रहा। ईयर 2000-2001 में जुपिटर पर हमें उस पूरे प्रोसेस को लागू करना पड़ा जहां प्लैनेट्स के पर पूरे सिस्टम को काम में जुटाना पड़ा था।
4: मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। जुपिटर की हमारी पहली इमेजेस को देखकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। इतनी डिटेल्ड इमेजेस थी, उसको देखकर मैं समझ गई थी कि ये गजब का सफर रहने वाला है सैटर्न के सिस्टम में।
2: कसिनी ने न सिर्फ जुपिटर को देखा बल्कि इसने जुपिटर के लंबे चौड़े मैग्नेटिक फील्ड में सोलर विंड्स की आवाज भी सुनी।
7: हमें असल में तमाम तरह के साइंटिफिक मेजरमेंट्स मिले। इसे सैटर्न पर पहुंचने के फुल अप टेस्ट के तौर पर देखा जा सकता था।
2: जून 2004, वहां तक पहुंचने में 7 साल लगे थे। अब ये 96,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से सैटर्न की तरफ बढ़ रहा था। ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद तो थी, पर ये कहीं ज्यादा तेज जा रहा था। ऐसे में कसिनी के लिए ब्रेक्स लगानी जरूरी थी।
3: ऑर्बिट इंसर्शन मिस हो जाता तो फ्लाई बाय मिशन करना पड़ता।
8: अगर वो काम नहीं करता तो हम दोबारा कभी रिंग्ड प्लैनेट न देख पाते।
2: अंतरिक्ष में बहुत कुछ गलत हो सकता है।
3: वहाँ डस्ट है, पोटेंशियल रेडिएशन है जो हमारे कंप्यूटर्स को रीसेट कर सकती है।
5: हमने एक के बाद कई टेस्ट किए। हर चीज सही तरह से की जानी बहुत जरूरी थी।
3: उस वक्त सबकी सांसें थम गई।
2: ऑर्बिट इंसर्शन करते हुए मिशन कंट्रोल को अंतरिक्ष यान से बस एक वीक सिग्नल ही मिल सकता था। इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने पर डॉपलर इफेक्ट को कसिनी की पोजीशन का इकलौता सुराग देना था और सैटर्न की रिंग्स बार बार सिग्नल में अड़चन डाल रही थी।
3: कभी लाते कभी चले जाते, जैसे छोटा लाइट बल्ब टिमटिमाता है। वो 90 मिनट इसी परेशानी में बीते। हम उसे देखते और मुंह से निकलता सब ठीक है।
4: थोड़ी ही देर में हमें पता जाना था कि हम ऑर्बिट में हैं या नहीं।
3: फाइनली हमें नेविगेशन से कॉल आया।
2: कोई बदलाव लिए वो फ्लैट डॉपलर सिग्नल वो इशारा था जिसका उन्हें इंतजार था।
3: उस पॉइंट पर हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम ऑर्बिट में थे।
4: बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ जैसे कि हम कोई सपना देख रहे हों।
5: स्पेसक्राफ्ट को फ्लाई कराकर एक अलग ही खुशी हुई। हम उन लोगों के दम पर खड़े थे जिन्हें इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने और डिजाइन का 40 साल का एक्सपीरियंस था। मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ। इट वॉज जस्ट एन इनक्रेडिबल इवेंट।
2: इस जीत के बाद वक्त था बिल्डर्स और नेविगेटर्स की कमान दूसरों हाथ में देने का।
4: ये ऐसा था जैसे कि कमान का इंजीनियर से इमेजिंग टीम के हाथ में जाना हो।
2: कसीनी की ली हुई रियल फोटोग्राफ्स एक अनोखा आर्ट कलेक्शन पेश करती हैं। ये इसके सफर और ऑर्बिट में दाखिल होने का गजब का नजारा दिखाती हैं और नासा साइंटिस्ट्स को प्राइड का अलग सा एहसास कराती हैं।
4: ऐसा लगा जैसे मैं हूँ कैप्टन ऑफ द विंडोज यू नो ऑन द शिप।
2: कैमरा टीम की अगुवाई कर रही कैरोलिन पोर को तो इस दुनिया की खूबसूरती देख औरों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैरान थी।
4: ये वो इमेज है जो बताती है कि सैटर्न इतना शानदार क्यों है।
2: ये रियल फोटोग्राफ उन अलग अलग 141 फोटोग्राफ्स को मिलाकर बनी है जो कसीनी के वाइड एंगल कैमरा ने लिए थे।
4: ये रिंग्स ऐसे चमक रही हैं मानो इन पर पीछे से सन की रोशनी पड़ रही हो और वहाँ वो 1.6 अरब किलोमीटर दूर एक पेल ब्लू डॉट हमारा प्लैनेट अर्थ है। ये सब उस पल को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है कि जब ये पिक्चर ली गई थी तो तब उस छोटे से डॉट पर होमो सेपियंस थे।
2: कसीनी के कैमरास ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लेते थे, सिर्फ 1 मेगापिक्सल की, आज के स्मार्टफोन से कम रेजोल्यूशन की। लेकिन अलग अलग फिल्टर से ली गई कई तस्वीरों से नासा ने ट्रू टू लाइफ कलर फोटोग्राफ्स बनाए, वैसे जैसे कसीनी से बाहर झांकने पर आंखें देखती। सैटर्न के आसपास उन कैमरास को एक के बाद एक कई मून दिखे।
5: ऐसा एनवायरनमेंट जहां रहा जा सकता।
2: लिंडा स्पिल्कर मिशन की प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं।
7: कसीनी से पहले वहां 50 के करीब मून्स थे, वैसे हमें उससे भी ज्यादा मिले हैं।
2: अब तक रिकॉग्नाइज किए जा चुके 62 मून्स में से कुछ तो बेहद लुभावने हैं। एक रेट्रोग्रेड मून फीबी तकरीबन बाकी सबसे उल्टी दिशा में सैटर्न के चक्कर काट रहा है। दिखने में अंडरसी कोरल जैसे हाइपीरियन का आकार आधा तिरछा है और ये घूमता भी बेतरतीब है। सैटर्न के 5वें सबसे बड़े मून टेथिस का विशाल क्रेटर अंतरिक्ष को देखती आंख के जैसा है और ये है आयापिटस जिसके इक्वेटर पर एक रिज है।
7: ये काफी पुराना है, क्रेटर्स देखे जा सकते हैं जिन्होंने इसे ब्रेक किया था। सवाल उठता है कि क्या शुरू में लैपिटस इतनी तेज घूमा था कि बाहर को फूल गया और फिर इसकी सरफेस हार्ड हो गई, या शायद लैपिटस का कोई रिंग है इसके इक्वेटर पर, शायद रिंग पार्टिकल सरफेस पर गिरे थे और ये रिंग बन गए।
2: और फिर है सैटर्न के मून्स का बादशाह टाइटन।
9: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
10: ठक ठक
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
13: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: मिड दिसंबर 2004, कसीनी सैटर्न के बार बार चक्कर काट रहा था। अब वक्त था यूरोपियन हॉइगिंस प्रोब को डिटैच करने का। इसका मिशन है सबसे बड़े मून पर जाना, जो है टाइटन। पहले के नासा मिशन से मिली तस्वीरें इस गजब की बादलों से घिरी दुनिया के कुछ नजारे पेश करती हैं।
10: हमारे सोलर सिस्टम में टाइटन ही वो अकेला मून है जहाँ एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर सरफेस को धुंधला देता है, और कसीनी मिशन से पहले हमें असल में नहीं पता था कि टाइटन की सरफेस ग्लोबल लिक्विड ओशन थी या एक सॉलिड बॉडी।
2: एलेक्स हेज को टाइटन बहुत लुभाता है। कसीनी की रेडार टीम में एक साइंटिस्ट एलेक्स ये जानने को बेताब है कि इसके बादलों के अंदर और नीचे क्या है। अर्थ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ किया गया उनका काम उस टेरेन की तरफ इशारा करता है जो उन्हें टाइटन पर दिख सकती है।
10: हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू सोडा ड्राई लेक। टाइटन एक्सप्लोरर्स के लिए सपनों की दुनिया है। उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के नाते ही नहीं जहां हम लैंडस्केप्स को शेप देने वाली प्रोसेस होते हैं, बल्कि इसके कनेक्शन को जानने और ये भी कि दूसरे वर्ल्ड्स में लाइफ कैसे उभरती है।
2: हमारे बाहर के किसी भी मून पर पहले टचडाउन में बहुत से खतरे होते हैं। उतरने वाली जगह बिल्कुल अनजान होती है। इसका बिल्कुल पता नहीं होता कि वहां कैसी सतह होगी। डिजाइन चीफ्स में से एक जॉन ज़ारनेकी के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी।
14: बेशक हमें पता नहीं था कि हम कहां लैंड करने वाले हैं, सीधे पानी में उतरने वाले हैं या फिर ये एक हार्ड लैंडिंग होगी आईसी सरफेस पर, या फिर कोई बीच की जगह होगी जैसे कि कोई दलदल वगैरह।
2: सुदूर अर्थ से गई प्रोब बादलों में ब्लाइंड डाइव लगाने वाली थी।
14: क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम कहां लैंड करने वाले हैं, इसलिए प्रोब को ऐसा डिजाइन किया गया था कि एटमॉस्फेयर से उतरते हुए अपने मेजरमेंट्स ले सके।
2: हॉइगन्स को बहुत ही आहिस्ता से नीचे आते हुए टाइटन के एटमॉस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन का कीमती डेटा इकट्ठा करना था। इसका सोल्यूशन था एक कॉम्प्लेक्स थ्री पैराशूट सिस्टम। शूट वन ने एंट्री पर हरकत में आकर प्रोटेक्टिव कवर हटाया। कुछ ही पल बाद मेन शूट डिप्लॉय हुआ और हीट शील्ड हट गई। फिर टाइटन से करीब 100 किलोमीटर ऊपर आखिरी शूट खुला और धीरे धीरे डिसेंड होने लगा। कुछ सब ठीक रहने पर उसे सतह पर पहुंचने में 2.5 घंटे लगने थे।
14: क्योंकि हम ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि हम बच पाएंगे, इसलिए प्रोब को ऐसा बनाया गया था कि एटमॉस्फेयर से डिसेंड करते हुए इसके मेजरमेंट ले सके। बेशक हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये लैंडिंग को झेल जाएगा।
2: हॉइगन्स कसीनी पर सवार होकर 3.5 अरब किलोमीटर दूर इस मुकाम तक पहुंचा था। अब इसका नाम कमाने का पल आ पहुंचा था।
14: यह मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि हमने हॉइगन प्रूव को कसीनी क्राफ्ट से क्रिसमस के दिन छोड़ा था। वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। इसे वहां से टाइटन की तरफ भेजा गया था जहां उसका उससे टकराना बिल्कुल तय था। रिलीज में कितनी हुई थी? हमें प्रोब की दो बहुत खूबसूरत ऑप्टिकल नेविगेशन इमेजेस मिली थी इसके स्पेसक्राफ्ट को छोड़ते वक्त की, तो हमें पता था हम सही ट्रेजेक्ट्री पर हैं।
2: इस पॉइंट पर प्रोब के अलग होने के बाद टाइटन तक पहुंचने में इसे और 3 हफ्ते लगने थे।
14: ये हमें मिडल ऑफ जनवरी में फैसले के उस दिन तक ले गया जब जो होना था वो होने जा रहा था और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे।
15: Welcome back to the Huygens arrival on Saturn's moon Titan. Capsule entry survive कर गया है और अपने signals transmit कर रहा है वापस Cassini orbiter में।
2: सतह से करीब 65 किलोमीटर ऊपर अपने पैराशूट से धीरे धीरे उतरते हुए प्रोब की भेजी ये तस्वीर दिखाती है कि बादलों के नीचे क्या है।
10: Huygens प्रोब ने ये खूबसूरत मोज़ेक दिखाया कि टाइटन अर्थ के जैसा कैसे है। वहाँ आसमान से लिक्विड गिरता है जो सरफेस पर बहता है और तराशता है खूबसूरत डेंड्रिटिक चैनल्स, माउंटेन पासेस और शैलो स्लोप से बहते हुए। उन स्लोप्स के बेस पर है डून फील्ड्स जो साइज और शेप में अफ्रीका में दिखने वाले डून्स जैसे ही हैं।
14: हमने डेटा रिसीव होते हुए देखा। हम उसे देख रहे थे कि तभी किसी ने चिल्ला कर कहा कि हम सरफेस पर पहुंच गए हैं। हमने सरफेस के साथ एक इंपैक्ट को डिटेक्ट किया है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है।
2: लैंडिंग की तस्वीरें हैरतअंगेज लैंडस्केप का नजारा देती हैं।
1: ये
4: इमेज तो हैरान करने वाली थी, जिसमें आपको बैकग्राउंड में टाइटन होराइजन दिख रहा है और एक मैदान जिसमें चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं।
2: सबसे अच्छी खबर, ये सतह नरम लेकिन ठोस है, गीली रेत सी लगती है। ये प्रोब अपनी बैटरीज के खत्म होने तक ट्रांसमिट करता है।
14: हमने सरफेस पर 3 मिनट का प्लान बनाया था, लेकिन डेटा आता गया, हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमें कुल मिलाकर 72 मिनट मिले थे सरफेस पर।
2: कसीनी की खोज और बेहतर होती गई। 100 से ज्यादा फ्लाईबाइज में इसका रेडार टाइटन के बादलों को भेदता गया।
10: कसीनी रेडार की सबसे चौंकाने वाली डिस्कवरीज में से एक थी टाइटन की पोलर टेरेन में झीलों और समुद्र की खोज, जिसमें सबसे बड़ी शेप और साइज में अर्थ की ग्रेट लेक्स जैसी ही थी।
2: लेकिन ये लेक्स पानी से भरी नहीं थी, टाइटन पर तो पानी जम जाएगा। इसके बजाय कसीनी ने खोजी लिक्विड मीथेन।
10: टाइटन पर मीथेन अर्थ पर पानी जैसे ही बिहेव करती है। हमें इन लेक्स की सर्फेसेस पर एक्टिविटी दिखने लगी। जैसे ही हवा चलनी शुरू हुई, विंड वेव्स लिक्विड सर्फेस पर और तेजी से उभरने लगी।
2: टाइटन की स्टडी करने वालों के लिए ये नई बात थी, ये चीज अर्थ से बहुत मेल खाती थी। लेकिन किसी दूसरे मून पर हुई खोजों ने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। वो पल आया फरवरी 2005 में, मिशन शुरू होने के 7 साल 4 महीने बाद। आइस मून इंसेलेडस के एक फ्लाईबाई ने हालात एकदम बदल डाले। सतह से धुंध की रहस्यमयी फुहारें निकलने लगी।
4: ये शुरुआती तस्वीरें हैं जिनमें हमने इंसेलेडस के साउथ पोल से प्लूम्स निकलते देखे थे। बस यहीं से शुरुआत हुई।
7: इमेजिंग टीम ने बहुत संभल कर अपना डेटा प्रोसेस किया, उसके बाद बताया कि हम देख सकते हैं ये प्लूम है जो इंडिविजुअल जेट से बने मटेरियल से बना है, और शायद इंसेलेडस के साउथ पोल से ये मटेरियल कर्टन्स निकल रहे हैं।
2: फुहारें आपस में मिलकर एक धुंधली सी रिंग बना रही थीं, जिसके बीच में था इंसेलेडस। आकार में अर्थ के मून के महज 7वें हिस्से जितना इंसेलेडस एक पहेली साबित हो रहा था। इतने छोटे मून्स आमतौर पर बेदम और बेजान होते हैं। अंतरिक्ष में ये लिक्विड बौछारें तो निकलनी ही नहीं चाहिए थीं। लेकिन फिर 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे पर जमी सतह पर कसीनी को कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में पहले किसी को अंदाजा नहीं था।
4: हमने देखा कि हीट लीक हो रही थी साउथ पोल से, वहाँ से वाटर वेपर, डस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल निकल रहा था, जिसका मतलब साफ था कि अंदर किसी तरह की एक्टिविटी चल रही थी।
2: इंसेलेडस ज्यादा हैरतअंगेज होता जा रहा था और साइंटिस्ट जानते थे उन्हें वापस लौटना होगा।
4: हमें ये फायदा हुआ ऑर्बिट में रहने का, अगर ये किसी फ्लाईबाय पे होता तो हम इंसेलेडस को रियर व्यू मिरर में देख रहे होते। हमें कभी मौका नहीं मिलता कि हम उसे करीब से जाके देखें कि वहाँ हो क्या रहा है।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
16: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
17: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
18: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
17: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
18: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
17: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
18: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।
19: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
20: अर्थ पर मौजूद साइंटिस्ट्स के लिए 112 करोड़ 65 लाख 40 हजार 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर ऑर्बिट में बदलाव करना कोई आसान काम नहीं था। ये एस्ट्रोडायनामिसिस्ट के नाइटमेयर जैसा था। ब्रेंट बफिंगटन नेविगेटर हैं। इस मुश्किल का सामना उन्हें करना था।
21: ये मिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हमें अडाप्ट करना था, होशियार रहना था, ताकि $3 अरब के एसेट को कोई नुकसान ना पहुंचे।
22: अगर इसे बदलें तो आगे और क्या क्या हो सकता है।
23: फ्लाई बाइज कई महीनों, कभी कभी तो सालों पहले प्लान किए जाते हैं, तो अगर कुछ पता चले और हम उसके बारे में कुछ कर सकते हो तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते, दिन रात काम करते हैं। और नई ऑब्जर्वेशंस को, जिन्हें साइंटिस्ट्स डेस्परेटली चाहते हैं, उन्हें कामयाब बनाते हैं।
20: रूट मैप पर फिर से गौर करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था।
23: चाहते थे कि फॉरेन हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के और ज्यादा नजदीक पहुंचे, लेकिन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की सबसे नजदीकी अप्रोच पर भी बढ़ना चाहते थे। फिर हम एक सोल्यूशन पर पहुंचे और हमने ऑल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर से 165 किलोमीटर कर दिया।
20: ये पास पहले फ्लाई बाय से 7 गुना नजदीक था। जो खोजे हुई हैं उन्हें देखते हुए रास्ता बदलना काम आया।
23: ये वो फ्लाई बाय था जहां हमने पहली बार फिशर्स देखे थे साउथ पोलर रीजन में, जिसे बाद में नाम दिया गया टाइगर स्ट्राइप्स।
20: स्ट्राइप्स खुले जख्म की तरह थीं, जहां नीचे से पड़ते दबाव से सतह पर सुराख हुए थे। वो दरारों के आसपास ज्यादा सफेद ताजी बर्फ के ठोस होते जाने से अलग दिखते थे।
24: हमने एक दर्जन या शायद उससे ज्यादा जेट्स देखे जो साउथ पोल की सर्फेस से 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा तक उड़ रहे थे। उन्हें देखते ही हमें पता चल गया था कि ये थे गाइजर्स, जो दरअसल उन फ्रैक्चर से निकलते हुए वेपर्स और पार्टिकल्स थे।
20: उस वक्त इंसेलेडस से ज्यादा अहम कुछ नहीं था।
25: हम और जानने के लिए फिर से लौटना चाहते थे और उन जेट्स के पास से फ्लाई करके उसे टेस्ट भी करना चाहते थे जो उनसे निकल रहा था।
20: जानने की साइंटिस्ट्स की चाह अंतरिक्ष यान की सुरक्षा की जरूरत के सामने भारी पड़ सकती थी, और उसकी हेड थी जूली वेबस्टर।
26: इंजीनियरिंग टीम को अनदेखा करना मुश्किल था। अगर हमें कुछ सेफ नहीं लगता तो सुनी हमारी जाती, लेकिन अगर साइंस को वहाँ तक ले जाना है और अगर आप लिया नहीं लेते क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं, तो आपको मनचाही चीज नहीं मिल सकती।
23: हमें इस प्लूम के बारे में कुछ जानना था। ये किससे बना था, कितना डेंस था, ये क्या टाइम के लिहाज से बदलता था, ज्योमेट्री बदलती थी।
20: ऐसे सवालों के जवाब के लिए कसीनी ने एक बड़े खतरे का जोखिम उठाया।
23: एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ से 1 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर था। हम लोग सरफेस से 25 किलोमीटर नीचे की तरफ गए, एक बहुत बहुत हार्ड सरफेस की तरफ 8 या 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहे थे।
20: ये खतरनाक मनूवर बताता है कि ये मून कितना एक्टिव था।
24: हमने उन फ्रैक्चर से 101 से ज्यादा गाइजर्स और मटेरियल निकलते देखे, और दूसरी टीम्स ने पाया कि उन वेपर्स में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद थे। वो गाइजर्स उस ओशन से आ रहे थे जो ज्यादा सॉल्टी था अर्थ के ओशन की सालिनिटी के मुकाबले, और वो बस स्पेस में उठ रहे थे।
20: इंसेलेडस पर पाई गई हीट बताती है कि ओशन फ्लोर के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। अर्थ पर ठीक ऐसे फीचर्स जीवन को आसरा दिए दिखते हैं।
25: ये है वो छोटी सी दुनिया जिसमें एक लिक्विड वाटर ओशन है इसकी आइसी क्रस्ट के नीचे, जहां सी फ्लोर के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। यहाँ लाइफ के सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं: वाटर, सोर्स ऑफ एनर्जी और हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलते न्यूट्रिएंट्स।
20: ये साइंस की सबसे अहम खोज हो सकती है। ये हमारे प्लैनेट के बाहर जीवन की संभावना है।
23: वहाँ लिक्विड वाटर है, एनर्जी है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो अगर सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़कर किसी और जगह लाइफ मौजूद हो सकती है तो वो बहुत हद तक इंसेलेडस ही हो सकता है।
20: अप्रैल 2017, अंतरिक्ष यान कसीनी को सैटर्न पर 13 साल हो चुके। फ्यूल टैंक्स तकरीबन खाली हो चले थे, कसीनी का वक्त पूरा हो गया था, इसे अब और उड़ते रहने नहीं दिया जा सकता था। थियोरेटिकली अर्थ के माइक्रोब्स के यान पर जिंदा बचे रहने का अंदेशा था।
0: कसीनी उस स्पेसक्राफ्ट के करीब 72 डिग्री अंदर था, तो अगर छोटे छोटे माइक्रोब्स होते जिन्हें वैक्यूम से फर्क नहीं पड़ता तो वो हमेशा जिंदा रह सकते थे।
20: नासा का एक फर्ज है अर्थ के जीवन से कभी किसी दूसरी दुनिया को कंटामिनेट ना किया जाए।
0: कसीनी को सुरक्षित तरीके से दूर करना था,
3: हमें स्पेसक्राफ्ट को डिस्पोज करना था ताकि हम सैटर्न सिस्टम को किसी प्रिस्टीन बॉडी से पोल्यूट ना करें।
0: इंसेलेडस पर एक गर्म खारे पानी का अंडरसी ओशन था, हम लापरवाही से उसकी प्रिस्टीन बॉडी के साथ किसी कांटेक्ट का खतरा नहीं उठा सकते थे।
20: नासा टीम के लिए वो पल तकलीफ देह था, लेकिन उन्होंने कसीनी के खत्म होने से पहले उसे एक आखिरी कोशिश करने को कहा।
0: हम सैटर्न के रिंग्स और सैटर्न के एटमॉस्फेयर के बीच उस जगह डाइव करने जा रहे थे जहां पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था। हम 112,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 2,000 किलोमीटर वाइड गैप में जाने वाले थे।
20: इतना खतरनाक मैनूवर था जिसे उस अंतरिक्ष यान को ही करने को कहा जा सकता था जिसे उन्हें खत्म करना था।
0: उस वेलोसिटी पर तो सैन का एक पीस भी स्पेसक्राफ्ट को बेजान कर सकता था।
20: ग्रैंड बफिंगटन और नेविगेशन टीम एक बार फिर कुछ इम्पॉसिबल करने का सोच रही थी।
3: वहाँ पे गैप था 2000 किलोमीटर का सैटर्न के अपर एटमॉस्फेयर और डी रिंग के इनर पोर्शन के बीच, तो अगर हम एक सिंगल टाइटन ग्रेविटी की मदद से पूरे मेन रिंग सिस्टम से जंप करके सैटर्न पर इम्पैक्ट डालते तो उससे पहले रुककर स्पेसक्राफ्ट को उस गैप से ले जा सकते थे।
20: उस गैप से निकलने की एक अगली उम्मीद थी टाइटन से ग्रेविटी की एक आखिरी मदद।
3: टाइटन पर एक सिंगल ग्रेविटी असिस्ट स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी में 2600 फीट पर सेकंड से ज्यादा का बदलाव ला सकता था।
20: प्लैनेट की सतह और रिंग्स के बीच बढ़ते हुए सुई के छेद से निकलना था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला था।
24: हो सकता था कि उधर बड़े बड़े रिंग पार्टिकल्स यहाँ वहाँ उड़ रहे हों, तो हो सकता था कि कोई पार्टिकल हमसे भी टकरा जाता।
26: मेरा पहला रिएक्शन था, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं ये सेफली कर सकती हूँ? फिर मैं बोली, ओ मुझे जरा सोचने दो। वेल नो, शायद हम ये कर सकते हैं।
20: अगर प्लान कारगर हुआ तो कसीनी आराम से वहाँ जाएगा, कोई अंतरिक्ष यान नहीं गया है। आखिरी 22 ऑर्बिट्स साइंटिस्ट्स के आखिरी सवालों के जवाब देने वाले थे।
24: हम नजदीक से देखने जा रहे थे, हम सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड को नापने वाले थे जो हमें फाइनली ये बताने में मदद करेगा कि सैटर्न पर इंटीरियर रोटेशन रेट क्या है, सैटर्न पर दिन क्या है, क्योंकि हमें तब तक ये नहीं पता था। और हम डिटेल के उस लेवल पर इमेजेस भी ले रहे थे जो हमें पहले नहीं मिली थी। हमने सबसे ऊंचे जाने का प्लान बनाया था।
20: शुरुआत हो चुकी थी, अब वापस लौटने का कोई मौका नहीं था। कसीनी का ग्रैंड फिनाले।
24: आज आधी रात में पहली बार कसीनी अर्थ की तरफ मुड़कर सिग्नल भेजेगा और हमें बताएगा कि वो उस गैप से गुजरने में कामयाब रहा जहां इसे बिल्कुल पहली बार भेजा गया है।
3: बहुत राहत महसूस हुई। इट्स वेरी वेरी गुड।
26: हर चीज बस एकदम परफेक्ट हुई है। थैंक यू, गुड जॉब। अच्छा महसूस हो रहा है।
20: रिंग से होकर गुजरने के खतरे का अच्छा नतीजा मिला और बहुत नजदीकी तस्वीरें मिली। सैटर्न के बादलों की चोटियां पहले से कहीं साफ, बिजली, अमोनिया के ब्लॉक्स और प्लैनेट के नॉर्थ पोल पर तूफान का केंद्र।
0: रेजोल्यूशन और बेटर और बेटर और बेटर होता जाएगा।
20: पहले से इकट्ठी की तस्वीरों में और तस्वीरें जुड़ती गईं।
24: कुछ नजदीक से ली रिंग इमेजेस देखकर तो लगा जैसे मैं हाथ बढ़ाकर रिंग्स या रिंग पार्टिकल्स को छू सकती हूँ। कसीनी की इमेजेस न सिर्फ साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग है बल्कि ये खूबसूरत भी है।
5: हमारे पास कमाल इमेजेस है। एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसका नाम है पैम। इसके चारों तरफ है एक पतली सी रिंग, ये बोलर हैट जैसा दिखता है। हमारे उसे देखने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उस जैसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है।
6: मुझे लगता है सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि जो गैप है एज ऑफ द रिंग और अपर एटमॉस्फेयर के बीच, वो खाली है, डस्ट नहीं है।
2: उन्होंने इसे बिग एम्प्टी नाम देकर टीम के लिए वो मेजरमेंट्स लेना आसान बना दिया है जिसकी उन्होंने उम्मीद लगाई थी। और उस वक्त साइंटिस्ट न सिर्फ डेटा से खुश थे बल्कि नजारा भी पसंद आ रहा था।
8: ऐसा लगता है कि आप वहीं पर हैं, कसीनी के कॉकपिट के अंदर, रिंग्स की शेडोज आपके लेफ्ट में ठीक साइड में पड़ रही हो, और फिर आप राइट में रिंग्स को देख रहे हो, वो भी अंदर से। ये सैटर्न सिस्टम का ऐसा नजारा था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था।
2: कसीनी का ग्रैंड फिनाले अपने नाम पर खरा उतरा था, लेकिन ये फिनाले था, अंत नजर आ रहा था। कसीनी हॉयगन्स मिशन तमाम उम्मीदों से आगे निकल गया। बीस साल पहले हुए लॉन्च से $3 अरब का यान 3.5 अरब किलोमीटर का सफर करके सैटर्न तक गया था, जिसने खोजी थी नई दुनिया, खींची थी विंग्ड प्लैनेट की अनोखी तस्वीरें, और उतरा था उसके सबसे बड़े मून पर लिक्विड मीथेन की लेक्स की खोज करते हुए, साइंटिस्ट्स को वो सोचने पर मजबूर करते हुए जो तकरीबन सोच से परे था,
25: कुछ केसेस में पॉसिबल हैबिटेबल एनवायरनमेंट
2: कि हमारी अर्थ से बाहर भी सोलर सिस्टम में जीव जूद हो सकता है, और आखिर में इतने नीचे और नजदीक जाते हुए इस विशाल गैस प्लैनेट की रिंग्स के इतना अंदर तक गया जितना कभी किसी ने सोचा तक ना होगा।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
11: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
12: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
9: और 9097160602।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
27: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
28: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
29: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
30: मैं बनूंगा।
29: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
29: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
2: ये हैं उस कसीनी के जीवन के आखिरी घंटे जो अब भी ठीक अंत तक डेटा इकट्ठा कर रहा है।
4: हम बेशक अपने सभी ग्रेट इन्वेस्टिगेशंस के बदले कुछ देने वाले हैं। हम इंसेलेडस, टाइटन, सैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड्स और पार्टिकल्स ऑफ रिंग्स की पिक्चर लेने वाले हैं। तो कसीनी अपने आखिरी दिन के पहले करीब 10 घंटे उन सब मैसेजेस को दुनिया के सामने पेश करेगा।
7: हम एक फेयरवेल मोजैक बनाएंगे जिसमें हम लेंगे पूरे सिस्टम को आखिरी बार, और फिर जब हम नजदीक जाना शुरू करेंगे, क्लाउड्स की तरफ उतरने लगेंगे, तो रास्ते में कुछ इमेजेस लेंगे, लेकिन धीरे धीरे इमेजेस हल्की पड़ते पड़ते धुंधला जाएंगी।
2: कैमरास के बंद होने तक खास इंस्ट्रूमेंट्स काम करते रहेंगे उन आखिरी मेजरमेंट्स के लिए। मिशन कंट्रोल में मॉली बिटनर कसीनी की फाइनल लाइफलाइंस में से एक थी, जो पक्का कर रही थी कि तमाम डेटा अर्थ तक पहुंच जाए।
10: मिशन के आखिरी 3 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। ऐसा पहले कभी नहीं किया। ये देखना मेरी जिम्मेदारी है कि हमने इन डेटा रेट्स के साथ जो भी इंटेंस कैलकुलेशंस की हैं, वो करेक्ट हों। और ये जरूरी है कि हमें लास्ट बिट ऑफ डेटा तक मिल जाए। ये कुछ कुछ लाइव टीवी देखने जैसा है। ये डेटा कलेक्ट भी कर रहा है और उसके साथ ही उसे भेज भी रहा है।
2: वहां से आए आखिरी संदेश को अर्थ तक आने में 84 मिनट्स लगे थे। तब तक कसीनी आखिरी सांसें ले रहा होगा।
4: हम इसे ग्रैंड फिनाले और एक शानदार एंडिंग के साथ खत्म करने वाले हैं। बहुत ही शानदार एंडिंग।
2: ये जबरदस्त डिस्ट्रक्शन है। रफ्तार से जाते यान और एटमॉस्फेयर की गैस के बीच फ्रिक्शन टेम्परेचर्स को न झेल सकने वाली ऊंचाई तक बढ़ा देता है, करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तक। पहले इसका मेटल पिघलता है और फिर ये उबलना शुरू हो जाता है। अर्थ के सबसे गर्म ज्वालामुखी से भी 2700 सेल्सियस ज्यादा गर्म हो जाता है। और आखिर में बची वो न्यूक्लियर केसिंग्स, जिनके एटमॉस्फेयर में बहुत नीचे जाने पर उनके अंदर का प्लूटोनियम गैस बनकर उड़ गया।
4: एक पर्सनल कनेक्शन हुआ और फिर जैसे कुछ खो गया। स्पेसक्राफ्ट को अब कभी वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। हम इंसान सैटर्न पर रहे 13 साल तक। हम उसे कनेक्टेड थे। हम कनेक्टेड थे पूरे प्लेनेट से।
14: बड़ा अजीब लगेगा जब याद आएगा कि कसीनी अब सैटर्न का चक्कर नहीं लगा रहा, बल्कि अब वो उसी का पार्ट है।
4: इस मिशन से जो भी जुड़ा रहा उसे अपना सर ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि इसने लिखा है एक नया इतिहास, और ये कमाल की बात है।
10: ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसके लिए मैं हमेशा प्राउड फील करूंगी। मैं कहूंगी, हे, मैं इसका हिस्सा थी।
14: हमने उन 13 सालों में ज्यादा से ज्यादा साइंस हासिल करने की कोशिश की। जब ये ऑर्बिट में था, इतनी साइंस की आने वाले 20 सालों तक टेक्स्ट बुक्स भरी जा सकती हैं। प्राउड फील होता है मुझे।
16: लोग डेटा को एनालाइज करते रहेंगे आने वाले 10, 20 या शायद 30 सालों तक।
10: कितनी ही चीजें एकदम सही हुई। अब कसीनी जैसा कोई और स्पेसक्राफ्ट नहीं होगा।
17: अगर आप प्लैनेट एक्सप्लोरर हैं, तो इससे ज्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं होगा।
4: ये जिंदगी का एक खूबसूरत अनुभव था, जिसके बदले में मुझे कुछ भी मंजूर नहीं होगा।
18: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
19: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
18: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
19: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
20: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
21: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है हाँ
4: भरोसे वाले से लेंगे
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-3242 पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: बादल जो

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 25।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7075763600 या 7075742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 आमज जैट पर।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में

0: जिन्हें का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3092 या 90765-6650।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी

0: Facility Hospital, Padri Bazar, Gorakhpur. Call 9170-856587.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM. सुनो दिल से.
2: All right.

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: दिल कहे रे

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू। दिल बोल।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है

0: तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
6: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM-Z पर।
8: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
9: चाहे होटल वेट का मेरा रोस्ट का, मैं मुझको करूं

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM-Z पर।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
10: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: दिल कहे रे।

0: लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
2: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम।

प्राणी यह सांसारिक जीवन में उलझ करके काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पड़ के असली धन के गंवा देता और अंतिम समय में पछतावता। कैसे बड़ा ही सुंदर कल्पना बा कि सब धन सियारा खाइले

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कैसन बानी रउआ सबे उम्मीद करता नहीं कि रउआ सबे लोग ठीक होके मार रउआ सुन रहल बानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM और हम बानी रउआ सबे के रेडियो दोस्त आरजे सोनी रउआ सबे के बीच हाजिर हो चुकल बानी सबसे पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के लेके 2:01 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में। और अगर रउआ भी आज के एक्सप्रेस में करे के चाहते नहीं सफर तो सफर करे खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप और कॉल रउआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकता नहीं व्हाट्सएप से जुड़े खातिर नंबर बाटे 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर अपना आवाज में खुद ही गाना के फरमाइश कर सकता नहीं ओकरा खातिर बाटे कॉल के माध्यम और कॉल करे खातिर नंबर बाटे 7277166696 पे कॉल करी और जुड़ जाइए आपन सोई भोजपुरी एक्सप्रेस से। तो चलिए बिना देरी के लिए आज के शो के आगाज कर जा और इन्जॉय कर जाओ एगो गाना जब तक रउआ सभी के मैसेज आवता तब तक इन्जॉय करी खूबसूरत सा गाना पवन सिंह के आवाज में रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रउआ सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के 2:05 हो चुकल बस टुडे घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के बात करी तो काफ़ी सारा मैसेज हमरा पास पहुँच चुकल बा। और अगर रउआ भी जुड़े के चाह तनी माध्यम बाटे व्हाट्सएप और कॉल रउआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकतनी। व्हाट्सएप से जुड़े खातिर नंबर बाटे 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर अपना व्हाट्सएप ना यूज करें नहीं तो कॉल के माध्यम बाटे। कॉल करे खातिर नंबर बाटे 7277165696 पे कॉल करी और जुड़ जाइए अपन कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए जब तक रुवा से भी कॉल करी और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के बात करें तक काफ़ी सारा मैसेज वाली कहते हैं नमस्कार मैम, हम मनीष यादव ग्राम डुमरा यदुवंशी टोला सिवान बिहार से बानी और गाने के फरमाइश के साथ जुड़ल बनी। बहुत बहुत स्वागत बटे शो में और पटना नीट के तैयारी करतनी फिलहाल पटना से जुड़ल बनी शो में। और लिखतनी गाना सुने के बाद हैंडसम हीरो खेसारी लाल यादव के आवाज़ में और ये गाना हम अपना प्यारा दोस्त लोग के मनीष यादव नीतीश यादव रौनक यादव अंकिता यादव अंजलि यादव नंदिनी यादव मिष्टी यादव मिल्की यादव और सभी जोन के सुनाए के चाहते हैं। तो बिल्कुल राहुल गाने के फरमाइश वह प्ले करें और सबके साथ में डेडिकेट बाटे। और आगे लिखतनी कि रुआ के मधुर आवाज़ सुन के मन बहुत खुश हो जाला। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी मैम। अनिस यादव सिवान बिहार से तब बिल्कुल राहुल गाने के फरमाइश वह प्ले करें। बहुत बहुत स्वागत बाटे। और यहाँ एक और मैसेज बाटे लिखतनी गुड आफ्टरनून नमस्कार प्रणाम जय माता दी शिव सागर दीवाना जी जुड़चिकल बन जम्मू कश्मीर से सरफरोज अली आकिल टोला से उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से प्रीति रैदास जी लकड़ी दरगाह सिवान से और यहाँ सुबोध साहू जी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ सभी के धनेश मिश्रा जी दिल्ली से मुस्तफ़ा सऊदी से एक और यहाँ मैसेज बाटे और लिखा था नहीं कि नमस्ते प्रणाम आरजे सोनी जी हम अनूप कुमार खरवार और हजियापुर गोपालगंज बिहार से बहुत बहुत स्वागत बटे अनूप जी। और रुआ वॉइस मैसेज के लिए बनी थे मैम वॉइस मैसेज करे के जरूरत नहीं थी गाने के फरमाइश बात ऐसे ही कर सका था नहीं और काफ़ी दिन बाद शो में आई नहीं बताई कैसन बानी और का हलचल बा घर परिवार के सभी। और यहाँ मैसेज बाटे और एक लिखा था नहीं कि नमस्कार जी हम जुड़गल बानी निर्मला कुमारी जादवपुर से तो निर्मला जी गाना का नाम लिख के भेज दी वॉइस मैसेज शामिल ना हुई बहुत बहुत स्वागत बा। और बिना देरी अगला फरमाइश हम प्ले करें और आज के पहला फरमाइश पहुँचल बाटे अनिश यादव जी के हैंडसम हीरो। एंजॉय करी गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ पर अनिश यादव जी के तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, लिखा था बहुत बहुत धन्यवाद सोनी मैडम जी गाना बजाए खातिर। और यहाँ एक और मैसेज बा, लिखा था हम जुड़ चुकल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी, बिल्कुल हाजिरी लग चुकल बा, बहुत

90.4 रेडियो रिमझिम सरल बानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सन गाने के फरमाइश करे वाला रनिया निश यादव जी और अगला फरमाइश हमरा पास पहुंचल बाटे शिव सागर दीवाना जी बानी जम्मू एंड कश्मीर से और गाना सुने के बाद मुहवा ओढ़नी से बांध के जनिया जान तो एंजॉय करिए अपन गाना के गाना प्ले कर दे बानी।

और ई गाना के पार हमने के चलब जा दोपहर समाचार के तरफ। तरुआ से वे कहीं ना जाए, सुनत नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और दोपहर समाचार के बाद वापिस आए और बाकी की फरमाइश दोपहर समाचार के बाद। फिलहाल इंजॉय करी श्री सागर दीवाना जी के फरमाइश के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: Football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के

0: कार्रवाई हो सकती है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: क्या हुआ? अरे, ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे, तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज जी आए जे बी हॉस्पिटल।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से रुवा सभी के बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो 90.4 FM में रुवा सभी के अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में 2:34 हो चुके भाई स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके 5 बजे तक हम रुवा सभी के साथ है बानी। रुवा सभी के अपन फरमाइश के साथ है बानी। तगर हुआ भी करे के चाहता नहीं आज के एक्सप्रेस में सफ़र और जुड़े के चाहता नहीं कार्यक्रम से तो नंबर बांटे 98527-88291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर अगर व्हाट्सएप ना यूज करें नहीं तो कॉल के माध्यम बांटे नंबर बांटे 72-77-16-65-96 पे कॉल करिए और जुड़ जाइए अपन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस से। और बताइए कि रुवा सभी के तरफ मौसम कैसन बा। फिलहाल हमरा इन्हें तो रात से ही बारिश होता है और अभी भी कंटिन्यू एकदम झमाझम वाला बारिश होत रहल बा। तो रुवा सभी बताइए कि रुवा सभी के तरफ कैसन मौसम बाटे और यहाँ आगे मैसेज बाटे सरफरोज अली जुड़ल बानी आकिल टोला से और गाने के फरमाइश बा पवन सिंह के आवाज़ पे आज धरती पे उतरल चांद। तो गाना इंजॉय करी प्ले कर दिले बनी राउर गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रुवा सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सन सर फरोज अली जी के फरमाइश रहे और यहाँ मैसेज पहुँच गल लिखा तनी बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना सुनावे खातिर और यहाँ मुंबई से जुड़ल बनी शमशेर जी बहुत बहुत स्वागत बटे और लिखा तनी की बारिश हो रहल बा तो शमशेर जी और गाने के फरमाइश जौन बात चेंज कर दी तो कोशिश रही कि हम गाना प्ले कर दी और गाने के फरमाइश जोन बा हमने की प्ले कर सकत और यहाँ गाने के फरमाइश बा पिया जी के मुस्की गणेश कुमार बानी पिपरा नारायण से तो चली रहा और टिकट भी कंफर्म होता टे और कॉल वाला लोग कहाँ बा भाई रुआ सबे भी कॉल करी और गणेश जी पिया जी के मुस्की से थोड़ा बाहर भी निकली फिलहाल राउर गाना बा तो गाना राउर प्ले कर दिल बानी इंजॉय करी और सुनत रही रेडियो 90.4 FM के।

और 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी। और जेकर भी बोलबम के गाना के फरमाइश बात अपन गाना के फरमाइश जोन बात चेंज कर दिलो, हम बोलबम के गाना भी नहीं की प्ले कर सकते।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बाने रहुआ सभी। अभी गाना चला ताटे गणेश कुमार जी बानी पिपरा नारायण से, यहाँ के तरफ से गाना के फरमाइश बा है। और मैसेज बा लिखा तनी सुपर सॉन्ग सुनी दी बिजोड़ लगाता तो इंजॉय करी। और आगे यहाँ सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके बानी, लिखा तनी की गोर चुके गोर लगाता नहीं सुनी मैडम जी हम आगे बानी हमरो हाजिर लगा दी बिल्कुल हाजिरी लग चुकल बा। बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं कि यह गाना बजाई मैडम जी तोहरा जैसन हैंडसम हीरो। तो हम लोग के बता दी कि गाना जोन बा सबसे पहले प्ले भैला और गाना के फरमाइश जोन बा चेंज कर दी, गाना के फरमाइश प्ले हो चुकल बा आज के शो में। और MD निसार जी बानी, MD रिस्वान जी बानी, अभिनंदन टेलर के सभी लोग बाटे। और बजाजी रोड लालगंज से MD नौशाद जी मैसेज के लिए बनी, MD सदाब जी बहुत बहुत स्वागत बटे रउआ सभी जोन के। और गाने के फरमाइश चेंज कर दी, कहे कि गाना प्ले हो गल बा। और रउआ भी हर सप्ताह एक ही गाने के फरमाइश के नहीं, तो हम कभी कभी गाने के फरमाइश चेंज करल करी लो। और यहाँ अहमद अली जी जुड़चिकल बानी सारे वार्ड नंबर 1 से, बहुत बहुत स्वागत बा। लिखा था नहीं कि 1 से कॉल नहीं खेजात, फोन तो यहाँ ऑन बटे और कॉल भी आ रहा बा। और आगे यहाँ शिल्पी राज की आवाज़ में गाना के फरमाइश बा प्ले करें। और एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था कि सोनी मैम हमरो मैसेज बा देख ली ना देखें का, बिल्कुल देख लेनी। रंजन कुमार जी बानी पंजाब से जुड़ल बानी, बहुत बहुत स्वागत बा, फरमाइश बा बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा, बहुत बहुत स्वागत करते नहीं। और बिना देरी अगला फरमाइश जोन हम प्ले करें। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा कि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा बा, तो चलिए इंजॉय करें रिमझिम रिमझिम बारिश के। और वह अगर हजियापुर से जुड़ल बनी तो इतने दूर में रहुआ तरफ रिमझिम रिमझिम कैसे होता, हमरा तरफ तो पूरा झमाझम वाला बारिश होता, ज़रूर बताएं। और मैसेज करे वाला बानी अनूप खरवार जी, फिलहाल यह अगला मैसेज और अगला फरमाइश हम प्ले करें। हमरा पास पहुँचल बा मुस्तफ़ा जी के सऊदी से, तो इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर और गाना प्ले कर दिले बानी।

भाई हमारे सबके मैसेज पे ध्यान बटे और ऐसा बात नहीं के कि हमारे मैसेज पे ध्यान नहीं के। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से लिखा तनी के सोनी जी आवाज सुन के आज जान में जान आ गई बा। चलिए तो और खुशी के बाद बार लिखा तनी के हमारे मैसेजों पर भी ध्यान दी। फिलहाल राउंड मैसेज पे भी ध्यान बा, लेकिन अभी इंजॉय करी मुस्तफा जी के फरमाइश। काफी दिन बाद ही गाना सुने के मिलल बा, काफी खूबसूरत गाना। इंजॉय करी रेडियो रिमसिम 90.4 FM पर। लेकिन मुस्तफा जी हमारा नाम जाने के बाटे ओढ़निया।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा, लिखत है कि लाजवाब सॉन्ग बा आज प्रोग्राम में चार चांद लग गए बा। और महेश गुप्ता जी जुड़ल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बा लिखत है कि मैम सुहाना फ्रॉम सासा मुसा से, बहुत बहुत स्वागत बटे रउआ के भी। एक और यहाँ मैसेज बा लिखत है कि आपके आवाज़ सुन के दिल गदगद हो गए बटे। तो एंजॉय करी रउआ भी गाना के। और मैसेज करे वाला बनी नटकटिया बाजार से, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: वेलकम बैक, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर हुआ सभी ज्ञापन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में 2:50 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के बात करी तो काफी सारा मैसेज पहुंच चुकल बा हमरा पास। सनी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी शो में। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुंचल बा, लिखा तनी हमरो गाना प्ले कर दी बिल्कुल। और यहाँ अहमद अली जी बानी, लिखा तनी कि हमरो भी एगो गाने के फरमाइश बटे मैम, प्यार ऐसन बा हमने के दुनिया में और गाना सुनवाए की चाहत अनि अख्तरी के। और इन जिम सुनने वाला सभी के बिल्कुल राहुल फरमाइश बा, प्ले करें थोड़ा इंतजार करिए। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुंचल बाटे और नाम मेंशन नहीं किया था, नाम पता जरूर मेंशन करी। और यहाँ एक और मैसेज बा, लिखा था नमस्ते मैडम जी, दिलीप शर्मा जुड़ चुकल बानी पथरा टोला से, बहुत बहुत स्वागत बटे दिलीप जी, फरमाइश बा प्ले करे के पूरा कोशिश बटे। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचल बा हमरा पास, लिखा था नहीं कि हमरो दिल गदगद हो गल बा राउर आवाज सुन के। नमस्कार प्रणाम ओढ़निया वाली मैडम जी, और मैसेज के साथ वानी प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और आगे यहाँ मैसेज और भी सारा बा, लिखा था नहीं हमार गनवा ना प्ले हुई का, बिल्कुल हुई। संजय यादव जी जुड़ चुकल बानी दुबई से, बहुत बहुत स्वागत बा, लिखा था नहीं अच्छा गाना बा मैम। हाँ जी बिल्कुल अच्छा गाना बा, और ऐसे ऐसे ही अच्छा अच्छा गाना के रुआ सभी फरमाइश करी। और यहाँ विपुल सिंह जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी शो में, सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के। और यहाँ बिना देरी अगला फरमाइश प्ले करें। और अगला फरमाइश के पहुँचल बैठे हमारा पास दिल्ली से, और फरमाइश करे वाला बानी उमा शंकर मिश्रा जी। इंजॉय करी गाना के मनोज तिवारी के आवाज़ में, बगल वाली जान मारे ली।

और यहाँ अनूप खरवाल जी बानी लिखा तने कि आज रविवार है मैडम जी, लिट्टी मीट खाए के मौसम बा, आई हजियापुर मोड़ पे, तब बिल्कुल 5 बजे दी सो खत्म करके बिल्कुल हजियापुर मोड़ पे ही हम कहे कि आज हजियापुर मोड़ होके ही घर जाए के बाद, तो इंतजार करी 5 बजे के बाद जरूर मिला। फिलहाल इंजॉय करी गाना के उमा शंकर मिश्रा जी के।

101.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सुन उमा शंकर मिश्रा जी के फरमाइश बा और मैसेज पहुंच गल बा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना बजाय खातिर। तो उमा शंकर मिश्रा जी बताई कि राउर बगल वाली के बा कोई नया पड़ोसन शिफ्ट भइल बाड़ी का, और ये बात राउर श्रीमती जी के पता बा कि ना जरूर बताएं। और बिना देरी अगला फरमाइश हम प्ले करें। हमरा पास अगला फरमाइश जोन बाटे काफ़ी ट्रेंडिंग में गाना चला था अभी, और हमरा ख्याल से हर रोज़ एक बार फरमाइश पहुंच भी जाता है। सिर्फ राज की आवाज़ में बर्बादी हुई बाकी शादी हुई एंजॉय करी रुआ सबे। और गाने के फरमाइश करे वाला बानी नरकटिया बाजार से, और अपन नाम जोन बा वो डिलीट कर दिले बानी, और फैशन टेलर योगेश कुमार जी जुड़ल बानी। एंजॉय करी अपन गाना के प्ले कर दिले बानी राहुल गाने के फरमाइश के।

0: 104 रेडियो रंजन सुनाल बानी रवा सबे और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी हमने के गाना सुनतने असन गाने के फरमाइश करे वाला रनिया नाम बटे यहाँ के योगेश कुमार जी जो कि जुड़ल बानी नरकटिया बाजार फैशन टेलर से और आगे यहाँ मैसेज बटे लिखा तनी कि सरकार बा में जी हाँ बिल्कुल और संजय यादव जी बानी दुबई से एक और यहाँ मैसेज बा लिखा तनी कि उन्हों के मालूम बट अच्छा उन्हों के का मालूम बा पड़ोसन के बारे में या फिर बगल वाली जान मारे लिए बारे में जरूर बताएं उमा शंकर जी और आगे यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि हमरो गाना बाटे प्ले कर दिया और करिश्मा जी कॉल करते हैं तो कॉल कहे नहीं कि उठाओ बिल्कुल हम कॉल समय पे आई तबे तो उठाएं और अभी कॉल पहुँचल बा तो चलिए बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाना की का फरमाइश बा हेलो जी बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रंजी में जी नमस्ते नाम बता दिया अपन
1: मुन्नी यादव फ्रॉम सादुलपुर गोपालगंज
0: जी कैसन बानी मुन्नी जी
1: बानी,
0: हम भी बिल्कुल बढ़िया मस्त बिंदास
1: के गाना सुने बा
0: जी बिल्कुल कौन गाना सुनवा दी बता दी
1: तुमरा के कौन नया अच्छा परफॉर्म सुना दे
0: शिल्पी राज के कौन अच्छा सा नया गाना
1: टुनटुन
0: यादव के टुनटुन यादव के नया गाना कौन बा नाम बताई तो ज्यादा अच्छा रही जमीन रहतू तो हथिया लेती टुनटुन यादव के यहाँ तो चलिए और सब बताई घर परिवार में सभी लोग कैसन बा और काफी दिन बाद सो मैं कॉल करनी अच्छा और फोने ना लगेला तो चलिए गाना प्ले कर दे बनी कोनो बात ना अभी टाइम पे बस लागे के चाहिए तो कॉल जरूर उठाए और जब गाना प्ले होके के रही तो उतर लगिए जाए चल इंजॉय करी गाना प्ले कर दे बनी जी बहुत बहुत धन्यवाद बस हमें कॉल करनी

और यहाँ गणेश जी मैसेज करतनी कि करिश्मा जी फोन करतनी उठा ली, बिल्कुल फोन आई तो हम उठाए, बस फोन उठाए के टाइम पे कॉल आए के चाहिए, फिलहाल तो एक भी कॉल नहीं आवत और करत अरी तो हम जरूर

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रविवार सुबह के अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और देखते देखते यहाँ 1 घंटा निकल चुकल, 3:06 हो चुकल बैशूर्य घड़ी में। और रुआ भी अगर कार्यक्रम में जुड़े के चाहता नहीं, कार्यक्रम में जुड़े खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप और कॉल, और रुआ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े के चाहता नहीं, नंबर बाटे 98527-88291 पे व्हाट्सएप मैसेज करें और जुड़ जाइए अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस से। व्हाट्सएप ना यूज करें नहीं तो कॉल के माध्यम बाटे, नंबर बाटे 7277-16-6596 पे कॉल करी। और यहाँ मैसेज के बात करी तो काफ़ी सारा मैसेज बा, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखा था नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धर्मेंद्र सहानी जुट चुकल बानी समस्तीपुर से, संजय यादव जी फरमाइश के साथ बानी बहुत बहुत स्वागत बाटे, दिलीप राम जी बानी दिल्ली चल गए बानी, अच्छा चली दिल्ली से जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे, और प्रीति रदास जी बिल्कुल और गाने के फरमाइश बा प्ले करें, और यहाँ आरजे अमन जी जुट चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे, शमशेर जी बानी मुंबई से बिल्कुल और गाने के फरमाइश बा वो प्ले करें। एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं कि हमरो गाना प्ले कर दी बिल्कुल, और यहाँ रियाज कुरैसी जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे हाजीपुर से, और हजियापुर गोपालगंज से बहुत बहुत स्वागत बटे रोवा के भी शो में आ गए। यहाँ और भी कई सारा मैसेज बा लिखा था नहीं कि सोनी मैम हमरो गाना बा बिल्कुल और गाना बा प्ले करें, और यहाँ बिना देरी हम अगला गाने के फरमाइश जोन बा प्ले करें, हमरा पास पहुँचल बा गाने के फरमाइश हिंदी के सितारा, और फरमाइश करे वाला बानी अनूप खरवार जी हजियापुर से, तो इंजॉय करिए अपन गाना के, और गाने के फरमाइश जोन बा प्ले कर दे।

93.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी हमनी के गाना सुनतने सन गाना के फरमाइश करे वाला बानी अनूप खरवार जी लिखतनी बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे गाना प्ले करे खातिर और बिना देरी हम अगला गाना के फरमाइश जोन प्ले करे में जी हमारा पास अगला गाना के फरमाइश पहुँचल बटे जम्मू कश्मीर से जुड़ल बानी साकिब जी और लिखतनी कोई भी सिंगर के आवाज़ में अपना पसंद के गाना प्ले कर दी तो इन्जॉय करी पवन सिंह की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

कॉल के माध्यम से तो चलिए बात कर जाओ के बानी कहाँ से सुनल जाओ और यहाँ कॉल कर चुकल बा तो चलिए एंजॉय करी गाना के प्रीति रदास जी के फरमाइश के।

और बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, ये गाना के फरमाइश करे वाला काफी खूबसूरत गाना। और यहाँ मैसेज बार लिखा तनी कि पूरा हंगामा हो गई लाज तो हंगामा रोगा खुदे कैले बानी उमा शंकर जी, और इमें केहू और के गलती ना बा। और यहाँ प्रीति जी के तरफ से मैसेज पहुँच गया लिखा तनी।

जी हाँ जी, सब पे ध्यान बटे और रोगों पे ध्यान बटे। फिलहाल एंजॉय करी प्रीति जी के फरमाइश की, और एक बाद अगला फरमाइश जोन हमरा पास बटे हम प्ले करें। निर्मला जी जुड़ल बानी जादवपुर से, और गाना सुनने के बाद शिल्पी राज की आवाज में सेंट गम कौआ। तो चलिए राव और गाना भी प्ले कर दिल बानी, एंजॉय करी रेडियो 90.4 FM पर।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा से विज्ञापन कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ी तलिखा तनी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी सॉन्ग प्ले करे खातिर प्रीति रदास जी बानी। और यहाँ एक और मैसेज बा लिखा तनी की प्रीति जी के फरमाइश लाजवाब लागल और सेंट गंगा हुआ तक गजबे बा। और मैसेज के साथ बानी प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जी, हाँ बिल्कुल, और सेंट ऐसे भी गमकौआ ही होला। और यहाँ एक मैसेज बा लिखा तनी कि हेलो हाय का हाल बटे और हम भी जुड़ गल बानी शो से और भूमि जुड़ल बानी मनबोध परसौनी से बहुत बहुत स्वागत बाटे रुवा के बिलिका तनी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा बा मैडम जी तो इंजॉय करी प्रोग्राम के और कैसन बानी जरूर बताएं। और आगे यहाँ मैसेज बालिका तनी कि मैम गोपालगंज के मौसम के का हाल बा, हमरा तरफ तो धूप बटे। तो गोपालगंज के मौसम के बात करी तो रात से ही यहाँ काफ़ी बारिश होता टे। और मैसेज करे वाला बानी सरफरोज अली जी आकिल टोला से बहुत बहुत स्वागत बटे एक बार फिर से। और आगे यहाँ मैसेज बालिका तनी कि हमरो गाना बजा दीजिए, हाँ बिल्कुल, और गाना भी प्ले करें। और यहाँ कॉल पहुँचल बा तो चलिए पहले बात कर लिया जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो
6: हेलो
5: जी बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में।
6: आप रामाजी प्रसाद खान गार्डन पार्क से
5: जी का हाल चाल बा।
6: चल काम आप सब मेरे से रात बहुत बरखा बहुत बा
5: जी जी बरखा तो पड़ता है नहीं हो
6: सब अंदर से सब जाता।
5: बारिश होता लेकिन गर्मी कम नहीं क्या भाई।
6: गाना सुना दे
5: जी। बिल्कुल बता दी कौन गाना सुने के बाद।
6: कान में झुमका चाल में कमर पर चोटी लटके
5: चलिए गाना प्ले कर देनी। राहुल
6: नमस्ते
5: नमस्ते, ये तो हिंदी गाना बा ना। है। और रामा जी की तरफ से मैसेज पहुंचा रहे कान में झुमका चाल में ठुमका, लेकिन ये गाना हिंदी बाटे और भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम बटे में हम हिंदी गाना नहीं प्ले कर सकत, तो चलिए बिना देरी अगला फरमाइश हम प्ले करें। और अगला फरमाइश जो हमरा पास पहुंचल बा गाने के फरमाइश करे वाला बानी अर्जुन जी बरौली से, और गाना सुने के बाटे यहाँ के मुस्की मार के जब बोले लुए बोलिए बोलिया, तो इन्जॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिम छिम 90.4 FM पर। और रामा जी जब भी कॉल करी ध्यान दी, पहले सोच ली कि आज भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम है तो भोजपुरी गाना के ही फरमाइश करी।

और यहाँ मैसेज पहुँच गया, लिखा था कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत देर इंतजार करे के पड़ल, तो इंतजार तक करे के पड़ी, क्या है कि एक समय में काफी सारा गाना के फरमाइश रहला और सबके गाना के फरमाइश एक साथ तनिकी पूरा कर सकत ना, तो थोड़ा तो इंतजार करे के पड़ी फिलहाल।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी रउवा सभी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत ने सन अर्जुन जी के फरमाइश रहे और यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करे अगला गाना के फरमाइश बाटे पवन सिंह के आवाज में और फरमाइश करे वाला बानी अहमद अली जी ते एंजॉय करी और लिखा तनी की सुपर गाओ तनी मैम ते एंजॉय करी अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 104.4 रेडियो रंजन सुन रहल बानी रउवा सभे और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी हमनी के गाना सुना तनी सन गाना के फरमाइश करे वाला बानी अहमद अली जी तो गाना सुन लेले बानी और चलिए अभी कॉल पहुँचल बा तब बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाना के फरमाइश का बा हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: जी नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन में
1: जी मैम थैंक यू मैं इरफान शाह बोल रहा हूँ रेडियो ज्ञानस्ती से
0: जी का हाल चाल बा
1: ठीक बा सब बढ़िया है मैम सब अच्छा बा
0: जी जी तो कैसा लागल

0: के कार्यक्रम सुन के भोजपुरी एक्सप्रेस के?
1: बड़ा अच्छा लगा, प्रोग्राम बड़ा लाजवाब है और जो पसंदी है आप करने का बड़ा अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए हमके भी रोवा से बात करके बहुत ही अच्छा लगल। तो और सब बताई, सब बढ़िया बानो?
1: जी बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, सब अच्छा है यहाँ पे, ठीक ठाक है
0: जी। तो रोवा जी ने मौसम के हाल चाल कैसन में बताई?
1: ठीक है, सब
0: बढ़िया है। चलिए बढ़िया बात, बात अच्छा बा। हमने कहने तो रात से ही बारिश होता है और अभी भी बारिश होता।
1: हाँ इधर बारिश अभी तो सुबह सुबह हो रही थी, इधर धूप निकल गया है तो थोड़ा उमस हो गया है मतलब।
0: अच्छा अच्छा
1: जी जी,
0: चलिए कौन
1: ठीक है, बढ़िया
0: जी जी, सब बढ़िया बाटे। सो में बानी कर मतलब एकदम मस्त इंदाज जकास बानी। अगर बढ़िया ना रहे तो फिर छुट्टी में रहे नहीं।
1: मुझे तो बचपन से ही रेडियो का शौक था और मैं विद भारती तक मतलब इनवाइट मुझे किया गया, मैं विद भारती बॉम्बे तक गया, वो राइडी को दुबाल में चर्च गेट मतलब आकाशवाणी बॉम्बे के काफी, उसके बाद में आकाशवाणी इंदौर भी गए, आकाशवाणी गोरखपुर भी,
0: कभी गोपालगंज भी आए और रेडियो रिमसी में घूम के जाए।
1: बिल्कुल, हमारे वो एक भैया है वही बिहार में शिक्षक हुए हैं बीटीएस वाले में।
0: अच्छा बिहार में वही पे,
1: बिहार में वही मेन शहर में है, अभी तो स्कूल नहीं पूछे कहाँ पे है।
0: तो फिलहाल रेडियो रिमसी में आए के बाद तो बिहार में गोपालगंज आए।
1: चलिए तो फिर आएंगे, बिल्कुल रहेंगे, फिर घूमेंगे।
0: बिल्कुल आई, स्वागत बाटे। और गाना कौन सुने के वो बताएं?
1: गाना तो अपनी पसंद का कुल बजा दीजिए, जो आपकी पसंद हो वो मेरी भी पसंद है।
0: तो ये बताएं किकरा आवाज में सुने के बाटे?
1: किसी की भी आवाज में सुना दीजिए, मतलब हम लोग आ रहे हैं मैम कि आप ही रहे मतलब।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बानी, एंजॉय करी और बताएं कि गाना कैसा लागल।
1: ठीक मैम, ठीक, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल के नी।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा अलबानी रहुआ सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी कॉल पे गाने के फरमाइश कर पहुंचा रहे इरफान जी जुड़ा रहनी है रेडियो ज्ञान स्थली से और आगे यहाँ मैसेज बा लिखा था कि अच्छा गाना बा मैम संजय यादव जी बानी दुबई से और आगे यहाँ मैसेज बाटे लिखा था कि भोजपुरी एक्सप्रेस चला था तो भोजपुरी में बात करी ना हिंदी में काहे करते हैं तो हम तो भोजपुरी में ही करते नहीं और जिक्रा हिंदी में ना बात करे आई और तो फिर वो तो भोजपुरी में ही बात करी नो और फिलहाल हम तो भोजपुरी में ही बात करें नहीं और हमके भोजपुरी काफ़ी बढ़िया लगे भोजपुरी से मीठ तक कोनो भाषा ना लगे और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं सोनी बहन जी हमरो पर ध्यान दी बिल्कुल ध्यान बटे और यहाँ चाय बिस्कुट पहुँच गल बा तो भाई जी अभी तो बारिश के टाइम बाद चाय बिस्किट ना चाय के साथ पकौड़ा भेजी और आगे यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं सोनी जी हमरो फरमाइश बा जी हाँ बिल्कुल फरमाइश बा रंजन जी वानी पंजाब से तो इन्जॉय करिए अपन गाने के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर गाना राउर प्ले कर दिले बानी और गाने के फरमाइश बा खेसारी लाल की आवाज़ में और शिल्पी राज की आवाज़ में तो इंजॉय करी गाने के

20.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनाता है सर रंजन कुमार जी के फरमाइश पर पंजाब से और यहाँ अगला फरमाइश जन पहुंचल बा हमरा पास चाल नवाबी काफी खूबसूरत गाना के साइड लाल के आवाज में एंजॉय करिए और गाने के फरमाइश करे वाला बानी संजय यादव जी दुबई से तो प्ले कर दे बन रहा और फरमाइश के भी सबके गाना के फरमाइश बा और हमारे ध्यान में बाटे सबके गाने के फरमाइश थोड़ा सबर रखी लो एक एक करके हम सबके गाने के फरमाइश

और यहाँ संजय जी के तरफ से मैसेज पहुँच गए लिखा था धन्यवाद गाना बजाए खातिर। और यहाँ मैसेज बैठे लिखा था बारिश के मौसम में लिट्टी चोखा खाई ना सुनी बहन जी। अरे लिट्टी चोखा तो खाई ले जाए, बाकी अभी अगर चाय पकौड़ी मिल जाए तो और प्रोग्राम

0: ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे रुवा सेवे के अपन कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस में 3:49 हो चुका है स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ देखिए क्या बात बटे, चाय पकौड़ा भी पहुंच गए रेडियो फैन इरफान जी की तरफ से। और अब तक गर्दा उड़ जाए एकदम से और लिखा था नहीं कि अब का चाहे, दिल से बोली सोनी बहन जी, मुँह में पानी आई तो माफ करब। और ना बिल्कुल पानी तो ना आई, पर चली बढ़िया बाटे। और बोलते बोलते रुआ भेज देनी। और यहाँ मनोरमा जी बानी कहते नहीं कि तो ऑनलाइन आवता कैसे खाई जाए। और आगे यहाँ धनेश मिश्रा जी बानी लिखा था नहीं कि सोनी मैम चाय पकौड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी क्या? ना ना इतना कष्ट ना करी। और गाना के फरमाइश पर प्ले करे के पूरा कोशिश भाई, इतने कहनी बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और एक और यहाँ मैसेज भाई लिखा था नहीं, मैडम जी 4 बजे चाय चाय पिए आ जाए, अगर आवे वाला रहती तो फिर चाय के नाम पे हम मना ना करें नहीं। और उमाशंकर मिश्रा जी बानी दिल्ली से एक और यहाँ मैसेज भाई लिखा था नहीं कि सोनी जी बिहार में कब चालू हुई और कौन सी बिहार में चालू हुई ज़रूर बताएं। और मैसेज करे वाला बानी अनूप खरवार जी, तो ये कौन बात पे बैठे कि बिहार में अच्छा नहीं के चालू हुए ठीक बटे, और चालू किले का जरूरत बटे, बिना चालू पहले तो इतना चलत अटे। और एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं कि मैडम जी हमरो गाना बा बजा दी। बिल्कुल गाना के फरमाइश बा हरकेश सिंह जी जुड़ल बनी गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत बटे, थोड़ा इंतजार करी। और आगे यहाँ और भी कई सारा मैसेज बा, अजय जी जुड़ चुकल बनी अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं रुआ के भी फरमाइश बा प्ले करे के कोशिश बा। एक और यहाँ मैसेज बा और मुन्ना खान जुड़ चुकल बनी फरमाइश के साथ है, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और यहाँ मैसेज बैठे धर्मेंद्र शाहानी जी बानी समस्तीपुर से, जी हाँ बिल्कुल राउर भी फरमाइश बा। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचल बा तो चली बात कर जाओ, देखल जाओ की वानी कहाँ से और गाने के फरमाइश का बा। हेलो हेलो
1: हेलो मैडम जी,
0: जी बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रूम सिम में।
1: जी मैडम बोल रहे बाकी जम्मू कश्मीर से, मैं ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ।
0: भोजपुरी में बात कर ली जब बिहार के रहे वाला वानी था।
1: भोजपुरी हमरा के नकी आवत ना।
0: अच्छा तो जितने आवत उतने में बात करी ना।
1: अच्छा बोली बोली
0: जी। तो गाना कौन सुना दी बताई?
1: गाना सुनावे के बाकी तोरा पत्रा में के सॉरी गवे के लिखल
0: या तो हंस ली पहले और फिर गाना के नाम बताई, या तो गाना के नाम बता के फिर हंसी?
1: गाना का नाम बा कि तोरा पतरा मा छोरी बतरा गोवे की लिखल हो।
0: और ये गाना बढ़िया बा।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल, कह कि किकरा आवाज में बा?
1: ये हमारा कभी नहीं पता, हम भी YouTube पे देखने वाली।
0: और माफ करी हमें ये गाना नहीं की चला सका, ती गाना सही ना बा।
1: बाग बाग गाना बा में
0: गाना तो बिल्कुल बा, पर गाना रेडियो पे चलाए वाला ना बा। तो चली अगला गाने के फरमाइश प्ले करते नहीं। और अगला गाना के फरमाइश जोन हमारा पास पहुंचल बाटे दिलीप शर्मा जी जुड़ल बनी आबू धाबी से, तो चली रहा टिकट कन्फर्म हो गल बा। एंजॉय करी अपन गाना के, बहे के पुरवा रामा बह गए पछुआ।

एक्सप्रेस के और यहाँ पवन साहब जी जुड़ चुकल बानी खगड़िया बिहार से, बहुत बहुत स्वागत बटे रोआ के भी। और यहाँ मैसेज पहुँच गया बा दिलीप शर्मा जी के तरफ से, लिखा था कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, मजा आ गए। तो चलिए बढ़िया बा। और यहाँ एक और मैसेज बटे लिखा था कि छोटा सा शायरी बटे, और शायरी के साथ है नाम पता भी मेंशन कर दिया अपन, तो बहुत ही अच्छा हुई। और अर्जुन जीवानी बरौली से बहुत बहुत धन्यवाद बटे, और शायरी बात बिल्कुल शामिल करे के पूरा कोशिश। फिलहाल इंजॉय।

और यही के साथ है बढ़े हम अगला फरमाइश के तरफ। और यहाँ मैसेज में लिखा था कि रिमझिम बरसे बदरिया, महके धरती के शान, सावन के हर बूंद में बरसल बसल बा खुशियन के पहचान, जेकरा दिल में प्रेम बसल होके ओकरा खातिर हर बरखा बन जाला भगवान के वरदान। और ये मैसेज के साथ वाणी अर्जुन जी बरौली से। और आगे यह मैसेज बाटे लिखा था कि देवी जी के गाना बजावे वाला भाई के दिल से धन्यवाद बा उमा शंकर मिश्रा जी वानी दिल्ली से। और यहाँ एक और मैसेज वाला लिखा था कि समंदर सा दिल अब दरिया हो जाई, अरे धूप में ना निकली निकलल करी भाई लो ना तो मुँह साफा करिया हो जाई। और मैसेज के साथ वानी इरफान जी जी हाँ बिल्कुल। और आगे यहाँ अगला फरमाइश बाटे हम प्ले करें और प्ले कर दिले वानी। और फरमाइश करे वाला वानी नाम बाटे यहाँ के धर्मेंद्र सहनी जी। और इन्जॉय करिए अपन गाना के तोहरा के देख के दिलवा मैडम जी साथ सहेलिया से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और गाना के फरमाइश प्ले हो गई बा

और मुन्ना खान जी जुड़ल बानी और गाने के फरमाइश में बर्बादी हुई शादी हुई। तो मुन्ना जी हम बता दी कि आज के कार्यक्रम में ये गाना प्ले हो चुकल बा, तो गाने के फरमाइश चेंज कर दी रहुआ अपन। और आगे यहाँ और भी कई सारा मैसेज बा शामिल करे, और अगला फरमाइश जोन हम प्ले करे हमारा पास पहुँचल बैठे फरमाइश करे वाला बानी धनेश मिश्रा जी दिल्ली से। तो चलिए रहा टिकट भी कन्फर्म हो गए, एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी रवा सभी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस को और अभी का बात बा यहाँ काफी सारा मैसेज और फरमाइश पहुंचल बटे और अभी भी यहाँ लिखा तनी कि मैडम सी अभी ओहो मीडिया ब्रेक चला था 3 आवर के बाद जब ले काम करें और यहाँ मैसेज बटे लिखा तनी कि रिमझिम बरसेला सावन भींग जाई अंगनवा आज हो सजनवा तोहरा बिन सुन लागे अंगनवा और गाने के फरमाइश बाटे यहाँ बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा और मैसेज के साथ वानी अर्जुन जी तो माफ़ करें आज के शो में हम शायरी नहीं की शामिल कर सकता है कि काफ़ी सारा फरमाइश पहुँचल हमारा पास और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल बा लिखा तनी कि का हाल बा और निशा भारती जुड़ चुकल बानी उज्जवलिया से बहुत बहुत स्वागत बाटे और बिना देरी अगला फरमाइश हम प्ले करें और अगला फरमाइश जो हमारा पास पहुँचल बा मुन्ना खान जी के एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे और सुनत रही रेडियो रिमझिम के

और यहाँ मैसेज में लिखा था नहीं हमारे यरवा के भी हाजिर लगा दी मैडम जी परमेश्वर बनवाल के पीके मोबाइल ओहो बिल्कुल हाजिरी लग चुकल बा बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और यहाँ आसिफ खान जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे रहुआ के भी इंजॉय करी गाना के। और एक और यहाँ मैसेज बा अंकित कुमार जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे शो में।

आयशा जी के तरफ से मैसेज भी लिखा था नहीं कि अच्छा जी लाजवाब भोजपुरी सॉन्ग इंजॉय करी। और एक और यहाँ मैसेज भी लिखा था निशा भाती जी के प्यार भरा नमस्कार बोल दी रेडियो फैन इरफान जी के तरफ से बिल्कुल बोल दे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करें खरीदारी।
7: आज यहाँ ST ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब ST ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 8570-32042 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
13: और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ सभी के रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, रुआ सभी के अपन पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस में। और 4:08 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, 5 बजे तक हम रुआ सभी के साथ बानी। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के बात करी तो मैसेज पहुँचल वाली कथा निकी एगो हमारे लड़का के भी हाजिर लगा दी, दीपांशु कुमार के। जी हाँ बिल्कुल, और एक एक करके सबके नाम बता दी और हम सबके हाजिर लगा दें, और एक ही बार अगर नाम लिख दी तो और भी अच्छा हो जाए। और मैसेज करे वाला बानी अनूप खरवाल जी, और आगे यहाँ और भी कई सारा मैसेज वाला लिखा था निकी ऐप पे आवाज़ अनबंद हो गई बा। और मैसेज के साथ बानी दिलीप राम जी दिल्ली से, तो भाई जे भी ऐप से रेडियो सुना था अभी एक बार मैसेज करके बोलो हमके कि हमरा पास ऐप सही चला था कि ना, जरूर बताएं, रुवा से भी क्लियर करी। और आगे यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि हमरा तरफ से भी बोल दी इरफान जी के सलाम बोल दी, बिल्कुल बोल दिले बानी। और मैम पकौड़ा खाई मार्केट में अकेले आई नहीं है ना जी, अभी तो पकौड़ा खाए मार्केट में अकेले नहीं की आई, अभी तो यही जे बानी 2 बजे से, और अभी कहीं नहीं की गई। और मैसेज करे वाला बानी निशा भारती जी उजवलिया से, और यहाँ मैसेज बैठे लिखा था नहीं कि बाजल है लेकिन अंत में थोड़ा सा सुन पाई नहीं है। तो वो लोग जब गाने के फरमाइश के लिए बनी तो फिर इन्होंने कहा जाता नहीं, इंतजार करी राहुल गाने के फरमाइश जरूर आई। और यहाँ मनीष प्रसाद जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बाटे। मिस्टर कुमार जी जुड़ चुकल बानी मोतिहारी जिला से, लिखा था नहीं कि मज़ा आ गया गाना सुन के, और हम लोग हाजिर लगा दी, बिल्कुल हाजिर लग चुकल बा, बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में। यहाँ पवन सिंह की आवाज़ में गाने के फरमाइश पहुँचल बा, और अखिया में नशा बा, गाने के फरमाइश के साथ जुड़ल बानी गोपालपुर से अंकित राय जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में और फरमाइश बा प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे। और यहाँ इरशाद जी जुड़ चुकल बानी, लिखते भोजपुरिया प्रणाम बा सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे रुआ के भी, सुनत रही रेडियो रंजिम का। और चलिए यहाँ अगला फरमाइश प्ले कर जा, और अगला फरमाइश जो हमारा पास पहुँचल बाटे दिलीप राम जी बानी दिल्ली से, इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रंजिम 90.4 FM पर।
14: जहर होला केहू कहेला मोहब्बत कहर होला, अरे केहू कहेला मोहब्बत जहर होला।
13: और यहाँ मैसेज पहुँच चुकल बा, लिखा तनी कि ऐप पर बिल्कुल आवाज सही बाटे, तो दिलीप जी एक बार ऐप के बंद करके फिर से चालू करी, शायद सही हो जा। और नेटवर्क इशू हुई, ऐसे भी आवाज इधर उधर कटत है, तो एक बार काट के चालू करी।

और यहाँ दिलीप जी की तरफ से मैसेज भी पहुँच गया, लिखा था निकी बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाय खातिर। तो चली बिना देरी अगला फरमाइश प्ले करें, और अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बा रेडियो फैन इरफान जी की तरफ से, और गाना डेडिकेट करते यहाँ के नाम लिख ले बानी निशा भारती, रुखसाना खातून, आयशा खातून और शगुप्ता फिरदौस, शिल्पी सुधा भारती, हाजरा खातून और अनिल भाई के थोड़ा बहुत आपके भी सोनी जी। बिल्कुल गाना की फरमाइश पर प्ले कर दिल बनी, एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रूम से 90.4 FM पर।

और यहाँ इरफान जी के तरफ से मैसेज बा लिखा था नहीं कि निशा भारती जी रवा के इरफान जी बहुत याद करे नहीं। और यहाँ निशा भारती जी के तरफ से भी मैसेज बा लिखा था नहीं कि सॉन्ग डेडिकेट करे खातिर दिल से थैंक यू सो मच और भोजपुरी अंदाज में लाजवाब गाना।

और यहाँ पूर्वी चंपारण से मैसेज पहुँच चुकल बार संतोष राम जी जुड़ल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे। निरहुआ रिक्शा वाला से गाना सुने के बाद तो बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। फिलहाल सुनत रही रेडियो।

0: सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुना तनी सन रेडियो फैन इरफान जी के फरमाइश और यहाँ मैसेज भी लिखा था नहीं कि सोनी जी भोजपुरिया एक्सप्रेस में तीन गो मित्र लोग के नाम ले ली, राजू कुमार जी, सुरेश गुप्ता जी और हरदम बैठा जी। बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ सभी के और मैसेज के साथ बानी अनूप खरवार जी। तो चलिए अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से लिया जाओ कि बानी कहाँ से बात कर जाओ। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रंजी में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बता दिया अपन।
1: मैं प्रभात भारती गोपालगंज से।
0: जी, क्या हाल चाल बा प्रभात भारती जी?
1: बहुत बढ़िया बा
0: जी। तो आज कौन गाना सुने के बा?
1: पिंटू कुमार पांडे का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: चिंटू कुमार की पिंटू कुमार?
1: चिंटू कुमार पांडे, चिंटू पांडे का।
0: चिंटू पांडे का कोई भी गाना?
1: हाँ।
0: जीना तेरे गली में के गाना सुना दे। ओके, चलिए उनका आवाज में गाना प्ले कर दिलवाने, एंजॉय करिए और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने।

और यहाँ मैसेज में लिखा था नहीं जोकर के वोरा मार्केट, शुक्रिया डियर सोनी बहन जी। और मेरा व्हाट्सएप ना, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय करें।

0: ना मन बू
1: तो राके राख लेनी इहे का कोम बा।
2: रही के साथ है अगला फरमाइश के तरफ रुक करें। और अगला फरमाइश जन हमरा पास पहुंचल बा एक एक गो दिल मंगवैया हजार बा। तो इंजॉय करी सनी जी के फरमाइश पे ये गाना और काफी खूबसूरत गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना।

नाराज ना होके और यहाँ मैसेज पहुंचल बा। लिखा था नहीं कि आज के बहुत प्रिय एक्सप्रेस शो के शो काफी लाजवाब रहल बा और सुन के एकदम मिजाज हरियर हो गल बा हमार। और प्लस हमारा खास लिसनर भी जुड़ल बाड़ी शो में, उनकर फरमाइश के बेसब्री से इंतजार बा, तो बिल्कुल इंतजार करी। और मोहम्मद इरफान जी बानी और आगे यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं कि सोनी जी सोनू भाई कहाँ बानी और गाना उनके ऊपर परफेक्ट था। ओहो तो सोनू भाई तो नाइट में रहनी और वहाँ के अभी ना बानी और वहाँ के ड्यूटी के टाइम हुई वहाँ के। आई एम दिल्ली से जुएल बानी दिलीप राम जी और आगे यहाँ मैसेज बार लिखा था नहीं कि गाना बहुत ही अच्छा लागल जी हाँ बिल्कुल। और अगला फरमाइश हम प्ले करें हमारा पास पहुँचल बाटे फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश और फरमाइश करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के मनीष प्रसाद जी। इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर गाना प्ले कर दिले बानी राउर।

और यहाँ अभी अभी दस्तक देले बानी आदित्य कुमार जी जम्मू एंड कश्मीर से बहुत बहुत स्वागत बाटे। लिखा तानी कि हमरो एगो गाना सुना दी, लिंक भेज देता नहीं तो बिल्कुल कोशिश कर सका तानी गाना के फरमाइश जनवा भेज दी, लेकिन हम वादा ना करें कि हम राउर गाना के फरमाइश जनवा प्ले करें। और यहाँ मनीष जी के तरफ से मैसेज पहुँच गए, लिखा तानी गाना बजाया खातिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। इंजॉय करिए अपन गाना के।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रउवा सबे और कार्यक्रम बाटे बहुत प्रिय एक्सप्रेस के। और अभी गाना सुना तनी सा मनीष रजाक जी की फरमाइश बाटे कुशनगर फाजिलनगर से। और अभी कॉल पहुंचल बा तो चली बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाने के फरमाइश का बा। हेलो
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में।
1: कैसन बानी?
0: जी बिल्कुल बढ़िया बानी, रउवा बताई कैसन बानी?
1: बस हम आनियों के ठीक बानी, शाम पानी तो सुबेरे से होता।
0: जी जी बिल्कुल। अरे रुआ पप्पू साहब बोला तनी का?
1: जी जी
0: जी। तो गाना कौन सुना दी रुआ के आज?
1: गाना आज रुआ के सुनवा दी, याद कर ले रही तो बोर तो गई ना, कौन लागते ना रोल। अच्छा। उसको इमोना कोई नहीं एक दू हला। गाना एको सुना दी, ये सरसों के सगिया ला, ये सुना दी।
0: सरसों के सगिया?
1: हाँ, गाना तो दूसरी याद कर ले रही, भुला गई।
0: अच्छा

0: चलिए गाना प्ले कर दे बने राउर
1: जी मैम
0: जी एंजॉय करी बहुत बहुत धन्यवाद जी जी सब बढ़िया बाटे एकदम चकाचक जी एंजॉय करी गाना के अपन जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करी।

सच बात तक गर्दा गर्दा हो गई। आज के शो में आनंद आ गई। उमाशंकर मिश्रा जी बानी दिल्ली से और हाँ अभी कई सारा मैसेज बांटे और अभी अभी दस्तक दिल्ली बानी लिखा था नहीं हम लोग गाने के फरमाइश बताते बिल्कुल प्ले करे के कोशिश।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंचा रहा ला पप्पू साह के तरफ से और यहाँ मैसेज वाली खतनी के आज के एक्सप्रेस तो एकदम सुपर फास्ट बस यहाँ बिल्कुल और अनूप खरवार जी बानी हजियापुर से और आगे यहाँ मैसेज बैठे लिखा था कि सऊदी अरब से खुर्शीद आलम जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बैठे रोआ के भी शो में फरमाइश बात प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे और आगे यहाँ अगला फरमाइश जोन हम प्ले करें अहो पापा और गाने के फरमाइश करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के आसिफ खान जुड़ल बनी गोपालगंज से इंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

रेडियो रंजन सुन रहल बानी रउवा सभे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना हमनी के सुना तनी सन आशिफ खान जी के फरमाइश बा लिखा तनी कि ओके मैम गाना सुना तनी सन और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखा तनी कि सोनी मैम और हर पल में रहुआ तब पानी में आग अच्छा आग लग जाए अभी तो सिर्फ गर्दा उड़ रहा बा जी हाँ बिल्कुल और गर्दा बाहर नहीं के उड़त बस सो में उड़ल बाटे और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि हमरो गानवा सुना दी बिल्कुल गाना के फरमाइश बा प्ले करें थोड़ा सा इंतजार करी कहे कि यहाँ बहुत लोग लाइन में पहले से लागल बा तो चलिए अगला फरमाइश हम प्ले करें हमारा पास पहुँचल बाटे और गाना के फरमाइश करे वाला बानी नाम बाटे यहाँ के सुबह साहू जो बेगूसराय से जुड़ल बानी बेगूसराय से तो इंजॉय करी अपन गाना के रेडियो रंजीम 90.4 FM पर और गाना के फरमाइश बाटे दिलवा सवतिया से जोड़ लिया लाना इंजॉय करी

और यहाँ मनीष पांडे जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रहुआ के भी। और यहाँ मैसेज बटे लिखा तनी कि सुने खातिर हमार वाइफ, अच्छा वाइफ जी खातिर फरमाइश बा, तो थोड़ा इंतजार करी और बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। वाइफ जी के कही कि कान लगे ले रहा एकदम रेडियो से। और खुर्शीद आलम जी बानी सऊदी अरब से, हमरा और गाने के फरमाइश जोन बा जरूर प्ले।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: वेलकम बैक, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर हुआ सभी के एक बार फिर से स्वागत बाटे अपन सो भोजपुरी एक्सप्रेस में। और यहाँ 4:48 हो चुकल बा और 12 मिनट, और देखा तनी 12 मिनट में कितना फरमाइश प्ले हो सका ताटे। और यहाँ फरमाइश के जौन बा के अभी भी भरमार बाटे। और यहाँ मैसेज बा लिखा तनी कि आज के तक कार्यक्रम रंगारंग बा, मैडम जी करीना पांडे के आवाज में गाना सुने के चाहता नहीं मंजे सोनी वानी जमसर बाजार से, तो कोशिश कर सकता नहीं राउर गाने के फरमाइश प्ले करे के। फिलहाल सुनत रही रेडियो रिमझिम के, बहुत बहुत स्वागत बाटे शो में जुड़े खातिर। और आगे यहाँ मैसेज बाटे मुन्ना जी वानी दिल्ली से लिखा तनी कि मैडम जी हम लोग गाना प्ले कर दीजिए। धनेश मिश्रा जी तो अपन गाना ना सुन पैनी है, लेकिन हमार गाना प्ले कर दी और साथ में हमनी के दोनों जन सुन ले, तो चली बढ़िया बाटे। थोड़ा इंतजार करी और कोशिश बाकी राउर गाना भी प्ले कर दी। फिलहाल यहाँ हम गाना प्ले करें ओढ़नी के रंग पियर, और गाने के फरमाइश करे वाला बानी खुर्शेद आलम जी जे कि सऊदी अरब से जुड़ल बनी, और गाना अपन डेडिकेट कर बनी अपन श्रीमती जी के। तो एंजॉय करी अपन गाना के राउर गाने के फरमाइश जोन बा प्ले कर दिल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ संतोष राम जी के तरफ से भी मैसेज पहुँच गया, धन्यवाद। और यहाँ खुर्शीद आलम जी के तरफ से भी मैसेज आ गया कि ओके मैडम जी गाना सुन रहा बनी। और बिना देरी हम अगला फरमाइश प्ले करें, और अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बा दिल्ली से मुन्ना जी के, तो नेक्स्ट गाना राहुल।

फरमाइश के नी मुन्ना जी और यहाँ अभी अभी दस्तक देले बानी लिखा तनी बहुत प्रिया प्रणाम बात सोनी जी रिंकू जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे रोवा के भी शो में और यहाँ लिखा तनी की बजा दी मैडम जी इंतजार बा बिल्कुल और गाना बजा दी करा और गाना प्ले कर देले बानी इंजॉय करी अपन गाना के रहुए गाना प्ले कर ले बानी फिलहाल

0: 104 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी रउवा सभे और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी गाना हमनी के सुना तनी सा मुन्ना जी के फरमाइश रहे दिल्ली से। और यहाँ उमाशंकर मिश्रा जी के मैसेज बाटे लिखा तनी बाय बाय फिर मिलल जी। हाँ बिल्कुल, और कॉल पहुँच चुकल बात चली बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाना के फरमाइश क्या बा। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, नाम बता दिया अपन और कहाँ से।
1: जी हम भूमि बंधु परसानी से बोलते हैं।
0: जी क्या हाल चाल बा भूमि जी।
1: हमारे बढ़िया बा, अपन बताई।
0: हमरो एकदम मस्त बिंदास चकास चकाचक
1: चकाचक रह के चाहिए।
0: जी तो कौन गाना सुना दी बताई।
1: हमें गाना सुना दी चुलिया में झोंक दी।
0: चुली में झोंक दी। हो तो चुली में ना झोंकी जी, अभी बहुत गर्मी बाटे।
1: अब अचानक से याद आ गई ला और अचानक से कॉल आ गई ला, तो अब क्या बताई।
0: चली तो एंजॉय करी चुली में झोंक दी।
1: ठीक
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के नी।
1: ठीक

भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना हमने क्या सुना था नहीं सर मैं बहुत परेशानी से जुड़ा था नहीं गाने के फरमाइश कॉल के माध्यम से और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं चुली में जोक दी खतरनाक गाना अर्जुन अमन जी लिखा था नहीं खाता नहीं बाप रे इतना खतरनाक गाना जी हाँ बिल्कुल और यहाँ अभी अभी दर्शक दिले बानी राम कुमार पांडे जी लंदन से बहुत बहुत स्वागत बाटे और चलिए अगला गाने के फरमाइश हमारा पास पहुँचल बाटे मरून कलर सरिया तो चलिए गाना प्ले कर दिल बानी और गाना के फरमाइश करे वाला बानी नाम भाई यहाँ के रिंकू जी एंजॉय करिए अपन गाना के जेकी वानी गोपालगंज हाजीपुर से हजियापुर से

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और समय इशारा करता शो से विदा लेवे के और यहाँ गाना सुना था निशा रिंकू जी के फरमाइश बटे और गाना यहाँ के सुन ले बानी तो चली और जाते जाते आखिरी फरमाइश प्ले करके जाए और आखिरी फरमाइश हमारा पास बटे मनीष पांडे जी जुएल बानी और यहाँ के सुने के बगाना टुनटुन यादव के आवाज में मुहा में अगिया देके जा रहे लय राम तो एंजॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर और ये गाना के साथ है रवा सबे दी आज के इस शो से हमरा के जाए की इजाजत स्वस्थ रही मस्त रही सुनत रही रेडियो रिमझिम के फिर मुलाकात हुई अगला कार्यक्रम में तब तक के लिए नमस्कार सोल

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029494121 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा 1 सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
5: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
6: जी नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
6: नाम सालू कुमारी।
5: कहाँ से बात कर रही हैं सालू जी?
6: बीते टोला से।
5: जागीरी टोला से?
6: टोला।
5: अच्छा, श्रीसिया फिटी टोला। कैसे हैं सालू जी?
6: अच्छा बताइए।
5: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या करती हैं सालू जी आप?
6: पढ़ाई करते।
5: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
6: नाइन्थ क्लास में आ गई।
5: नाइन्थ क्लास में आ गई हैं आप। और पढ़ाई कैसा चल रहा है आपका?
6: अच्छा चल रहा
5: है। ये बढ़िया है। आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल की हैं सालू जी?
6: पहले भी कर चुकी हूँ।
5: अच्छा, पहले भी बात हुई है। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
6: मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलेंद्र कुमार प्रसाद।
5: जी क्या करते हैं पापा जी आपके?
6: बिजनेसमैन है।
5: चलिए, और आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना है पढ़ाई करके, कुछ सोचा है आपने?
6: जी आगे पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज में जाना है।
5: सिविल सर्विसेज में जाना है, चलिए बढ़िया है। तो शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम आपके साथ।
6: यस मैम।
5: जी लिया जाए पहला प्रश्न।
6: यस मैम।
5: ओके,

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ।
0: रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन डी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी क्या था?
0: विटामिन बी।
1: और ऑप्शन सी?
0: विटामिन डी।
1: दोनों विटामिन डी?
0: ऑप्शन बी विटामिन बी है।
1: हाँ।
0: और ऑप्शन सी विटामिन डी है।
1: अच्छा। विटामिन ए?
0: हाँ?
1: विटामिन ए।
0: विटामिन ए?
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, लॉक कीजिए।
0: चलिए, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी कंप्यूटर।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो सालू जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगणमन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं? चलिए, तो सालू जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय और ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम, ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: तो चलिए सालू जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है?
1: 30 जनवरी।
0: हाँ। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: श्योर है आप?
1: श्योर नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्रीम 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: तो मैम नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
12: जी मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ, लाइन बाजार से।
0: जी कैसे हैं बिमल जी?
12: ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो
12: हेलो।
0: हाँ
12: जी बोलिए।
0: मना की पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
12: पढ़ाई अभी तो बंद है।
0: अच्छा, तो अभी क्या हो रहा था?
12: अभी कुछ नहीं, सिलाई चलाती हूँ तब तक फ्री टाइम में।
0: क्या चलाती हूँ?
12: सिलाई कर लेती हूँ फ्री टाइम में।
0: अच्छा, सिलाई भी करती हैं? तब कुछ सिल लेती हैं?
12: हाँ लेडीज, स्वामी लेडीज।
0: लेडीज मतलब सारी चीज सिल लेती हैं। तो आपको लेडीज टेलर बोल सकते हैं?
12: हाँ नाम ही अपना सिल कर पहन लेते हैं लोग, जीते कर सिल देते हैं लोग।
0: चलिए अच्छी बात है, करना चाहिए, वो भी जरूरी है।
12: हाँ
0: तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
12: जी मैम।
0: जी मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
12: मम्मी का नाम प्रभाती देवी है, पापा जी के नाम श्री रामाजी प्रसाद है।
0: जी तो लिया जाए ना पहला प्रश्न?
12: जी मैम।
0: जी

0: तो विमल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: हाँ
0: जी। और आपके बगल में कोई बच्चा है?
1: हाँ,
0: बीच बीच में आवाज आ रही है थोड़ा।
1: बेबी, छोटा सा बेबी, एक मंथ का, वो पास ही में है।
0: चलिए कोई नहीं, तो लॉक करें आपका आंसर।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी वंदे मातरम को लॉक करते हैं।
1: जी
0: जी। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: जी, कॉल करो।
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी श्री कृष्ण सिंह। तो आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्री कृष्ण सिंह।
0: जो है आप?
1: जी।
0: लॉक कर दूं? तो क्या कहती हैं, लॉक करूं कि कोई और ऑप्शन दीजिएगा?
1: कर दीजिए मैम, देखते हैं।
0: कर दें। चलिए, तो विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय होता है? क्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तो तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। तो पांचवा प्रश्न आपसे ये है विमल जी, जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी और
1: महात्मा गांधी।
0: जी। चल रहे हैं आप?
1: जी मैम।
0: जी, तो लॉक कर दो?
1: जी।
0: चलिए, तो चलिए विमल जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी। आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 28 फरवरी और सी 22 मार्च. आपका समय
1: 8 मार्च.
0: क्लियर है?
1: जी मैम.
0: लॉक कर दो.
1: जी ज्यादा मैम.
0: ओके तो चलिए विमल जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 8 मार्च को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है. तो तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम.
0: जी तो सातवां प्रश्न आपसे ये है, निम्न के किस जिला में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निम्न के किस जिले में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए छपरा, बी बेतिया, सी सिवान. आपका समय शुरू होता है अब.

0: कंफर्म नहीं है मैम, फिर भी छपरा लॉक कर दीजिए।
1: छपरा कर दें
0: जी,
1: श्योर है
0: लॉक? श्योर तो नहीं है, मिस्टेक तो रहा है, लेकिन लॉक कर दीजिए, देखते यार नहीं आ रहा तो क्या करें।
1: चलिए कोई नहीं, तो आपके सातों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए छपरा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातों प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सिवान।
0: ओके मैम,
1: ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
9: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94।

0: के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्ते मैम। नमस्ते,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
7: ये मैं अभिजीत कुमार पचुरुखी से बात कर रहा हूँ।
6: पचुरुखी से?
7: जी।
6: सिवान पचुरुखी?
7: जी जी
6: जी। और अभिजीत नाम पड़ेगा आपका?
7: जी।
6: क्या करते हैं अभिजीत जी?
7: बारहवीं का एग्जाम पढ़ाई करता हूँ।
6: बारहवीं में?
7: जी
6: जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
7: बढ़िया चल रही है।
6: अच्छी बात है। तो आगे क्या करना है, पढ़ के कुछ सोचा आपने? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
7: गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना?
6: अच्छा, अभी शुरू नहीं किया है?
7: नहीं।
6: ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
7: जी जी
6: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अभी जी।
7: मम्मी जी का नाम उषा देवी और पिताजी का नाम दिनेश ठाकुर।
6: क्या करते हैं पापा जी आपके?
7: फार्मर है।
6: तो शुरू किया जाए आज का प्रश्न आपके साथ।
7: जी
6: जी।

0: तो अभिजीत जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 17 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी
0: श्योर है
1: जी?
0: चलिए तो अभिजीत जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 जनवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी मुजफ्फरपुर, सी बेतिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए।
0: बेतिया
1: जी
0: श्योर है?
1: जी
0: लॉक कर दो।
1: जी
0: तो विजय जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: महात्मा गांधी
0: श्योर है?
1: जी
0: लॉक कर दो।
1: जी
0: जी तो चलिए अभिजीत जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें

0: कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 14। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ फिक्स किया है।
0: आपके बगल में कोई है?
1: मेरा बात कर रहा था, गया हूँ।
0: हाँ,
1: गया उधर बात कर रहे थे। नौ फिक्स किया
0: क्यों है आप?
1: जी
0: चलिए, तो चलिए अभिजीत जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्मदिन कब मनाया जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलोगे?
0: ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी।
1: 13 फरवरी फिक्स ही है।
0: क्यों है?
1: जी।
0: तो चलिए अभिजीत जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए नालंदा, बी औरंगाबाद और सी पटना। आपका समय स्रोत है अब।
1: औरंगाबाद फिक्स कीजिए।
0: क्यों है?
1: क्यों नहीं
0: है? लॉक कर दो।
1: जी
0: जी। तो चलिए अभिजीत जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी औरंगाबाद को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा पटना।
1: ठीक है ना।
0: ओके, हेलो, फिर कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
9: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
8: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
9: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
8: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
9: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
8: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
9: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
8: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
9: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403। नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
9: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
9: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
9: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम, हर हर महादेव।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
11: हाँ हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: जी मैडम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
11: रंजीत कुमार
0: जी। कैसे हैं रंजीत जी?
11: ठीक है मैम, आपने बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या करते हैं रंजीत जी आप?
11: अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई चल रही है आपकी?
11: अभी ग्रेजुएशन हो गई है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी चल रही है।
0: चलिए, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
11: मेरे पिताजी का नाम श्री जग महतो और मेरी माता जी का नाम श्रीमती इंदु देवी।
0: जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार हैं पहले प्रश्न के लिए?
11: जी
0: जी। तो रंजीत जी, आपसे रंजीत नाम बताया ना आपने?
11: जी जी
0: जी।

0: पहला प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर और सी श्री कृष्ण सिंह। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 14 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन क्या क्या बोली है?
0: ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 14 फरवरी।
1: 13 फरवरी को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है लेकिन फिक्स कीजिए इसी को।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: जी, आज का आपका तीसरा प्रश्न ये है, बिहार राज्य के निम्न जिलों में से दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी कटिहार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मतलब क्या कर रहे हैं कि दो लोकसभा
0: राज्य के निम्न जिलों में से दो लोकसभा वाला जिला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है?
1: जी
0: जी,
1: पटना, नालंदा और क्या ऑप्शन दिए हैं?
0: कटिहार।
1: कटिहार फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर कटिहार को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा पटना।
1: ठीक है।
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैं विमल कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी कैसे हैं विमल जी?
2: ठीक है, आप कैसे मैम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो विमल जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
2: जी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है।
0: चलिए, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी और पापा जी का नाम ब्रह्मा जी प्रसाद है।
0: तो विमल जी, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: जी,

0: तो विमल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, बी मुंगेर, सी तिरहुत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: तिरहुत।
1: जी
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तिरहुत को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आज आपका दूसरा प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 मार्च, बी 8 मार्च और सी
1: 8 मार्च को।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी मैम।
0: चलिए, तो विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर 8 मार्च को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, बी नीलगिरी और सी मानस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी डी
0: नीलगिरी।
1: नीलगिरी रिजर्व।
0: श्योर है आप?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी नीलगिरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है स्टीफन हॉकिंग, बी है अल्बर्ट आइंस्टीन और सी है जॉन व्हीलर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी लॉक कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी लॉक करें?
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: अल्बर्ट आइंस्टीन।
1: हाँ, कौन दीजिए तो कंफर्म नहीं तो क्या करें।
0: चलिए, तो आपके चलिए चौथे प्रश्न के उत्तर को लॉक कर रहे हैं।
1: जी,
0: अल्बर्ट आइंस्टीन को। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जॉन व्हीलर।
1: ओके,
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921, 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
5: जी नमस्ते मैम।
4: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
5: संदीप सिंह
4: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं संदीप जी?
5: सिवान आनर से। जी
4: क्या करते हैं आप संदीप जी?
5: पढ़ाई करता हूँ अभी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर।
4: जी पढ़ाई कैसे चल रही है?
5: बढ़िया चल रही है मैम।
4: चलिए बढ़िया। इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं आप?
5: जी जी।
4: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
5: मम्मी का नाम उर्मिला देवी और पिताजी का नाम गणेश सिंह।
4: जी तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
5: जी
4: जी,

0: आज का पहला प्रश्न आपसे ये है संदीप जी, भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? ऑप्शन ए गोविंद सागर, बी हीराकुंड जलाशय और सी नागार्जुन सागर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोविंद सागर फिक्स कीजिए। मैं
0: श्योर है
1: जी।
0: ओके तो लॉक करें।
1: जी
0: जी। तो संदीप जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानीय पवन, बी मौसमी पवन और सी सनातन पवन यानी अस्थाई पवन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: अस्थाई पवन।
1: जी।
0: क्यों है?
1: नहीं।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए संदीप जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अस्थाई पवन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, लौह पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई थी? लौह पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई थी? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए
0: सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: जी।
0: क्यों है आप?
1: जी जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए संदीप जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पूर्वी चंपारण फिक्स कीजिए।
0: श्योर है? ओके तो चलिए संदीप जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर।
1: ओके
0: ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप इनके कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी मैं सोनू जी बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं सोनू जी?
1: मैं अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
1: बढ़िया चल रही है मैम।
0: जी अच्छी बात है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
1: मम्मी का नाम कालिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष दुबे।
0: जी लिया जाए पहला प्रश्न आपका।
1: जी जी
0: जी।

0: तो पहला प्रश्न आपसे ये है सुनील जी आज का, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: लेक करीबा। श्योर है आप? चलिए तो सुनो जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लेक करीबा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा।
1: लेक वोल्टा,
0: वोल्टा। हाँ ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
13: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
14: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
13: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
14: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
13: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
14: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
13: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
16: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
13: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
15: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
13: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज में।
17: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
17: रुपेश कुमार जादवपुर से।
0: एक बार और बताइए नाम।
17: रुपेश कुमार। रुपेश कुमार।
0: रुपेश कुमार जादवपुर से।
17: हाँ
0: जी। क्या करते हैं रुपेश जी?
17: पढ़ाई करते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
17: 12th में।
0: 12th में। पढ़ाई कैसी चल रही है?
17: अच्छा चल रहा है।
0: चलिए तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आप इससे पहले भी कॉल किए हैं?
17: हाँ
0: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
17: माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया
0: जी। लिया जाए पहला प्रश्न आपसे?
17: हाँ
0: ओके।

0: तो रुपेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 14 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी को फिक्स करिए।
0: क्योर है आप?
1: कंफर्म तो नहीं है लेकिन इसी को फिक्स करिए।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 जनवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी दरभंगा, सी भागलपुर। आपका समय शुरू हो गया अब।
1: भागलपुर कंफर्म नहीं है लेकिन इसी को फिक्स करिए।
0: ओके चलिए, तो चलिए रुपेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक, लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी को फिक्स करिए।
0: ऑप्शन
1: बी,
0: बी लेक करीबा। जी लॉक कर दो।
1: कर दीजिए लेकिन कंफर्म तो नहीं है, थोड़ा डाउट में है। ऑप्शन बी और ठीक है
0: तो कौन सा लॉक करे? कंफर्म करिए, नहीं है तो
1: बी को ही कीजिए।
0: बी को ही करे, लेक करीबा
1: नहीं, सी को
0: लेक वोल्टा।
1: हाँ
0: श्योर है इसके लिए?
1: हाँ कीजिए।
0: ओके चलिए, तो चलिए रुपेश जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लेक वोल्टा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। तैयार है चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, बी गोविंद सागर, सी नागार्जुन सागर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोविंद सागर को फिक्स कीजिए।
0: इसमें श्योर है कि ये भी लग के सारे
1: इसी को फिक्स।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए? जी। पांचवा प्रश्न आपसे ये है, कला के क्षेत्र में किस महापुरुष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में किस महापुरुष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी किरण बेदी, सी मदर टेरेसा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लता मंगेशकर को फिक्स
0: करिए। श्योर है?
1: हाँ उन्हीं को कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर लता मंगेशकर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ
0: चलिए, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मुजफ्फरपुर को फिक्स कीजिए। हाँ कीजिए,
0: लॉक कर दो।
1: हाँ
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर, मुजफ्फरपुर को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी, सी अमृत प्रीतम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन डी को पिक कीजिए, किरण बेदी को।
0: श्योर है?
1: हाँ कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी किरण बेदी को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन।
1: क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। ब्लैक होल
0: शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, बी अल्बर्ट आइंस्टीन और सी जॉन व्हीलर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जॉन व्हीलर को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, मतलब लक के भरोसे है।
0: लक के भरोसे आठवें प्रश्न तक पहुंच गए।
1: अरे तो मतलब लक के भरोसे सब थोड़ी है, मतलब उसमें से कुछ तो बताए गए हैं, इसमें लक के भरोसे दो को बताए हैं।
0: ओके, नहीं आप बोल रहे हैं कि श्योर नहीं है इसलिए बोले।
1: अरे तो मतलब हमको ऐसा लग रहा है, मतलब इतना मतलब हम जानकार थोड़ी है कि हमको सब पता ही होगा।
0: ये तो बिल्कुल सही है कि किसी को सब पता नहीं होता है।
1: हाँ तो वही जो मतलब हमको लग रहा है कि मतलब यही सही होगा, तो मतलब हमारे मतलब हमको जो लग रहा है हम बोल रहे हैं।
0: तो हम भी वही बोले हैं कि लग के भरोसे आप आठवें प्रश्न तक आ गए, हम कुछ गलत नहीं बोले हैं। गलत, ठीक है?
1: ठीक है
0: जी, तो लॉक कर दे आपके उत्तर को, जॉन व्हीलर को।
1: हाँ
0: चलिए, तो चलिए आपके आठवें प्रश्न का उत्तर जॉन व्हीलर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप नौवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है,
1: नौवा है मैम
0: जी, नौवा प्रश्न है जी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तमिलनाडु को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: हाँ कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रुपेश जी आपके नौवे प्रश्न का उत्तर तमिलनाडु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके नौवे प्रश्न का उत्तर जो है तमिलनाडु गलत है। सही उत्तर होगा केरल। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट पे कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास। यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
13: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
14: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
14: थैंक यू मैम
0: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
14: नाम सलोनी कुमारी बंजारी परमस्थान, गोपालगंज से।
0: जी, कैसी हैं सलोनी जी।
14: ठीक हूँ
0: जी। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी।
14: अच्छी चल रही है।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं।
14: BA फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है। चलिए, तो आप तैयार हैं आज के प्रश्न के लिए।
14: हाँ।
0: नाम बता दीजिए अपने मम्मी पापा का।
14: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा का नाम है कुंदला।
0: जी, लिया जाए पहला प्रश्न।
14: हाँ लीजिए।
0: ओके,

0: तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन दीजिएगा फिर से।
0: ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा।
1: ए लगाइए।
0: लेक नासेर।
1: हाँ।
0: योर है?
1: तो नहीं है।
0: चलिए तो सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर लेक नासेर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी आपका मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना।
2: मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है।
0: जी कहाँ से बात कर रही है अनुराधा जी?
2: थाने से बोल रहा।
0: जी कैसी हैं?
2: हम ठीक हैं, आप बताइए।
0: बड़ी बढ़िया। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी अनुराधा जी?
2: ये फर्स्ट ईयर में है।
0: अभी चल रही है?
2: जी
0: जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: ठीक ही चल रही है, घर से ही करते हैं।
0: जी जी चलिए बढ़िया है। तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया तो तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी एक बार किए थे।
0: जी आज के लिए आप रेडी हैं?
2: जी।
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी पापा का नाम श्री प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम श्रीमती वरुण शिवला देवी।
0: जी पापा जी क्या करते हैं आपके?
2: काम करते हैं किसी के अंदर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पहला प्रश्न ले आपसे।
2: हाँ
0: शुरू करें पहला प्रश्न। जी
2: जी ना।

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: टॉयलेट मैन को उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? टॉयलेट मैन को उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? ऑप्शन ए दशरथ मांझी, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन सी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा।
0: टॉयलेट मैन के उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है?
1: दशरथ मांझी।
0: दशरथ मांझी का
1: जी।
0: तो लाला जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दशरथ मांझी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक।
1: खाली
0: प्रश्न में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707-06-575।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
16: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
16: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
17: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: सोचे हैं?
1: हमें नहीं सोचे हैं। चलिए, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
0: हाँ किए हैं।
1: किए हैं तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
0: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया।
1: जी, तो क्या करते हैं पापा जी आपके?
0: फार्मर है, किसान है।
1: अच्छा, चलिए तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
0: जी
1: जी, तो रुक जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगणमन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम ऑप्शन बी।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: चलिए तो लॉक करूँ?
1: हाँ।
0: ओके तो रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर वंदे मातरम बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: दूसरा प्रश्न आपसे ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी टेलीफोन, सी कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन डी को क्लिप्स के लिए।
0: टेलीफोन।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: ओके तो चलिए रुपेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी टेलीफोन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा कंप्यूटर। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: गणेश कुमार सीते नारायण से।
0: कैसे हैं गणेश जी?
2: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
2: पढ़ाई तो 7 क्लास तक हुआ है।
0: अच्छा, तो गणेश जी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट को कॉल किए तो तैयार है आप आज के प्रश्न के लिए?
2: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: मम्मी के पापा का नाम श्री सुदर्शन पंडित, मम्मी के नाम श्री कुमार लदेज।
0: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: जी
0: जी,

0: तो गणेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू है अब।
1: बी वाला को लॉक करिए।
0: बी वाला को
1: जी।
0: वंदे मातरम
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं हूँ।
0: तो लॉक करो?
1: जी कर दीजिए।
0: चलिए तो गणेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन के कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।

0: विटामिन सी कर दीजिए।
1: श्योर है?
0: श्योर तो नहीं है।
1: तो लॉक करूं?
0: जी कर दीजिए।
1: चलिए तो गणेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, विटामिन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुपीज फाउंडेशन में कॉल किए।
2: तो ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894-18744।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
13: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9939365923।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
14: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
16: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे। जब घर में नन्ना मेहमान आता है तो खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, बच्चे की सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। आजकल विज्ञापन बहुत आगे बढ़ गया है, अब नवजात शिशु की जांच यानी नवजात स्क्रीनिंग के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है। ये टेस्ट बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर किया जाता है। अगर कोई बीमारी समय रहते पकड़ ली जाए तो उसका इलाज शुरू हो सकता है और बच्चे को आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय नवजात स्क्रीनिंग दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर शुरुआत सही हो तो आगे जिंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे अपने सेहतिया भैया और टिकन भाभी।
17: देखो भाई, जब बीज अच्छा बोओगे तभी तो पेड़ मजबूत निकलेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बीमारियां छुपी हो सकती हैं। अगर बीमारियों को उसी वक्त पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है।
18: और नवजात स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत छोटा होता है, आसानी से हो जाता है, मगर इसके फायदे जीवन भर मिलते हैं।
17: हाँ, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और इसका असर बाद में दिखता है।
18: बिल्कुल, देखिए पड़ोस के गांव की बात है। फूलमती की बहू को बेटा हुआ, सब खुश थे, पर बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पा रहा था, बार बार कपकपी हो रही थी। लोग बोले कि ठंड लग गई है, नजर लग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे को जन्म से ही थायराइड की बीमारी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर शिशु की जन्म के समय जांच करवाई होती तो बीमारी का पता चल जाता और इलाज समय पर शुरू हो जाता। अब बच्चा ठीक तो है लेकिन दवाइयों पर चल रहा है। सोचिए अगर पहले ही नवजात स्क्रीनिंग हो जाती तो जिंदगी आसान हो जाती।
16: सेहतिया भैया, आखिरकार बच्चे को पैदा होते ही नवजात स्क्रीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है?
17: जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में कई बीमारियां पता नहीं चलती। स्क्रीनिंग में डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं, कानों की सुनने की क्षमता देखते हैं और दिल की धड़कन जांचते हैं। अगर कोई समस्या जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। इस टेस्ट से बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है।
16: टिकन भाभी, नवजात शिशु की जांच कब करवानी चाहिए?
18: बच्चे के जन्म के बाद जब वो 1-2 दिन का होता है तब नवजात स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा एकदम ठीक है या नहीं।
16: अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा ना हुआ हो तो भी ये जांच करवानी चाहिए?
18: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर से बात करके जांच करवानी चाहिए। इससे परेशानी जल्दी पकड़ में आ जाती है और सही इलाज हो सकता है। पर सही प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में जन्म देकर बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
16: सेहतिया भैया, नवजात शिशु की जांच कैसे होती है?
17: आरजे, नवजात स्क्रीनिंग 3 तरीके से होती है। सबसे पहले बच्चे की एड़ी से कुछ बूंद खून लेकर लैब में भेजा जाता है ताकि किसी गंभीर बीमारी का जल्दी पता चल सके। फिर सुनने की जांच होती है, इसके लिए कानों में छोटे ईयरफोन लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा आवाज पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। और एक तीसरा तरीका है दिल की जांच, जिसमें एक खास मशीन से बच्चे के खून में ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है। इससे दिल की कोई समस्या हो तो जल्दी पकड़ में आ जाती है।
16: टिकन भाभी, अगर किसी नवजात शिशु की जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो क्या किया जाता है?
18: यदि किसी नवजात शिशु के जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बच्चे की और जांच करनी होगी ताकि डॉक्टर को पूरी जानकारी मिल सके। पहला टेस्ट सिर्फ शुरुआती जांच होती है जिससे डॉक्टर को संकेत मिलते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
16: तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है?
18: बिल्कुल सही, कई बार शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कोई बीमारी है। इसीलिए डॉक्टर आगे एक और टेस्ट करने की सलाह देते हैं जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। यह ज्यादा सटीक होता है और इसमें पता चलता है कि वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के नतीजे सामान्य आते हैं तो आगे किसी और जांच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी दिखती है तो डॉक्टर अगला कदम बताते हैं। वो आपको सही इलाज और बच्चे की सेहत को बेहतर रखने के लिए जरूरी सलाह देते हैं।
19: सेहतिया भैया, अगर परिवार में एक बच्चे को कोई बीमारी हो तो क्या दूसरे बच्चे को ये बीमारी हो सकती है?
17: देखिए, कई बीमारियां वंशानुगत होती हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए आती हैं। अगर किसी परिवार में एक बच्चे को कोई वंशानुगत बीमारी है तो उसके भाई बहन को भी वही समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन हर बीमारी ऐसी नहीं होती, कुछ बीमारियां सिर्फ उसी बच्चे में हो सकती है जबकि उसके भाई बहन बिल्कुल ठीक रह सकते हैं।
19: अगर किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो और माता पिता दूसरा बच्चा चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए?
17: अगर ऐसा हो तो माता पिता को किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर समझाते हैं कि बीमारी परिवार में कैसे आती है और अगला बच्चा इससे प्रभावित होगा या नहीं। डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका होता है ताकि परिवार सही फैसला ले सके।
19: तो क्या हर स्वास्थ्य समस्या वंशानुगत होती है?
17: नहीं आरजी, कुछ बीमारियां वंशानुगत नहीं होती, जैसे सुनने की समस्या जो कभी कभी गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रमण से हो सकती है। ऐसे स्थिति में दूसरी गर्भावस्था में यह समस्या होने की संभावना कम होती है। इसलिए हर बीमारी को समझना जरूरी होता है ताकि सही इलाज और सावधानी बरती जा सके।
19: तो मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?
17: डॉक्टर सही जानकारी और सुझाव देते हैं, इससे माता पिता को बच्चे की सेहत को लेकर बेहतर फैसला लेने में मदद मिलता है।
19: टिकन भाभी, आपने बताया था कि नवजात स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे की स्क्रीनिंग से कोई बीमारी पकड़ी गई हो और फिर वो ठीक हो गया?
20: हाँ, मेरे पड़ोस की सुनीता के बेटे के साथ ऐसा ही हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ तो अस्पताल में उसकी स्क्रीनिंग हुई। जांच से पता चला कि बच्चे के शरीर में कार्बनिक अल्म ज्यादा जमा हो रहा है। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पाता। अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो बच्चे की सेहत बिगड़ सकती थी।
19: फिर क्या किया गया?
20: जैसे ही ये बीमारी पता चली, डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्होंने सुनीता को बताया कि बच्चे की डाइट में खास ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी दी। धीरे धीरे सही इलाज और देखभाल से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
19: तो मतलब अगर स्क्रीनिंग ना हुई होती तो बीमारी पकड़ में ही नहीं आती?
20: बिल्कुल सही कहा, अगर ये टेस्ट नहीं हुआ होता तो बीमारी का पता ही नहीं चलता और बच्चा बहुत परेशानी में आ सकता था। इसीलिए स्क्रीनिंग हर नवजात के लिए बहुत जरूरी होती है।
19: सेहतिया भैया, आपकी जानकारी में कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे की बीमारी स्क्रीनिंग से पता चली हो और फिर वो ठीक हो गया हो?
17: हाँ अजय, मेरे दोस्त विजय की बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था। जब वो पैदा हुई तो अस्पताल में उसकी नवजात स्क्रीनिंग हुई। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जांच के नतीजे आए तो डॉक्टरों ने बताया उसे फैटी एसिड की बीमारी है।
19: ये कौन सी बीमारी होती है?
17: देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसे हम खाने पीने की चीजों से लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उनका शरीर वसा को ठीक से पचा नहीं पाता, इससे बच्चों को जरूरी ऊर्जा नहीं मिलती और उन्हें कमजोरी महसूस होती है।
19: तो फिर विजय ने क्या किया?
17: रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने विजय को समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सही इलाज से बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती है। उन्होंने कुछ दवाएं और खास डाइट सुझाई। विजय ने पूरी सावधानी बरती और धीरे धीरे बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
19: टिकन भाभी, मैंने सुना है कि कुछ बच्चों को अमीनो एसिड से जुड़ी कोई समस्या होती है, ये क्या है?
20: अरे, ये एक खास तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चे का शरीर अमीनो एसिड को ठीक से नहीं पचा पाता। ये एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जब शरीर इसे सही तरीके से नहीं प्रोसेस कर पाता तो इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
19: तो ये बीमारी कैसे पता चलती है?
20: जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नवजात स्क्रीनिंग की जाती है। इस टेस्ट से अगर कोई दिक्कत हो तो पता चल जाता है, फिर डॉक्टर सही इलाज शुरू कर सकते हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रह सके।
19: सेहतिया भैया, ये हार्मोन संबंधी परेशानी क्या होता है, क्या इससे छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं?
17: देखिए, ये समस्या शरीर में हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को प्रभावित करती है। हार्मोन वो रसायन होते हैं जो शरीर में कई जरूरी काम करते हैं, जैसे वजन बढ़ाना, शरीर का विकास होना, अलग अलग अंगों का ठीक से काम करना। अगर किसी बच्चे में हार्मोन सही तरीके से ना बने तो उसे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं।
19: ये बीमारी कैसे पता चलता है? अगर बच्चे को ये समस्या हो तो इलाज कैसे होता है?
17: जब बच्चा पैदा होता है तो नवजात स्क्रीनिंग से इस बीमारी का पता चल जाता है। डॉक्टर खास तरह की दवाएं और देखभाल बताते हैं। कभी कभी हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो बच्चा सामान्य तरीके से बढ़ सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है।
19: भाभी, मेरे दोस्त के बच्चे में एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे हीमोग्लोबिन की समस्या है, ये क्या होता है और क्या इसे पहले से पहचाना जा सकता है?
20: हीमोग्लोबिन की समस्या खून से जुड़ी बीमारी है, मतलब शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। लेकिन नवजात स्क्रीनिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इस बीमारी से प्रभावित है या नहीं। अंश का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने डॉक्टर की सलाह पर नवजात स्क्रीनिंग कराई। टेस्ट में पता चला कि उसे हीमोग्लोबिन की बीमारी है, बीमारी पकड़ में आते ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। अगर ये बीमारी समय रहते पकड़ में ना आती तो बाद में अंश को गंभीर परेशानी हो सकती थी।
19: भैया जरा एक बात बताइए, मेरे पड़ोसी के नवजात बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले कि उसे गंभीर जन्मजात हृदय रोग है, ये क्या होता है?
17: कुछ बच्चों में हृदय रोग जन्म से ही होता है। इसमें दिल की बनावट में गड़बड़ी होती है जिससे खून शरीर में सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है।
19: मतलब बच्चा दिखने में ठीक होता है पर अंदर से बीमार होता है।
17: बिल्कुल, शुरू शुरू में बच्चा एकदम ठीक लग सकता है लेकिन कुछ ही दिनों में सांस लेने में दिक्कत, दूध पीने में परेशानी जैसी चीजें दिखने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर नवजात स्क्रीनिंग समय पर हो जाए तो इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है।
19: और क्या इसका इलाज है?
17: हाँ है, लेकिन जल्दी पकड़ में आना जरूरी है। चलो तुम्हें छोटे फैजान की आप बीती सुनाता हूँ। शहर के अस्पताल में फैजान पैदा हुआ था। नवजात स्क्रीनिंग के तहत उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में पता चला फैजान के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम है। तुरंत और टेस्ट किए गए और पता चला कि उसे हृदय रोग है। फिर सर्जरी की गई और फैजान एकदम ठीक है, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह।
19: मेरे मौसी का पोता अभी कुछ महीने का है पर आवाज पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। माँ कुछ भी बोले बच्चा पलटकर नहीं देखता। डॉक्टर बोले कि सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। ये नवजात बच्चों में भी होता है क्या?
20: हाँ भैया होता है, कुछ बच्चे जन्म से ही ठीक से सुन नहीं पाते लेकिन बाहर से देखने पर वो तो बिल्कुल आम बच्चों जैसे ही लगते हैं।
19: पर भाभी अगर बच्चा कुछ बोले ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि उसे सुनाई देता है या नहीं?
20: बस यही गलती होती है, अगर हम बच्चे के बोलने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। नवजात स्क्रीनिंग में अब सुनने की जांच भी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब अस्पताल में एक छोटा सा मशीन कान में लगाते हैं। मशीन खुद पता लगा लेती है कि बच्चे के कान ठीक से आवाज पकड़ रहे हैं या नहीं। न बच्चा रोता है न कोई तकलीफ होती है। हर नवजात बच्चे का हियरिंग टेस्ट जरूरी है, इससे बच्चे को समय पर इलाज मिल सकता है और वो बाकी बच्चों की तरह बोल सुन सकते हैं।
19: भैया भाभी आज तो आप दोनों से बड़े काम की बात जानने को मिली। सच में नवजात स्क्रीनिंग हर बच्चे के लिए जरूरी होता है।
20: बच्चा जब दुनिया में आता है तब उसकी कुछ जरूरी जांच करवा लेने से आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
17: बिल्कुल, जैसे कि दिल का रोग, थायराइड की गड़बड़ी, सुनाई न देना और अन्य कई छिपी बीमारियां नवजात स्क्रीनिंग से जल्दी पकड़ में आ जाती है। इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है।
19: मतलब ये हुआ कि बच्चा चाहे बिल्कुल ठीक दिखे फिर भी उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए।
20: हाँ भैया, बीमारी बाहर से थोड़ी ही दिखती है, अंदर ही अंदर नुकसान कर जाती है, यही तो हम सबको समझना है।
17: और ये जांच ज्यादा महंगी भी नहीं होती, सरकार कई अस्पतालों में ये सुविधा फ्री में दे रही है, बस जागरूक रहना जरूरी है।
19: तो दोस्तों आज से ही तय कीजिए कि अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नवजात स्क्रीनिंग जरूर करवाए ताकि वो बच्चा आगे चलकर हंसता खेलता सेहतमंद जीवन को जी सके। तो दोस्तों आज के सेहत सही लाभ कई में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
21: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
22: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
23: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
22: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
23: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
24: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
25: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
24: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
25: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: और

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18744। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरु नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1,000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

0: आज यहां ना गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गई। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। यह भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।

0: My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning.
1: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी। लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया। दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी, बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस नए रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था।
2: Underscore to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue.
1: Aman, chain aur dosti ki ummeed se bhare is mahol mein 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
1: कहानी करगिल की। अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। यह साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
9: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में है और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी। जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
1: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया। लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
10: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा के नहीं, ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
11: जब तक भारत को पता चल पाता, तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे, तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी?
1: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहाँ तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
12: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया, मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब, ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ। मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
1: परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था, इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था।
13: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहाँ हम चले गए, ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया। और मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको गले से पकड़ लिया, क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है, जो श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लद्दाख ले जाती है, उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
1: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
14: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा, अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके, और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
1: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
17: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
16: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
17: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
16: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
18: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
19: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
18: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
19: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
18: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
19: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
18: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: कहानी करगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे।
20: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर, जिहाद, ये वो सारा कुछ। ISI में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद, कोर कमांडर, 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन, इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स कमांड, नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के, ये थे द 4 पीपल हु कंसीव्ड द गैंग ऑफ 4 अक्टूबर-नवंबर 98। अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कुछ सीज कर ले एलओसी के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदा ना बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए तो बंदा ना बंदे की जात। सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, पता नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
0: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांग कर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद एलओसी क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
21: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी एनएलआई के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16,000 से 18,000 फीट तक की हैं और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
0: जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
22: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
0: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
23: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
0: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
24: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलटवार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था एलसी ना पार करने का, ये बहुत समझदार फैसला था, क्योंकि इससे कोई विदेशी ताकत इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते तो ये इंटरनेशनल स्थिति बन जाती, UN उसमें बीच में टपक पड़ता, अमेरिका दबाव डालता कि लड़ाई बंद करो, मैक्सिमम हम 7-8-10 दिन 15 दिन तक लड़ाई लड़ सकते थे। जबकि ऐसे पहाड़ों पे हमारा अंदाजा था कि 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे उनके पांव उखाड़ने में, तो इसलिए अगर हमने लाइन पार की होती हम पे दबाव पड़ता, 15 दिन में हमको खत्म करना पड़ता और काफी सारा इलाका उसके हाथ में रह जाता ऐसे अहम जगह में।
23: शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है। लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है।
21: युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को हमला करने वालों का नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को भेजना पड़ा था।
1: भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपने सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स।
2: से प्रादेशिक समाचार सुनिए, पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में 551 सरस्वती विद्या निकेतन का किया उद्घाटन। बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। सड़क, बिजली, जल संसाधन और शिक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शिवहर जिले में बागमती बूढ़ी गंडक नदी लिंकिंग परियोजना के तहत एनापुर लिंक नहर का किया उद्घाटन। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग की अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक आयोजित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे। बैठक

0: गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। श्री रिजिजू संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य निपटाएगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य के 551 आदर्श विद्यालय और सरस्वती विद्या निकेतन का उद्घाटन किया। बेगूसराय के आईओसीएल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कल से इन विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी और आधुनिक प्रयोगशाला समेत अन्य आधारभूत सुविधाएं छात्रों को मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती पर उनके नाम से यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा।
3: दिनकर जी ने जो राष्ट्र के स्तर पर इस भारत में पूरी संस्कृति का, शिष्टाचार का, लिटरेचर का जो व्यवस्था, राष्ट्र कवि के तौर पर जो जाने गए, उनकी कल्पना को दुनिया जान सके, तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बेगूसराय की पावन धरती पर एक नया यूनिवर्सिटी बनेगा जो दिनकर जी के नाम पर होगा।
1: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 अगस्त से फिलो ऐप के माध्यम से लाइव कक्षाओं की सुविधा शुरू होगी तथा चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल स्टूडियो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की विशेष व्यवस्था की जाएगी। विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। सरकार सड़क, बिजली, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी। मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री विजेंद्र यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। सत्र के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। 22 और 23 जुलाई को सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि 24 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार विनियोग विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी। इस सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और जन सरोकार से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष जनहित के मुद्दों को उठाएगा।
4: मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस मानसून सत्र में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम सरकार को हर मुद्दे पर घेरेंगे, जो जनता के मुद्दे होंगे, जो जनता के सवाल होंगे, जो जनता के लिए होंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहते हैं और हम सरकार को आईना दिखाएंगे। सरकार उस आईने में अपना वो चेहरा देखने का काम करे जिससे कि बिहार और बिहार की जनता त्रस्त है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट की कल शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी के अलावा सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कई विधेयकों और जनहित के प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। यह कैबिनेट बैठक तय समय से 2 दिन पहले बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शिवहर जिले में बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना के तहत 130 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से

0: लगभग 68.80 किलोमीटर लंबी बेलवा मीनापुर लिंक नहर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से नदी जोड़ो रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना की परिकल्पना की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेलवा मीनापुर लिंक नहर बागमती नदी के अतिरिक्त जल को बूढ़ी गंडक तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।
1: आज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरा किया, आज बताते हुए खुशी हो रही है। शिवहर जिला से बागमती का पानी मैंने छोड़ा और इसको बूढ़ी गंडक में जोड़ने का काम आज विजय चौधरी जी के नेतृत्व में शुरू कर मैं आया।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। इधर जल संसाधन विभाग के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से 3 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, जबकि शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन, सांसद लवली आनंद और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर समेत अन्य वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जिले में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नेपाल में लगातार बारिश के कारण सीमावर्ती इलाकों में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुपौल जिले के कोसी बराज से इस वर्ष का सर्वाधिक 2,09,840 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रविवार शाम 6 बजे तक कोसी बराज से 2,15,135 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो इस वर्ष का सबसे अधिक डिस्चार्ज है, जबकि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 1,56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोसी में जलस्तर बढ़ने के कारण बराज से 56 में से 28 फाटक खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग सतर्क है। अभियंताओं की टीम तटबंधों और स्परों की लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का निर्णायक मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की यह श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ताजा जानकारी के अनुसार इंग्लैंड ने 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात 12:30 से शुरू होगा। अर्जेंटीना चौथी खिताब जीतने का प्रयास करेगा, जबकि स्पेन दूसरी बार विजेता बनने की कोशिश करेगा। इधर कल तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 के अंतर से पराजित किया। इस मुकाबले में कुल 10 गोल हुए, जो विश्व कप के किसी भी तीसरे स्थान के लिए मैच में अब तक के सबसे ज्यादा गोल हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर एवं

0: उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, गया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भभुआ, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, पटना, रोहतास एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मधेपुरा जिले के गम्हरिया प्रखंड के जीवछपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जागीर टोला में मध्याह्न भोजन से कुछ बच्चों के बीमार होने की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी को मामले की तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अररिया जिले में जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से टीबी सक्रिय खोज अभियान तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी विनोद दुहन ने हाइपरटेंशन और डायबिटीज मरीजों के उपचार के साथ टीबी खोज अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। रोहतास जिले के सासाराम मल्टीपर्पस हॉल में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष संग्रह के उद्देश्य से एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम ने बताया कि कार्यक्रम से प्राप्त आय शहीद सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने में उपयोग की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में 551 सरस्वती विद्या निकेतन का किया उद्घाटन। बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। सड़क, बिजली, जल संसाधन और शिक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शिवहर जिले में बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना के तहत बेलवा मीनापुर लिंक नहर का किया उद्घाटन। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग की अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: करगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन पर बोफोर्स के गोले तो आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाना शुरू किया।
1: लड़ाई के मैदान में इसने अपना पूरा जौहर दिखाया और जैसे मैंने बताया कि उस ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अगर हम दुश्मन को हिला पाए तो सबसे ज्यादा उसमें भूमिका थी हमारी बोफोर तोपों की और हमारे इन्फेंट्री के सिपाहियों की हिमाकत और शुजात की। और ये बोफोर तोपें हमने बताया हर इन्फेंट्री पलटन के अटैक के लिए हमने 100 गन्स वहाँ पे पहुँचवाई थी और जो ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर्स थे वो वहाँ पहुँचाए ताकि दुश्मन को हिला लिया जाए हमले के पहले और तभी दुश्मन के पाँव उखड़े नहीं तो उस हाइट से उसको निकालना असंभव था।
2: करगिल की कहानी बिना बोफोर्स के पूरी नहीं होती। 155 मिलीमीटर की होविट्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया।
0: ₹26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायुसेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को MiG-27 तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया जबकि मिसाइल के निशाने पर आए विमान MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर

0: अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने बर्बरता से मार डाला।
1: ऑल ऑफ यू हियर विल शेयर माय सैडनेस दैट ऑन फर्स्ट रिपोर्ट एंड प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द बॉडी वी फाइंड बुलेट वुंड्स। Now the body is being taken for post-mortem and when we have the full report of the post-mortem we shall present it to you.
0: शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और Mirage-2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को जो रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोगों का प्रेम, श्रद्धा, आदर से हम अभिभूत हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आपका संदेश कई माध्यमों से हम तक पहुंच रहा है। इससे प्रतीत होता है कि हमारा संवाद दो तरफा हो रहा है। आप लोगों का प्रेम जो है हमें प्रोत्साहित करता है और यह नहीं लगता है कि अब जो है 6 दशक पार करने के बाद भी हम किसी युवा से कम ऊर्जावान है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताया था कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक टीम जो है लगातार रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर रेडियस में गांव, शहर में घूमकर यह सर्वे कर रहा है कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम जो हम प्रसारित करते हैं उसको लोग कितना सुनते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम जो हम प्रसारित करते हैं उसे कितने लोग सुनते हैं। समय समय पर भारत सरकार के या किसी संस्थान के माध्यम से यह सर्वे होते रहता है। अभी तक जो हमें पता चला है कोन्हवा, बसडिल्ला, कररिया, जागीरी टोला, डुमरिया, कई गांवों में यह टीम गई, लोगों ने सकारात्मक सहयोग दिया। इसके लिए हम रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से धन्यवाद देते हैं। चूंकि सर्वेकर्ता यह जानना चाहते हैं कि रेडियो रिमझिम को 90.4 की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इस रेडियो के माध्यम से कितने लोगों का मनोरंजन हो रहा है और हमारे सुनने वाले सभी लोग अभी तक के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर काफी सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं। रेडियो रिमझिम के अलावा बिहार के और रेडियो स्टेशन का भी सर्वे चल रहा है, लेकिन इस दौर में हर साल की भांति इस साल भी रेडियो रिमझिम को प्रथम आने की संभावना है। इसका मुख्य कारण यह है कि आप जो हमें ऐप से, रेडियो से, इंटरनेट से या किसी अन्य यंत्रों से सुनते हैं और सही सही बातें आए हुए प्रतिनिधि को बताते हैं तो हमारा मनोबल जो है ऊंचा हो जाता है। कई हमारी बहनें, बेटियां खुलकर अपनी बातों को आए हुए प्रतिनिधि के सामने बता रही हैं। उसका कुछ वीडियो फोटो रेडियो रिमझिम को भी प्राप्त हुआ है। हमारी पूरी टीम जो भी रेडियो रिमझिम में सेवा दे रहे हैं सब लोग हर्षित हैं, खुश हैं। जब व्यक्ति लगातार काम करता है, संडे मंडे होलीडे कोई भी छुट्टी नहीं, लगातार सेवाएं हम देते हैं, यहाँ तक कि छठ पूजा बकरीद ईद उस दिन भी हमारा प्रसारण चलते रहता है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि सबका सकारात्मक सहयोग से ही रेडियो रिमझिम अपने कार्यों को बेहतर करता है। केवल मेरे कुछ करने से नहीं होता है, हमारे टीम के लोगों का मेहनत तभी सवारत होता है जब आप लोग उस सर्वेकर्ता को सही और सटीक बातें बताते हैं। उन लोगों ने बता रहा था कि कई जगह हमने रिटायर्ड सेवानिवृत्त व्यक्तियों से बात किया तो उनके एकांकी जीवन में रेडियो ही उनका एक साथी है। कई लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई और कई लोगों ने कहा कि सुबह 5 बजे से और लगातार हम लोग सुनते हैं। तो यह जो है एक सर्वे टीम का संक्षिप्त विवरण हमें प्राप्त हुआ है। जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं रेडियो रिमझिम से, ऐप के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, उन्हें बताते चले सेहत सही लाभ कई एक ऐसा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिसमें नाटक के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता हम लोग करते हैं। जैसे अभी बरसात का समय आ गया, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया फैलने लगता है, तो इससे हम कैसे बचे इसके बारे में जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उनसे हम भेंट वार्ता करते हैं और आप सबको सुनाते हैं। इसके अलावा जो रेडियो रिमझिम के आरजे हैं वह नाटक के माध्यम से इसे प्रसारित करते हैं और बीच बीच में भी हर बीमारी के बारे में हम बताते रहते हैं, जो भी हमारे पास जानकारी सही और सटीक प्राप्त होती है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए अनमोल होता है। हम कितना ही कमाते जाएं, यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वह कमाई का कोई भी लाभ हमारा शरीर नहीं उठा सकता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि 24 घंटे में 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक अपने ऊपर खर्च कीजिए और 23 घंटा अपने घर

0: और परिवार जमीन जायदाद पर खर्च कीजिए। यदि आप 24 घंटे में एक घंटा अपने शरीर पर खर्च करते हैं तो वह जो है आपकी आयु जो है सीधे बढ़ा देगी। आज भी हम देखते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, विशेष करके बुद्धिजीवी समाज, शहरों में टहलते रहते हैं, कोई साइकिल चलाता है, कोई जिम जाता है, यानी अपने शरीर में समय खर्च करते हैं। हम लोग गांव देहात में हैं, कम से कम टहलना चाहिए, शारीरिक काम करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि शुगर, बीपी, कई तरह की बीमारियां जो है लोगों को लग रही है। इसका मुख्य कारण मेरे समझ से, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मेरे समझ से, मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग शारीरिक श्रम यानी शरीर से काम कम करते हैं, जिसके वजह से यह बीमारियाँ फैलती है। आज से करीब 16 साल पहले बहुत बड़े एक हड्डी रोग विशेषज्ञ पटना में थे और मेरा शरीर जो है धीरे धीरे फ्रीज हो रहा था, जम रहा था, तो हमने उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि जब तक आप फिजिकल वर्क शारीरिक श्रम नहीं कीजिएगा तो बॉडी का यह नियम है कि जिस अंग का उपयोग हम लोग कम करेंगे वह धीरे धीरे जो है फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। तब हमें यह ज्ञात हुआ और हम व्यक्तिगत रूप से कोशिश करते हैं 30 से 60 मिनट के अंदर अपने शरीर पर खर्च करें। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम, आपके विचारों पर, आपके सुझावों पर यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी कामना है। यदि हम समय से खाना खाते हैं, समय से बिस्तर छोड़ते हैं, समय से बिस्तर पर जाते हैं तो हमारा शरीर और जीवन जो है ठीक रहेगा। अभी हम देखे हैं कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लगभग 90% रोपनी हो चुका है। नहर में भी लबालब पानी आया हुआ है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ किसी न किसी माध्यम से लोग पानी को अपने खेतों में पहुँचा रहे हैं। इस साल जो है अच्छी बारिश भी हुई है, समय से जो है रोपनी भी चल रहा है। ईश्वर की असीम कृपा है। कहा जाता है कि जहाँ के अन्नदाता, जहाँ के किसान समृद्ध रहेंगे, खुश रहेंगे, वहाँ का समाज भी खुश रहेगा। आदरणीय श्रोता बंधु, बातें तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन मेरे साथ बैठे हैं सोनू जी, जो आपके द्वारा भेजे गए संदेशों को पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी से उन प्रश्नों का उत्तर आपका संदेश मिला कार्यक्रम में दूंगा।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुंचा हुआ है अमरजीत राम जी का, नवका सिमरा कुचाईपुर से लिखे हुए हैं। रेडियो रिमझिम को मैं पिछले 10 वर्षों से सुनता हूं। हमें गाने के अलावा हेलो क्यूज कंटेस्ट, हालचाल बहुत अच्छा लगता है। जितना भी YouTube पर समाचार सुनाया जाता है उस पर मुझे यकीन नहीं होता है, लेकिन रेडियो रिमझिम का हालचाल गोपालगंज काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे तरफ से रेडियो रिमझिम परिवार को धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय अमरजीत जी, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह के संदेश जो है रेडियो रिमझिम टीम का मनोबल बढ़ाता है, प्रोत्साहन बढ़ाता है और मन में एक अलौकिक खुशी का अनुभूति होता है। आप हमारे अति पुराने श्रोताओं में से एक हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी प्रसारण करें

0: जो भी हालचाल गोपालगंज प्रसारित करे वह तथ्यों पर आधारित हो, जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन करती रहे। वैसे सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त सूचना को जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करते हैं, इसलिए आपको हालचाल गोपालगंज काफी अच्छा लगता है। टीआरपी बढ़ाने के लिए, वीडियो का व्यू बढ़ाने के लिए रेडियो रिमझिम कभी ध्यान नहीं दिया, वह सत्य के साथ चलता है, चाहे परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। भारतवर्ष में हजारों की संख्या में रेडियो हैं, बिहार में भी 10-12 रेडियो चैनल हैं, इसके अलावा आकाशवाणी है, कमर्शियल रेडियो है, लेकिन रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से ही 2-3 नियमों पर निरंतर और सतत प्रयास करता है कि इसमें त्रुटि न हो। हम किसी भी शुरू में भी नशीली पदार्थों का विज्ञापन नहीं किए हैं। जिस समय मद निषेध विभाग द्वारा शराबबंदी की घोषणा नहीं की गई थी, उसके 6 साल पहले से ही रेडियो रिमझिम ने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया। मेरी प्राथमिकता जो है पहले जनहित के लिए होता है। हम जो भी प्रसारण करते हैं इसमें जनहित कितना है इसको नाप तौल कर हम प्रसारित करते हैं। दूसरी बात, कहीं भी अश्लील गीतों का प्रसारण हम लोग नहीं करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। यह 2-3 मूल बातों पर रेडियो रिमझिम अपना प्रसारण करते रहा है। साथ में हमारे यहाँ के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का शुरुआत हमने किया, जो लगातार 5 जनवरी 2009 से आज जो है 2026 का जुलाई महीना हो गया चलता है, और प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे इसका रिकॉर्डिंग होता है और उसका प्रसारण प्रत्येक शनिवार के शाम को और रविवार के सुबह में किया जाता है। आज भी बहुत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे इसमें भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताया है कि जब कोई बच्चा पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है तो पीटी और मेंस के बाद इंटरव्यू अनिवार्य है, और इंटरव्यू का जो दायरा होता है वह अनंत होता है, जिसका कोई अंत नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले आकाश, जमीन, विज्ञान, भौतिकी, किसी भी विषय पर आपसे चर्चा कर सकते हैं। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट जो है इसी बात को ध्यान में रख कर हम प्रसारित करते हैं। आज जो है कई निजी विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम चलने लगा है, लेकिन रेडियो रिमझिम तो खुला मंच है, इसमें किसी भी उम्र, वर्ग, लिंग के लोग जो है भाग ले सकते हैं, और प्रत्येक साल 5 जनवरी को जो भी विजयी होता है उसे रेडियो रिमझिम एक छोटा सा पारितोषिक देकर उस बच्चे को सम्मानित करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियो रिमझिम में ऑनलाइन और रिकॉर्डेड दोनों कार्यक्रम चलता है, और अपने जिला के अलावा दूसरे जगह से भी सैकड़ों के संख्या में लोग जुड़ते हैं। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले कि हर कार्यक्रम का एक समय निर्धारित होता है। जो आरजे होते हैं वह भी चाहते हैं कि जितनी फरमाइश आई है सबको हम पूरा करें, लेकिन उस परिधि के बाहर न हम जा सकते हैं न हमारे आरजे जा सकते हैं। जितना भी समय जिस कार्यक्रम के लिए निर्धारित है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसी में उस कार्यक्रम को करना है। साथ में जो हमारे ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, विज्ञापन दाता, उस पर भी हम नजर रखते हैं कि जो समय उन्हें दिया गया है उस समय पर उनका विज्ञापन जरूर चले। इसलिए रेडियो रिमझिम अपने सतत परिश्रम से और आम जनता के सहयोग से अपने स्थापना काल से, और आज 2026 हो गया, कहीं भी कोई टीआरपी में गिरावट नहीं हुआ। लगातार हमारे सुनने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अजहरुद्दीन अंसारी थावे बेदू टोला से भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा सलाम। 365 दिन और 2400 घंटा ऐप से प्रसारण होता है, जिसमें अपने मन मुताबिक गाना मैं सुनता हूँ। मेरे परिवार के लोग विदेश में भी रहते हैं, वे लोग भी सुनते हैं। लोग अपने जिले की सूचना देश विदेश के लोगों तक भी पहुँचता है। मेरा कहना है कि कव्वाली का एक विशेष प्रोग्राम भी रखा जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, थावे बेदू टोला के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता अपने दिल की बातें, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में पहुंचाते हैं। आजकल तो हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ आ गया है, और जो व्यक्ति समय के साथ अपने को बदलते चले वही सर्वाइव करता है, यानी ठीक ठाक रहता है। जैसे प्राकृत का नियम है कि जाड़ा में हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में सूती कपड़ा पहनते हैं, और बरसात में भी हल्का फुल्का कपड़ा पहनते हैं। तो समय के साथ जब हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो शरीर भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उसी तरह रेडियो रिमझिम समय के साथ अपने में कई बदलाव किए, जैसे ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत रेडियो रिमझिम में किया गया। आज जो है आप अपने मन पसंद गीतों को सुनते हैं, मन पसंद कार्यक्रमों को सुनते हैं, और जब जब मौका मिलता है ऐप के माध्यम से अच्छे और पुराने गीतों को सुनते हैं। यह हमारा प्रयास रहता है कि जब व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, चिंतन में रहता है, तो रेडियो को चालू करता है कि कम से कम तनाव कम हो जाए। दुख तकलीफ कोई हर नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा कम तो जरूर कर सकता है। कहा जाता है कि मन की पीड़ा यदि लगातार मन में रखिएगा तो वह दर्द बढ़ते जाता है, और मन की पीड़ा को कई लोगों में जब हम वितरण कर देते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। आपने कहा कव्वाली का स्पेशल कार्यक्रम, तो आदरणीय श्रोता बंधु, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है। 5 बजे शाम से 7 बजे तक हेलो माई चॉइस चलता है, और सोमवार से शुक्रवार तक SMS फरमाइश जो ऑनलाइन चलता है। तो इन सब कार्यक्रमों में आप भाग ले सकते हैं, अपने मन पसंद गीतों को सुन सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्पेशल कार्यक्रम हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के गीतों को, संगीतों को हम प्रसारित करते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है कि अभी फरमाइश किए अभी पूरा हो गया, और ऑफलाइन में आप दोपहर 11 बजे रिकॉर्डिंग कराए और शाम को सुन लिए। तो यह सेवाएं लगातार रेडियो रिमझिम लगातार दे रही है, जिसका लाभ आप ले रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी सुनना चाहते हैं तो आप हमें बताएं। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे यहाँ हालचाल गोपालगंज, प्रादेशिक समाचार, राष्ट्रीय समाचार, सब प्रसारित होता है, ताकि कम समय में आप पूरी सूचना आप तक पहुंच जाए। एक जिम्मेवार रेडियो संचालक होने के नाते रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम पर निगरानी रहती है कि हम जो बोल रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, वह जनहित की हो, इस बात पर हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है बढ़ड़िया नवलपुर से नितेश कुमार जी का, लिखे हुए हैं, हमारे गांव में बुजुर्ग और युवा रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, काश हमारे सिवान में भी इसी तरह का प्रसारण होता, सिवान हालचाल भी चलता तो काफी अच्छा होता। रात में एक से बढ़कर एक गाना का प्रसारण होता है जो बहुत अच्छा लगता है, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को और बढ़रिया जिला सिवान के सभी नागरिकों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जब हमारे जिले के बाहर से आपका संदेश मिला, में संदेश आता है। रेडियो रिमझिम का काम करने का भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक क्षेत्र है और क्षेत्र से बाहर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐप के आ जाने से आज पूरे दुनिया में रेडियो रिमझिम को सुना जाता है। कहीं अफसोस करने की जरूरत नहीं है, रेडियो रिमझिम आपका है। आप लोगों के भरपूर प्यार और सहयोग से ही लगातार लंबे समय से सफल प्रसारण हो रहा है। आप ध्यान दिए होंगे, चाहे कोई पर्व त्योहार आए, रेडियो रिमझिम का प्रसारण जारी रहता है। कभी कोई तकनीकी व्यवधान आ जाने से कुछ समय के लिए रुकावट आता है, फिर भी अपना प्रसारण जारी रखता है। कहीं अफसोस नहीं करना है जीवन में, ऊपर वाले ने सबको सब कुछ दिया है और समय के साथ जो कमी रह जाता है वह पूरा कर देता है। जीवन में यदि हम सकारात्मक हैं तो जीवन जो है सरल है, यदि हम नेगेटिव हैं तो हमें हर जगह नेगेटिव दिखाई देगा। एक बार एक गुरु जी ने अपने 3 शिष्यों को सड़क पर भेजा और कहा कि आप लोग 1 किलोमीटर चलने के बाद बताइए आपने क्या क्या देखा। तो एक शिष्य ने जवाब दिया कि मैं सड़क के किनारे चल रहा था तो बरसात के दिनों में केवल पानी और गड्ढा दिखाई दे रहा था। दूसरे शिष्य ने कहा कि मैं जब सड़क पर चल रहा था तो एक झोपड़ी दिखाई दिया और उसमें खाना पक रहा था। और तीसरे शिष्य ने जवाब दिया कि मैं जब सड़क पर जा रहा था तो एक झोपड़ी में देखा कि एक बच्चा जो है किताब लेकर दिया के प्रकाश में पढ़ाई कर रहा है। कहानी यह हमें सिखाती है कि हम क्या देखना चाहते हैं वही चीज हमें दिखाई देता है। जीवन में सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, जीवन सरल रहेगा। आदरणीय श्रोता बंधु, आप रेडियो रिमझिम का भरपूर आनंद लीजिए और हम लोग अपने सामर्थ्य और अपने परिधि में रहते हुए आपकी सेवाएं करते रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि वर्षा का पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा जो है किसी सीमा में नहीं रहता है। यह सबके लिए है और आवाज़ जो है उसी तरह है, आवाज़ भी किसी सीमा में नहीं रहता है। तो जो जहाँ मिला है उसका भरपूर आनंद लीजिए और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है मीरगंज पश्चिम टोला से पंचानंद कुशवाहा जी का, मैं रेडियो रिमझिम को अपने गाड़ी में सुनता हूं, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय कुशवाहा जी, आपके पूरे परिवार को, मीरगंज शहर निवासियों को

0: तथा आपके पश्चिमी टोला के सभी नागरिकों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है, जिले के प्रत्येक हिस्से से कुछ न कुछ संदेश आता है। यदि रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम आपको बेहतर लगते हैं तो यह हमारी उपलब्धि है। यदि कहीं कोई नकारात्मक बातें हैं तो उसे भी लिखिए, हम सुलझाएंगे। कहा जाता है कि मानव जो है अधूरा होता है। हम प्रतिदिन गलतियां करते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि एक गलती को दोबारा न करें। और यह मानव का चरित्र भी होना चाहिए कि जीवन में यदि हम खुद गलती करें और खुद सुधार करें तो ईश्वर ने इतना समय नहीं दिया है जीवन काल को कि व्यक्ति बेहतर बन सकता है। जीवन में कुछ अपने गलतियों से और कोई दूसरे व्यक्ति के गलती से जो शिक्षा मिलता है, यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर गुणात्मक सुधार होगा, यह मेरा मानना है। तो आपको हमारा कार्यक्रम बेहतर लगता है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगले संदेश में विस्तार से कार्यक्रमों के बारे में हमें सूचित कीजिएगा। नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, नीलम देवी जी सांसा मूसा बाजार से भेजी हैं। रेडियो रिमझिम को बहुत बहुत धन्यवाद। योर वॉइस योर च्वाइस, एसएमएस फरमाइश और हेलो माय च्वाइस में एक से बढ़कर एक गाना सुनाया जाता है। हेलो क्यूज कंटेस्ट का नंबर भी बताया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय नीलम जी, आपके पूरे परिवार को, सांसा मूसा ग्राम वासियों को, बाजार वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप रेडियो रिमझिम को सुनती हैं और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपना बातों को रखती हैं, यह बहुत अच्छी बात है। मेरा भी मानना है कि रेडियो रिमझिम का जो प्रसारण हो रहा है वह बेहतर हो, इसके लिए आप जैसे आदरणीय श्रोताओं का मंतव्य हम लेते रहते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम दो तरफा संवाद है। सप्ताह भर हमने जो किया है, कहाँ तक बेहतर किया है, कौन सी कमी रह गई है, इन सब बातों पर रेडियो रिमझिम में विवेचना होता है, विश्लेषण होता है। और फिर जब सोमवार से अगला सप्ताह शुरू होता है तो जो कमियां रह गई है उसे सुधारने का हम प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार बताया है, मेरे जीवन का अनुभव और युवा साथियों का ऊर्जा, इन दोनों का सम्मिश्रण के माध्यम से रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि इतने अत्यंत आदरणीय श्रोताओं के बीच हमें कुछ कहने, समझने और सीखने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि जिस दिन व्यक्ति चलना और सीखना छोड़ दिया उसी दिन वह बूढ़ा हो जाता है। और जीवन में जब तक सांस चले व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। और जीवन में कम से कम प्रतिदिन 5,000 कदम पैदल जरूर चलना चाहिए। यदि हम इस प्राकृतिक नियम का अनुपालन करेंगे तो जीवन जो है बड़ा ही सरल हो जाता है। आदरणीय श्रोता बंधु, जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम हैं, जो हमारे आरजे हैं, वह सभी युवा हैं। कई इसमें अविवाहित हैं और कई लोग जो है ऊर्जावान हैं। वह जब कार्यक्रम करते हैं तो सभी श्रोताओं को अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम ऑनलाइन कार्यक्रम या ऑफलाइन कार्यक्रम में त्रुटि हो। फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि या कमी रहती है तो आपका संदेश मिला में आप लिखें, हम उसमें सुधार करेंगे।

0: और सुधारने का क्रम निरंतर और लगातार चलता है। हेलो माई च्वाइस है, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट है, यह सब अच्छे कार्यक्रम हैं। इसमें बातचीत करना, एक दूसरे को समझना, हंसी मजाक करना, यह रेडियो का एक हिस्सा होता है। हमने शुरू में ही बताया कि रेडियो रिमझिम आपके तकलीफों को हरने का काम, कम करने का काम करता है। जो हमारे आरजे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठते हैं, उन्हें यह पता है कि कोई व्यक्ति अपने दिल की बात जब शेयर करता है, बात करता है, वही करता है जहां अपनापन होता है, जहां अपना लगता है। कहीं कोई बात नहीं कह सकता है, लेकिन हमारे कई बेटियां, बहनें अपने दिल की बातें आरजे के साथ शेयर करती हैं, कई परेशानियों को भी बताती हैं। अच्छा लगता है और कार्यक्रम की रोचकता बढ़ता है। अंत में आपने कहा था कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में का नंबर बताया जाए, तो हम इस नंबर को दो बार बोलेंगे, एक बार हिंदी में, एक बार अंग्रेजी में। इसका नंबर है 8002994921 और दूसरा बार 8002994921। इस नंबर पर रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रिकॉर्डिंग चलता है। आप इसमें बातें कर सकते हैं। यदि रिकॉर्डिंग में लेट हो रहा है तो रेडियो रिमझिम के कार्यालय के नंबर पर आप फोन करके बता सकते हैं। वैसे रेडियो रिमझिम का जो नंबर है वह रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर लिखा हुआ है। आप जब भी सोशल मीडिया अकाउंट को खोलेंगे, रेडियो रिमझिम का फेसबुक, रेडियो रिमझिम का यूट्यूब, रेडियो रिमझिम का हालचाल गोपालगंज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यह सब उपलब्ध है। हमारे जमाने में यह सब नहीं था, लेकिन समय के साथ हम भी चलते हैं और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर सभी कार्यक्रमों का मोबाइल नंबर, कब रिकॉर्डिंग होता है, कितने बजे कार्यक्रम चलता है, एक पोस्टर बनाकर हम लोग डाल दिए हैं, तो आप सब वहां से भी नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अनीता कुमारी। सर नमस्कार, मुझे आपका संदेश मिला, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हमारे परिवार के बड़े लोग काफी ध्यान से सुनते हैं, इसमें अपना सुझाव साझा करते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है और मैं अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेती हूँ। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो मेरे पास अभी कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय अनीता जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हमें भी काफी अच्छा लगता है। हमें नहीं लगता है कि रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में बैठकर हम बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि किसी गांव देहात में खटिया पर बैठे हैं और दो चार आदमी के बीच हम अपने बातों को रखते हैं, उनके भी बातों को सुनते हैं। यह काफी अच्छा और रोचक होता है। यह कार्यक्रम जो है सीधे हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनका अनुभव लेकर हम कुछ सीखते हैं। हमें नहीं लगता है कि हम बहुत कुछ सीख लिए हैं। हमें लगता है कि जिस तरह समुद्र है और समुद्र का एक बूंद पानी हमें मिला है, लेकिन पूरा समुद्र अभी उसी तरह दिखाई देता है। और हम वैसे भाग्यशाली लोगों में से हैं कि इतने शानदार और जानदार श्रोताओं के बीच रेडियो रिमझिम परिवार को कार्य करने का एक मौका मिला है। हम इस बात के लेके काफी प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। और जो हमारे श्रोता हैं हर उम्र वर्ग के हैं, कोई काफी बुजुर्ग हो गया है जिनका आयु 90 बरस का है, उनके जीवन का शानदार अनुभव लेकर इस कार्यक्रम में पिरोते हैं। कुछ हमारे युवा साथी हैं जिनका उम्र 18, 20, 22, 23, जो पूरा ऊर्जा से भरे हुए हैं, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनका भी अनुभव हम लेते हैं। और यह जो अनुभव है आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम प्रसारित करते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में किसी विश्वविद्यालय से हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं, लेकिन सही और बड़ा विश्वविद्यालय जो है समाज होता है। कभी आप टोटो वाले भाई से अर्थात ई रिक्शा वाले भाई से बात कीजिए, उनका जीवन का अनुभव अलग होगा। किसी विद्वान अधिवक्ता से बात कीजिए तो उनके पास भी शानदार अनुभव होता है। तो किसी सरकारी पदाधिकारी से बात कीजिए, किसान से बात कीजिए, जो हमारे देश की सेनाएं हैं उसमें कार्य करने वाले जवानों से बात कीजिए, हमारी बेटियों के समान जो गोपालगंज जिले में महिला पुलिस आई है उनके जीवन का अनुभव लीजिए। यह सारा अनुभव जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा दार्शनिक बना देता है, वैभवशाली बना देता है। कहा जाता है कि धन आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन विद्वता ज्ञान और अनुभव जीवन के अंतिम समय तक रहेगा। मेरा मानना है कि जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है, स्त्रियों का आदर होता है, वह परिवार जो है सबसे बेहतर होता है। कई परिवार हमने देखा है कि लोग लंबे समय से अच्छे अच्छे पदों पर कार्य करने के बाद रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उनके बच्चे भी रिटायर हो गए और पोता पोती पर पोता तक हो गए हैं, लेकिन वह हमेशा हंसमुख और अच्छे तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उस परिवार में संस्कार है, स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान है, और जहाँ यह सब होता है वहाँ सीधे लक्ष्मी और सरस्वती आकर विराजमान हो जाती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने अत्यंत आदरणीय श्रोताओं से यही कहेंगे कि जीवन का जो अनुभव लेना है अपने परिवार के बुजुर्गों से लीजिए। वह जो है 60 साल, 70 साल, 80 साल के उम्र के हुए वह बेकार नहीं है, घर के टूटे फूटे फर्नीचर के समान नहीं है। उनका दाढ़ी भले बढ़ा हो, बाल कम कटा हो, लेकिन जीवन का जो लंबा अनुभव वे रखते हैं यदि आपके पास आ गया तो आप हीरे के समान हो जाएंगे। मान लिया जाए आपका उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है और आपके पिताजी का उम्र 60 साल है, यदि आप उनका अनुभव ले लिए तो आपका उम्र जो है समझिए 85 साल के बुजुर्ग जैसा अनुभव आपको हो जाएगा। लेकिन आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, समय नहीं है, लेकिन यह समय जो है कभी आने वाला भी नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जिसके कर्म में, जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन कर्म को करना है, इसके साथ परिवार को भी समय देना है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन को खुशहाल चाहता है उसे समय देना ही होगा। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में घड़ी का भी इशारा है कि हमें अब स्टूडियो से निकलना चाहिए, लेकिन चलते चलते यही कहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उम्र चाहे कोई भी हो। हम कई लोगों को देखते हैं चेहरा, उम्र जो है बहुत कम है और भुड़की जैसा उनका तोन निकल गया, गाल पचक गया,

0: जग जाते थे और सूरज डूबने के बाद भोजन भी नहीं करते थे। लेकिन आज का सोशल मीडिया अकाउंट मोबाइल जो है हमें रात रात भर जगाता है और दिन दिन भर सुलाता है। इसके प्रति आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आदरणीय श्रोता बंधु, घड़ी का जो है अब अंतिम इशारा आ गया है कि हमें चलना चाहिए, तो आप लोग रेडियो रिमझिम परिवार को आशीर्वाद देने का कृपा करते रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291, और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065750।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे, ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
0: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
11: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
12: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
11: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
13: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
11: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
14: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
15: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
14: We should help us strengthen the parliamentary relationship.
11: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
16: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
11: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
17: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लुटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
11: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
19: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
20: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
21: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
22: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
21: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
19: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
23: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
24: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
25: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
24: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
25: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
26: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
27: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
28: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
29: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
28: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
30: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। 14 प्रखंडों में शुरू हुआ सरस्वती विद्या निकेतन, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, निजी अस्पताल में हुई मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, 10 वर्ष की सजा को मात देकर दुबई से लौटा वसीम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य के सभी 551 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन यानी आदर्श विद्यालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के भी सभी 14 प्रखंडों में भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। सभी विद्यालयों में उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसे छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उत्साह पूर्वक देखा। थामे प्रखंड के सेमरा स्थित सरस्वती विद्या निकेतन में आयोजित उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी समीर सौरभ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। माझा के आदर्श विद्यालय में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार और कुचायकोट में आयोजित कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे शामिल हुए। जिले के प्रत्येक सरस्वती विद्या निकेतन में कक्षा 9 में कुल 40 विद्यार्थियों का नामांकन राष्ट्रीय आय एवं मेधा आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से किया गया है। इन विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। थावे के सेमरा स्थित आदर्श विद्यालय में जिला पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय स्थापित करने की पहल के लिए आभार भी व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आदर्श विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं स्वयं को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में विकसित करें तथा अपने प्रखंड के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा, रोल मॉडल और मार्गदर्शक बने। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी विद्यार्थियों में व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरस्वती विद्या निकेतन केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यालय में ललित कला, संगीत, खेलकूद तथा अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाएगा, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। माझा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान विशंभरपुर बाजार से वाहन जांच करते हुए चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अल्ताफ राजा पिता साकिर अली ग्राम हरपुर थाना बड़हरिया जिला सिवान का निवासी है। वाहन के कागजात मांगने पर उसने बहाना बनाया और भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने इसे पकड़ लिया और मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को थाने लेकर गई, जहां पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की मोटरसाइकिल के संदर्भ में जानकारी दी। पुलिस अब इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया है। गोपालगंज शहर में इस्कॉन मंदिर के नेतृत्व में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कमला राय कॉलेज से निकली इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने भगवान श्री के रथ यात्रा को रस्से से खींचते हुए पूरे शहर का भ्रमण कराया। इस दौरान लगातार श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की जयकारे लगाते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा के उद्घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। हालांकि आज मौसम खराब था, रह रहकर हल्की फुल्की बारिश भी आ रही थी, परंतु श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हो रहा था और लोग पूरे भक्ति आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान श्री के रथ यात्रा को लेकर शहर में भ्रमण करते हुए शहर को भक्तिमय बना दिए। इस दौरान रथ यात्रा में शामिल आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने कहा कि यह रथ यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष भी इस रथ यात्रा को भव्य तरीके से निकाला गया और भक्तों का जिस तरह से उत्साह भगवान के प्रति देखा जा रहा है, यह आने वाले भविष्य में और भी भव्य तरीके से रथ यात्रा का आयोजन करेगा। गोपालगंज शहर में सदर हॉस्पिटल के सामने एक निजी अस्पताल में 21 दिन की नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ता हुआ देखकर डॉक्टर ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर जाते समय रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मी मौके से फरार हो गए। परिजन निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मृत बच्ची नगर थाना क्षेत्र के चौराव गांव के रहने वाले दिलशाद अहमद की पुत्री थी, जो पिछले करीब एक सप्ताह से बीमार थी और यहां अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और गोरखपुर ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई। दुबई में 10 वर्ष की सजा काट रहे एक युवक वसीम अकरम को आखिरकार सरकार के प्रयासों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि आज दुबई से जैसे ही वसीम अकरम अपने घर लौटा तो परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई महीनों की बेबसी, इंतजार और दुआओं के बाद बेटे की घर वापसी से परिवार की आंखों में आंसू छलक गए। वतन लौटते ही वसीम ने सबसे पहले गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया, अपने हाथों से मिठाई खिलाई और कहा कि यह सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गोपालगंज और देश के लिए खुशी का पल है। रोजगार की तलाश में थामे प्रखंड के इंदरवा रफी गांव से दुबई गए वसीम अकरम ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वह वहां की जेल में पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को दुबई पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। आरोप था कि ईरान अमेरिका तनाव के दौरान उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र का वीडियो बना लिया। मामला अदालत तक पहुंचा और इसे 10 साल की सजा हो गई। जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप के रातों की नींद उड़ गई और हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या वसीम कभी वापस लौट पाएगा। परिवार के लोग प्रत्येक दिन आंसू भरे आंखों से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। गोपालगंज के सांसद और सरकार से इसकी गुहार लगाई गई, जिसके बाद सांसद महोदय ने भी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और उनके प्रयासों से विदेश मंत्रालय ने भी मामले को गंभीरता से समझा और भारतीय दूतावास तथा दुबई प्रशासन के बीच लगातार समन्वय हुआ। कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और आखिरकार वह दिन आया और वसीम की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। उसे सुरक्षित वापस भारत भेजा गया। जैसे ही घर वसीम पहुंचा तो परिवार के लोगों में ईद और होली की खुशी एक साथ मिल गई। पूरे परिवार के लोगों ने वसीम का जोरदार तरीके से स्वागत किया और सरकार तथा गोपालगंज के सांसद का आभार व्यक्त किया। नारायण सर्वोदय प्लस टू विद्यालय सदौआ बरौली में जब सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का मान्यता मिला तो बताया जा रहा है कि वहां भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने बैंड बाजे के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहां पहुंचे और भव्य तरीके से विद्यालय का उद्घाटन किया गया। कटिहार थाना की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह भोरे के कल्याणपुर रिखई बारी का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा चनावे में कैदियों के बीच प्ली बार्गेनिंग एवं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कैदियों को प्ली बार्गेनिंग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसका लाभ किसको मिल सकता है, इसका लाभ नहीं लेने पर इसकी हानियां CRPC की धारा 265A, कंपाउंडिंग ऑफ डिफेंसेस आदि विषय पर कानूनी बातें कैदियों को समझाई। मुचका गांव थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त सुमित कुमार यादव पिता हरे राम यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह उचका गांव के दही भत्ता का रहने वाला बताया जा रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 37 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और एक कार भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनमें आनंद कुमार पिता हरि प्रसाद जो नंदलाल कपूर थाना हैदरगंज जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा आकाश कुमार पिता जीलू साकिन लक्षीपुर गरौली थाना हैदरगंज जिला अयोध्या का निवासी है। इनके पास से कार और शराब मिली है। दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव के पास बाजार से सब्जी खरीद कर लौट रहे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक लघुशंका कर रहा था, इसी दौरान बाइक पर बैठे 3 बदमाशों ने इस पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सिद्धवलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश भी कर रही है। इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त आश मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया। यह विजयपुर के मठिया गांव के बसीर खान का पुत्र है। पुलिस ने इसके घर से ही इसकी गिरफ्तारी की। विजयपुर पुलिस ने बलात्कार के भी मामले में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम करण कुमार है। यह विजयपुर के समहुति गाँव के उपेंद्र शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 14 प्रखंडों में शुरू हुआ सरस्वती विद्या निकेतन, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, निजी अस्पताल में हुई मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। 10 वर्ष की सजा को मात देकर दुबई से लौटा वसीम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ठक ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
13: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 आमजेड पर।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से दिल से वेलकम करती हूँ आज के इस एपिसोड में आपका, क्योंकि गाने आज जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बेहतरीन गाने हैं। मतलब ऐसी प्लेलिस्ट बना के लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन एरा के सबसे स्टबर्न, सबसे ब्लंट, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर्स की। एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने हमेशा अपने आप में विश्वास बनाए रखा। मैं बात कर रही हूँ ओम प्रसाद नायर यानी ओपी नायर जी के बारे में। हम इन्हें प्यार से ओपी ही के नाम से जानते हैं, सब लोग इन्हें ओपी ही बुलाया करते थे उस जमाने में। ऐसा संगीत बनाया करते थे ये कि हर कोई इनके धुनों पर झूम जाया करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे? इनके घर परिवार में कोई भी संगीत वंगीत का शौक नहीं रखता था। इनफैक्ट सभी लोगों ने ओपी नायर जी को भी मना किया था कि ये सब कुछ मत करो। ओपी जी क्या करना चाहते थे और क्या बन गए बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले शुरू करते हैं आज का ये शो आशा जी की आवाज में बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट सेंसुअस सॉन्ग्स, आइए मेहरबा, हावड़ा ब्रिज फिल्म से आपके लिए।

मेरा जो रुझान था म्यूजिक की तरफ वो अपने अंदर इस प्यार को, इस पैशन को दबा करके लंबे समय तक रख नहीं पाए। किया क्या ओपी नैयर जी ने, म्यूजिक को अपनी मंजिल बनाने के लिए निकल पड़े अपने घर से और ज्वाइन किया पंजाब का एक रेडियो स्टेशन। ओपी जी का कहना था कि वो तो रोज रियाज भी नहीं करते थे लेकिन फिर भी म्यूजिक वॉज वेरी नेचुरल टू हिम। सच तो है ही वैसे, म्यूजिक वॉज अ गॉड गिवन गिफ्ट टू हिम। ओपी जी हमेशा कहते थे कि हिज म्यूजिक केम फ्रॉम हिज सोल, उनकी आत्मा से निकलता था उनका संगीत। कंपोजर के नाम से हम जानते हैं ओपी नैयर जी को, लेकिन ये कंपोजर नहीं बनना चाहते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते थे लेकिन कंपोजर नहीं बनना चाहते थे। क्या थी इनकी मंजिल और कहां पर पहुंच गए ये, क्या बनना चाहते थे एक्चुअली, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले नया दौर से रफी साहब और आशा जी की आवाज में, उड़े जब जब जुल्फें तेरी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: कितना भी दूर जाओ घर से, रास्ता जरूर मिलेगा। कितना भी दूर जाओ घर से, रास्ता जरूर मिलेगा। ऐ राही ना थक, तू चल, बस चल, एक दिन तेरा समय भी जरूर फिरेगा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। अपने जमाने के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और हाईएस्ट पेड कंपोजर ओपी नायर जी के गाने आज मैं आपको सुना रही हूँ। उन्हीं की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से, कहानियां भी आपको बता रही हूँ। ये तो मैंने आपको बताया ही कि अपने घर वालों की ना मानते हुए पंजाब के रेडियो स्टेशन में नौकरी करना शुरू कर दी थी ओपी नायर साहब ने। लेकिन उसके बाद में इंडिया के पार्टीशन के वक्त उन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा था और वो अमृतसर शिफ्ट हो गए थे। आप जानते हैं कि उन्होंने अपने समय में एक सिंगर बनना भी ट्राई किया था। एक्चुअली ओपी नैयर साहब का जो म्यूजिक की तरफ रुझान था वो एज अ सिंगर ही था। उन्होंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया था लेकिन वो गाना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं और वो खुद मानते थे इट वॉज बिकॉज उनकी आवाज़ बहुत पतली थी, इसलिए लोगों ने उन्हें एज अ गायक, एज अ सिंगर कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एज अ कंपोजर ही सही, आई थिंक हम सभी के दिलों पे हमेशा हमेशा से राज करते आए हैं ओपी नैयर साहब। अपने एज अ कंपोजर करियर की शुरुआत करते समय करीब 3-4 मूवीज थी जिसमें इनका लक ज़्यादा चला नहीं था, लेकिन उसके बाद ओपी नैयर साहब की जिंदगी में एंट्री ली गुरुदत्त जी ने। 1954 में आर पार बनाने की सोच रहे थे गुरुदत्त साहब और तब उन्होंने ओपी नैयर साहब को ये मौका दिया कि वो इस फिल्म का म्यूजिक दे और बस क्या था, लग गया जैकपॉट। ओपी जी की जिंदगी उसके बाद जो बॉलीवुड में मतलब जाकर के जम गई थी, कोई भी उन्हें हिला नहीं पाया बॉलीवुड में से। ये फिल्म तो हिट थी ही और उसके बाद में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्म्स और सुपर हिट म्यूजिक कंपोज करते चले गए ओपी नैयर साहब। शमशाद बेगम, गीता दत्त जी, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, इन सभी दिग्गज कलाकारों के साथ में ओपी नैयर साहब ने काम किया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ओपी नैयर साहब ने लता जी के साथ में काम नहीं किया? लता जी के साथ में हर एक इंसान उस समय गाने बनाना चाहता था क्योंकि वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला हुआ करता था कि लता दीदी के साथ में गाना बनाओ तो गाना तो हिट होना ही है। लेकिन ओपी नैयर साहब ने लता जी के साथ में काम नहीं किया, क्यों, क्या थी इसके पीछे की वजह, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले किस्मत फिल्म से आशा भोसले जी की आवाज में अगला गाना।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज के इस एपिसोड में ओपी नैयर जी के गाने आपको सुना रही हूँ और उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बता रही हूँ। गोल्डन एरा में ऐसा कोई भी कंपोजर नहीं था जो कि लता दीदी के बिना सक्सेसफुल हो जाए। सुनने में ये भी आता था कि ओपी जी काफ़ी गर्म मिजाज के हुआ करते थे, जल्दी गुस्सा आ जाता था, थोड़े चिढ़ जाते थे, इसलिए प्रोड्यूसर्स को और बाकी सिंगर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी ओपी नैयर साहब के टेम्परमेंट के साथ में, उनके गुस्से के साथ में। लेकिन लता जी के साथ में तो इनका किस्सा ही कुछ और था। ओपी जी की पहली फिल्म जो थी आसमान, उस फिल्म की रिकॉर्डिंग के वक्त लता जी को बुलाया था इन्होंने गाना गाने के लिए, और दोनों के बीच गानों के सुर को लेकर, धुनों को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी लड़ाई बन गई और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि लता जी स्टूडियो छोड़कर चली गई। और ओपी जी का मानना था कि उनके गानों पर लता जी की आवाज़ वैसे भी सूट नहीं करती थी, उन्हें एक सेंशस आवाज़ की ज़रूरत थी और लता जी की आवाज़ में क्लासिकल टच ज़्यादा था। तो बस उन्हें भी बुरा लग गया कि लता जी कैसे मेरा स्टूडियो छोड़कर चली गई, लता जी को भी बुरा लग गया कि कैसे एक नए कंपोजर ने मेरी बात नहीं मानी, और इन दोनों के बीच में जो अनबन हुई थी वो कभी ठीक हुई ही नहीं। और लता जी और ओपी नैयर जी ने कुछ ज्यादा काम उसके बाद में साथ में किया भी नहीं। लेकिन वही समय था जब आशा भोसले जी थोड़े से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में अपना करियर आगे बढ़ा रही थी, लता जी की छाव में किस तरह से तो अपना नाम भी बनाने की कोशिश कर रही थी। ओपी नैयर साहब वो एक ऐसे कंपोजर थे जिन्होंने आशा भोसले जी को उनके करियर के बड़े बड़े गाने दिए हैं। आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस आशा जी के अंदर कम था, वो कॉन्फिडेंस लेकर के आए ओपी नैयर साहब। तो चलिए सुनाते हैं आपको अगला गाना। फिलहाल ये गाना रफ़ी साहब और बलबीर जी की आवाज़ में है, नया दौर से, ये देश है वीर जवानों का। रफ़ी साहब के साथ में भी थोड़ी सी अनबन हुई थी एक बार ओपी नैयर साहब की, आखिर अब ये लड़ाई किस बात पर थी बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज के इस एपिसोड में OP नैयर जी के गाने आपको सुना रही हूँ और उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बता रही हूँ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में था ये गाना जो कि सुना आपने फिल्म नया दौर से। वैसे एक वक्त ऐसा था जब रफी साहब और ओपी नैयर जी की भी अनबन हो गई थी। जैसा मैं आपको बता रही थी कि थोड़े से गर्म मिजाज के इंसान थे ओपी नैयर साहब, तो जल्दी छिड़ जाते थे, उन्हें थोड़ा सा मना करके रखना पड़ता था। तो ओपी जी को पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग कि जो समय दिया है गाने की रिकॉर्डिंग के लिए उसी समय पर आ जाए सिंगर आर्टिस्ट। रफ़ी साहब लेकिन एक बार लेट हो गए। रफ़ी साहब का कहना था कि वो शंकर जयकिशन जी की रिकॉर्डिंग में थे, इस कारण से लेट हुए थे। लेकिन ओपी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओपी जी ने कहा कि मेरा समय बर्बाद कर दिया है, और इस कारण से रफ़ी साहब और ओपी जी के बीच में भी कुछ तो तनातनी हो गई थी। लेकिन ये मामला ज़्यादा समय चला नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं चला सकते थे। दोनों को ही एक दूसरे का काम बहुत पसंद था। तो बस, तो फिर क्या, जल्द ही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में फिर से तालमेल बिठा लिया और बेहतरीन गाने बनाना शुरू कर दिया। बस एक तरफ जहाँ कुछ सिंगर्स आर्टिस्ट ओपी जी से डरा करते थे, उनके गुस्से से डरा करते थे, वहीं एक एक्ट्रेस थी जो कि ओपी जी की बहुत बड़ी फैन भी हुआ करती थी, और वो कोई और नहीं बल्कि मधुबाला जी थी। क्या आपको पता है वो ओपी नैयर साहब के म्यूजिक की इतनी बड़ी फैन थी कि वो ओपी नैयर जी अगर म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं किसी फिल्म का तो उस फिल्म के लिए 15,000 रुपये कम फीस चार्ज किया करती थी। इनफैक्ट जब ये दोनों साथ में काम करते थे तो हमेशा ये दोनों साथ में ही लंच किया करते थे, एक दूसरे के साथ में अपना लंच शेयर करते थे, और इनकी बातें ही खत्म नहीं होती थी। मैं कहूंगी कि एक फैन होने से ज्यादा मधुबाला जी ओपी जी को एक इंसान के तौर पर रिस्पेक्ट किया करती थी। तो चलिए, ओपी नैयर जी के बारे में इतनी बातें हो ही रही हैं, तो आर पार फिल्म से गीता दत्त जी की आवाज में सुनाते हैं आपको अगला गाना, बाबूजी धीरे चलना। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: मिनट पर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर कि मेरे मन में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
2: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
5: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
4: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people ties. The Union Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160-kilometre long Rameshwar-Paradip Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. The ministry said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity along with spiritual journeys. The Delhi High Court today refused to intervene in activist Sonam Wangchuk's treatment at Safdarjung Hospital, saying the government's decision to move him from Jantar Mantar to the hospital could not be termed arbitrary. Justice Mini Pushkarna said no immediate order was needed to shift Wangchuk to a private facility, while noting that doctors were monitoring his condition and had provided treatment with his consent. The court was hearing a plea by Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, seeking his transfer to a private hospital. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in New Delhi district in view of Parliament session beginning tomorrow. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of 5 or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. In Jammu and Kashmir, at least 11 people were killed and 7 others went missing as torrential rains triggered landslides and flash floods in the twin border districts of Rajouri and Poonch early this morning. In men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, India were 278 for 2 in 41 overs when reports last came in. Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup as defending champions Argentina take on Spain in New Jersey tonight. The match kicks off 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
0: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right. Hey, this is

0: सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ने।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।

0: जी बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
1: पूर्वी चंपारण बिहार के परराज बाबा सोमेश्वर नाथ से बोल रहा हूँ, जूना सा जी।
0: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में हूँ।
0: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: दूल्हा गंगा पार के गाना सुना दीजिए। हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी, पैदल भी अबे तोरे दुआरी है भोलेनाथ।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी जी, फर्स्ट तो है रामविलास कुशवाहा जी कीर्तपुर बगहा से, वैसे धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश शाह जी, उमेश शाह जी और भरत शाह जी, रवि कुमार शाह जी और रेडियो जी सुनने वाले सब साथी लोगों को सुना दूंगा। प्रणाम।
0: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं संत रेडियो सबके साथ, रेडियो 90.4 प्रणाम।

0: जी बहुत
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या हाल चाल है?
1: अच्छा है, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। नाम बता दीजिए अपना।
1: ईशा कुमारी।
0: कहाँ से?
1: हम गोपालगंज पोस्ट ऑफिस से है, वहीं पे।
0: तो कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए, आज बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
1: ये लो बता, ये मेरा भाई बताएगा मैम।
0: जी दे दीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते।
1: एक मुझे गाना सुनना
0: बता दीजिए।
1: बवली में पैसा, हिंदी
0: हिंदी सॉन्ग है। गाने के और कुछ लाइन याद है? थोड़ा बहुत सुना दीजिए ना।
1: बगली में पैसा, पैसा के करी लात, अबे बिल्ली कैसे करे पर छबरा छबरा छबरा दिला के हम बोल। ये तो मेरा बोलता है मैं।
0: अच्छा तो आप बता दीजिए, मतलब मैं नहीं सुन पाऊंगी ना तो नहीं बजा पाऊंगी।
1: अच्छा ये बोल रहे हैं ना, बगली में पैसा पैसा के करी लात, ये वाला गाना।
0: अच्छा और गाना किसी को सुनाना है?
1: सबसे पहले आपको, मेरे भाई के हम हैं, मम्मी है और रेडियो टीवी में जितने भी दोस्त हैं उन सबको।
0: चलिए ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम।
6: नमस्ते
7: मैम। नमस्ते
6: जी, मैं प्रदीप सानी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
7: क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक है जी, अपना बताइए।
7: हमारा भी ठीक है।
6: मुझे एक सॉन्ग सुनना था।
7: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
6: ये जो ये दुल्हा गंगा पार का सॉन्ग सुनना है, टाइटल सॉन्ग।
7: अच्छा,
6: इतना बता दो ये दुल्हा गंगा पार के ये गाना सॉन्ग सुनना।
7: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: जी, अंकुश कुमार और प्रिंस कुमार और अमरजीत साहनी और जितने रेडियो में सुन रहे हैं सारे।
7: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम।
7: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: कैसी है मैम?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। बारिश उधर हुआ है रातों?
0: बारिश तो पूरी रात हुई है।
1: हम लोगों को भी यहाँ बारिश बहुत हुआ है, चारों तरफ सादा ही सादा दिख रहा है, पानी ही पानी।
0: चलिए इसी का तो सब कोई को बेसब्री से इंतजार।
1: मैम गाना सुनवा दीजिए एक तो।
0: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, बादल यू गरजता है, डर कुछ ऐसा लग रहा है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: डेडिकेट आप सुनिएगा, जितने रेडियो इंजिन होता है सभी सुनेंगे।
0: ओके
1: जी मैम,
0: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सभी का रेडियो इंजिन 90.4 FM। वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी नमस्कार मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एम।
6: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
6: तो आज कौन सा सॉन्ग सुनना है?
5: आज सुनवा दीजिएगा ना कजरे की हार।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: मैं रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता
6: हूँ। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते नमस्कार दिवस होने से सब कैसे हैं?
0: नमस्ते मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं तो आवेज मस्त मिलता है थकास रहता हूँ। मैं रेडियो फैन मोहम्मद खान ना, बताइएगा सब क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट हो गया?
0: ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। और आपका?
1: मेरा भी बहुत पहले हो गया है।
0: अच्छा,
1: और सब सुनाइए, मौसम कैसा है अपने यहाँ का?
0: यहाँ का मौसम अभी ठीक है।
1: सुने की बारिश हो रही है?
0: हाँ बारिश हो रहा है, लेकिन कभी कभी, लेकिन मौसम ठंडा है।
1: यहाँ पे तो काफी गर्मी है दुबई में, 45 क्रॉस कर गया है, कभी कभी 50 भी चला जा रहा है। तो मुझे सॉन्ग सुना दीजिएगा गयवान मूवी के।
0: और सॉन्ग कौन सा है
1: आज के दिन पे क्या रहा है?
0: अच्छा तो चलिए और
1: आपके साथ जी सुनाना चाहते आपके साथ निशा भारती को, कार खातून सागुस्ता फिर दोस्त और लिस्टनर को, और अनिल भाई को भी, छोटपुर वाले अनिल भाई, उनको भी सुनवा दीजिएगा।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सब कुछ। थैंक यू।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: नमस्ते मैडम
3: जी। नमस्ते।
2: हेलो।
3: हाँ जी
2: मैडम, मुझे गीत सुनना है
3: जी। नाम बता दीजिए।
2: कुमार से बोल रहा हूँ।
3: और कौन सा गीत सुनना है आपको?
2: दिल्ली आने का डोला दुल्हार के लिए।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
2: मैं भी, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, इसमें सभी लोगों के लिए रहेगा।
3: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर से
1: जी,
0: और मैं कई बार लगा चुका हूँ और रिकॉर्ड करा भी चुका हूँ। मेरा सॉन्ग चलता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है?
1: ऐसा तो नहीं है, सभी का कॉल प्ले होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा।
0: ऐसा है कि मुझे गाना सुनना है, गाना खेसारी लाल की आवाज में चलवा दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: एक बार और बोल दीजिएगा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सुनाना है सब दिन मामा है, अजरुद्दीन भाई है, और समीर भाई है, और सोहन भाई है, अजीम भाई है, सबको सुनाना है, और ये गाना सुनना चाहते हैं सब हम।
1: जी बिल्कुल, प्ले करेंगे, प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते

0: आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: क्या हाल हुआ?
2: हमारे तो ठीक बार रुआ, बताइए अपन रुआ कैसे बनी?
1: ठीक बनी भारती दिन एक पहले तो ना तो नहीं हूँ।
2: नहीं, बुधवार के दिन छुट्टी पे रहो।
1: अच्छा अच्छा, मनोरमा जी रहने वो दिन। तो गाना सुना दी हमसे ना भंगिया पिसाइए गणेश के पापा ना यह जाता नो, ये गाना बाजी।
2: और ये गाना क्यों के सुनाबो करे हम?
1: हम सुना रेडियो पूरा ये आदमी जुड़ल बस सब सुनी।
2: जी चले फिर ठीक बात है, गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 एफएम।
1: जी हम पचपरा से भोला जी बोलते नहीं।
2: हाँ हाँ
1: जी नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और क्या कर रही हैं अभी?
1: अभी हम खाना बना रहे हैं अभी।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया है?
1: हाँ नाश्ता हुआ है, खाना बना रहे हैं।
0: चलिए सब तो बढ़िया है। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: गाना गाना वो सुनना चाहती हूँ मैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी मेरे पति को। हाँ
0: अच्छा चलिए, सब तो बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: हाँ जी मैम, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में।
6: मैम आपको गाना सुनना है।
5: अच्छा, नाम बता दीजिए।
6: सोवा कांडे हाजियापुर से
5: जी। तो कौन सा गाना सुनना है जी आपको?
6: मैम भरत तिवारी के एक गाना सुना दी।
5: कौन सा?
6: भरत तिवारी पे कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
5: चलिए, और गाना किसी को सुनाना भी है?
6: मैम आपको और अपने घर वालों को बजेगा मैम गाना
5: कल या फिर आज सुनने को मिलेगा
6: शाम में। सबका नाम क्या है?
5: मेरा नाम
6: हा?
5: मेरा भारती है।
6: सोनी मैम नहीं
5: वो भी है। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस दीदी, हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है अभी फिलहाल में, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं।
0: अच्छा,
1: आपके यहाँ पर कैसा मौसम है?
0: मेरे यहाँ अभी मौसम अभी ठीक है।
1: बरसात हुई है क्या आपके उधर?
0: हाँ हुआ था शाम के टाइम में थोड़ा सा।
1: नहीं इधर तो नहीं हुआ, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं, अभी पानी गिरा नहीं अभी तक। खाना माना हो गया आपका?
0: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
1: अरे अभी नहीं हुआ मेरा। जी
0: जी, कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए।
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है अंट नंबर वन।
0: और गाना कौन सा है?
1: और गाना भी सुना दीजिए, आई है वन टू तिवारी।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले आपको और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा जी सुखवासा से।
0: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद मैडम।
0: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन टिंग डे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
5: किस्मत बोल रहे हैं?
4: हाँ जी, कैसे हैं आप?
5: हाँ सब ठीक बा, तुम ठीक बोला ना?
4: हाँ।
5: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या होता है? ठीक बात, दिन ठंडा दिन बा ना?
4: हाँ आज दिन ठंडा बावे, अतनी बारिश नहीं क्या हो खता आज हो
5: बावे। जुम्मा है तो ठीक हो बाबू, सुना दियो कवाली बढ़िया।
4: अच्छा कौन सा कवाली सुने?
5: तू अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
4: चलिए ठीक बाबू, गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो जी। बहुत
0: हाँ
1: बहुत
0: जी नमस्ते
1: स्वागत
0: मैम।
1: है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम,
1: नमस्कार।
0: जात कुमार सिंहतापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और बारिश वारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
0: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
1: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
0: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया, तब बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
1: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
0: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
1: हाँ मेरा तो हो गया, आप अभी तो हो गया क्या?
0: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी
1: नाश्ता
0: 11 बजे
1: करके आते
0: खाना
1: हैं ना?
0: पड़ेगा। नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
1: चलिए तब तो बढ़िया है। तो
0: आज
1: बताइए,
0: हमको गाना, आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
1: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
0: वो वाला गाना नहीं है वो, लाली लगाइंदा जिसे करिए। अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सी इनकम पर सुनवा दीजिए, अब कबो जहर भी खैला पर बे असर होला।
1: अच्छा
0: यही कौन सी इनके सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
1: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा दूंगी।
0: यही पवन सिंह के व्यवसायी सुनवा दीजिएगा।
1: जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: और जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
1: ओके
0: हाँ,
1: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ring de bajte hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी हम जैन बनारस।
5: जी कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है।
5: क्या हो रहा है अभी?
6: साड़ियों के काम कर रहे हैं, पावर लूम।
5: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आज?
6: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी बिंदु एक है। कुमार सानू आवाज।
5: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
6: जी हम दोस्त लोग को जाते लेंगे और अपने फैमिली के साथ सुनेंगे।
5: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो ट्वेंटी फोर एफएम में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पासवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिल दे कर।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिल दे कर।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू शाह है, व्यास शाह है, राजेश शाह है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 94.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिंजन 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusregional.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, रंग नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, ऐसन तीर है जे दिल के पार हो जाला।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हर का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।